बैजू बावरा फिल्म से ये गीत आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ, शकील बदायूनी की रचना थी और नौशाद का संगीत। अगला गीत आप सुनेंगे आशा फिल्म से, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। आनंद बख्शी ने गीत को लिखा है और लक्ष्मीकांत ने संगीत से संवारा है।

दोस्तों, हर इंसान एक नई आशा लेकर जीता है। उसके रास्ते में बहुत सी मुसीबतें आती हैं, लेकिन एक आशा की किरण हमेशा जब मन में पैदा होती है तो अगले दिन जीने की राह फिर बना लेता है। और अब अगला गीत अपने पराई फिल्म से येसुदास का गाया हुआ, योगेश की रचना है और बप्पी लहरी का संगीत।

दोस्तों, जो शाम के रंग में रंग गया, उसे और किसी रंग में रंगने की क्या जरूरत है।

हमारे श्रोताओं ने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। दोस्तों, इस संसार में बहुत से लोग सोचते हैं कि हमने किसी के लिए बहुत भलाई की, लेकिन बदले में हमें क्या मिला। लेकिन हमें यह भी सोचना चाहिए कि शायद हमारा स्वभाव यही कहता है कि हम ऐसा ही करें और सामने वाले का स्वभाव है वो वही तो देगा। इसलिए भला करते वक्त कभी ऐसा ना सोचें कि हमें वैसा ही मिलेगा जो हम बांट रहे हैं। घर संसार फिल्म से अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज़ में। SH बिहारी की रचना है और रवि का संगीत।

मोहम्मद रफी के गाए इस रचना के साथ ही आज का भोर सुहानी कार्यक्रम अब संपन्न होता है। अपनी दोस्त वंदना चुक को दीजिए इजाजत, नमस्कार। एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं हमारे कार्यक्रम और अब सुनते हैं वंदे मातरम।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडप में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर लोगों को संबोधित भी करेंगे। श्री मोदी यूपीएससी के शताब्दी समारोह का स्मारक सिक्का, स्मारक डाक टिकट और एक पुस्तक 100 लैंडमार्क्स जजमेंट शेपिंग द पॉलिसीज ऑफ यूपीएससी एंड पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया का विमोचन भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग के 279वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री रक्षा लेखा विभाग की विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी पहलों का शुभारंभ करेंगे। इनमें भारतीय सेना की वित्तीय सूचना प्रणाली विभाग के सक्षम प्लेटफॉर्म के साथ एकीकरण, रक्षा मंत्रालय के लिए संशोधित राष्ट्रीय संकलन प्रणाली और रक्षा मंत्रालय में ट्रेजरी सिंगल अकाउंट भुगतानों की शुरुआत के लिए पेमेंट राउटिंग एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म शामिल है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अमेरिका के विस्कॉन्सिन में G20 व्यापार मंत्रियों की बैठक से अलग पोलैंड के वित्त और अर्थव्यवस्था मंत्री आंद्रेज डोमांस्की से मुलाकात की। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि दोनों के बीच भारत और पोलैंड के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से कारोबार के लिए नए अवसर पैदा करने और दोनों देशों के आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के तरीकों पर भी चर्चा की। वस्त्र क्षेत्र में उभरती प्रौद्योगिकियों पर चर्चा के लिए आज नई दिल्ली में एक वस्त्र सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय महासचिव ओम प्रकाश गुप्ता ने कहा कि इस सम्मेलन में देश भर के वस्त्र क्षेत्र से जुड़े 400 सूक्ष्म और लघु उद्योग एक साथ आएंगे। उन्होंने बताया कि वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। खनन मंत्रालय आज अपतटीय खनिज भंडारों की नीलामी शुरू करेगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की अपतटीय खनिज क्षमता को उजागर करने और देश की दीर्घकालिक खनिज और संसाधन सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि भारत में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के साथ साथ बीमारियों की रोकथाम पर भी ध्यान दिया जा रहा है। नई दिल्ली में आयोजित 4 दिवसीय विश्व गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी कांग्रेस में उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत 6 करोड़ से अधिक लाभार्थी शामिल है। इसमें प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने विपणन सत्र 2027-28 के लिए सभी अनिवार्य रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह निर्णय किसानों की उपज का लाभदायक मूल्य सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कुसुम के लिए सबसे अधिक 675 रूपये प्रति क्विंटल वृद्धि की गई है। सरसों और खसखस का मूल्य 413 रूपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने राजधानी में जल आपूर्ति, सीवर और इससे निकलने वाले गंदे पानी की सफाई करने के तंत्र को सुदृढ़ करने के लिए 17,900 करोड़ रूपये से अधिक की कई बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी दी है। जल बोर्ड ने दक्षिण दिल्ली में जल आपूर्ति तंत्र को और मजबूत करने के लिए 6,044 करोड़ रुपए की परियोजना को भी मंजूरी दी है। यमुना नदी की सफाई के लिए 13 नए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। भारत ने कल रात गुवाहाटी में खेले गए 3 मैचों की श्रृंखला के दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में वेस्टइंडीज को 8 विकेट से हराया। इसके साथ ही भारत ने श्रीलंका में श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। श्रृंखला का तीसरा और आखिरी मैच शनिवार को न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। और जापान एशियाई खेलों में भारत ने तीरंदाजी में 3 और निशानेबाजी में 1 स्वर्ण सहित कुल 4 स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 21 रजत और 29 कांस्य सहित कुल 60 पदकों के साथ 8वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

బిడ్డా అంత లేదు, సప్పుడు గట్టిగా చేయ.

0: एशियन गेम्स 2026 आईटी नगोया।
1: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ आकाशवाणी। मैं हूँ साक्षी मांडवाल और मेरे साथ है यहाँ मौजूद धर्मेंद्र जी। और दोस्तों, हम लेकर आ गए आपके लिए दी ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लाइव अपडेट्स। घड़ी में बज रहे हैं सुबह के 9:30 और हम पहला अपडेट आज आपको जो देने वाले हैं वो है सेपक तकरो की दुनिया से। इंडिया हैव क्वालिफाइड फॉर द सेमीफाइनल ऑफ द मेन्स क्वाड्रेंट इवेंट ऑफ सेपक तकरो आफ्टर दैट टू स्ट्रेट विक्ट्रीज इन द ग्रुप स्टेज। दिस मीन्स दैट इंडिया हैज अश्योर्ड और बीन अश्योर्ड ऑफ अनदर मेडल for our country at the Asian Games 2026. India defeated Vietnam in the men's quadrant group A match of the Sepak Takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-17, thereby defeating Vietnam 2-0. The rules, by the way, dosto, aapko ye bhi bata de, that the rules state that both the semi-finalists will get a bronze medal at least. That means, Dharmendra, भारत को एक और मेडल आज अश्योर हो चुका है
2: जी। और उधर कुश्ती से तो काफी अच्छी खबर आ रही है साक्षी। भारत के नितेश सिवाज ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज करके फाइनल में जगह बना ली है और भारत का मेडल वहां पर पक्का हो गया है। उन्होंने हांगझोउ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगकुयाग गानाबातार को 9-0 से हराया। इस जीत के साथ नितेश ने फाइनल में जगह बना ली और इसी के साथ भारत का 2026 एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला मेडल पक्का हो गया है। नितेश ने इसी साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था। फाइनल में उनका सामना ईरान के मेहदी बालिहाम जेहदे या जापान के यूरी नागाचातो से होगा। फाइनल आज के बाद खेला जाएगा और हम आपको यह भी बताएं कि पहली बार 64 साल के बाद ग्रीको रोमन किसी रेसलर ने एशियाड के फाइनल में जगह बनाई है। और कुश्ती से ही एक और अच्छी खबर तो थी, लेकिन अब थोड़ी सी उसमें गड़बड़ यह हो गई है कि मानसी अहलावत सेमीफाइनल में तो पहुंची थी लेकिन सेमीफाइनल में पराजित हो गई हैं। भारत की मानसी अहलावत महिला 62 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में जापान की दो बार की वर्ल्ड चैंपियन नोनोका ओजाकी से 0-6 से हार गई। ओजाकी ने शुरुआत में टेकडाउन से 2 अंक लिए और फिर एक और टेकडाउन की बढ़त से 4-0 स्कोर कर दिया। उन्होंने दूसरे पीरियड में भी मानसी को अंक नहीं दिया, बाद में एक और टेकडाउन से स्कोर 6-0 कर दिया। मानसी अब रेपेचेज में खेलेंगी, यहां जीतने पर वो ब्रॉन्ज मेडल जीत सकती हैं।
1: जी, और अब वॉलीबॉल का आपको अपडेट देते हैं जहां से मैं आपको कुछ ज्यादा अच्छी खबर नहीं देने वाली हूं, जहां पर हम आपको बता सकते हैं दैट पाकिस्तान डिफीटेड इंडिया 3-0 इन द मेंस वॉलीबॉल क्वार्टर फाइनल टू एंड इंडियाज कैंपेन एट द एशियन गेम्स। पाकिस्तान टुक द

0: Opening set 25-19 before edging a closely fought second set 25-23. Then they closed out the contest with an 18-25, or rather should we say, that resulted in Pakistan completely dominating India in a straight set victory. India's wait for a first Asian Games medal in the men's volleyball since 1986 continues after the quarterfinal defeat.
1: और एक खबर जैसी आपने कहा कि अच्छी खबर नहीं है, स्क्वाश में भी हमारी महिला टीम पराजित हो गई है और सेमीफाइनल का ये मुकाबला था हांगकांग के खिलाफ और भारतीय टीम इस मुकाबले में संघर्ष करती तो दिखी लेकिन आगे नहीं बढ़ सकी। तन्वी खन्ना ने स्क्वाश महिला टीम इवेंट के सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ भारत की वापसी कराई। उन्होंने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराया। उनकी जीत से भारत ने 1-1 की बराबरी हासिल की। तन्वी ने पहला गेम 4-11 से गंवाने के बाद वापसी की। उन्होंने अगले 3 गेम 13-11, 11-9, 13-11 से जीते। इससे पहले चान सिन युक ने अनहत सिंह को 3-2 से हराया। स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा और जोशना चिरप्पा को निर्णायक मुकाबला खेलना था लेकिन वहां वो पराजित हो गई।
0: जी, एंड अ क्विक अपडेट फ्रॉम आर्चरी वेयर वी हैव चिकिता तानीपार्थी ओपन्ड द इंडियाज एक्शन ऑन डे 13 ऑफ द एशियन गेम्स 2026। हाउएवर शी कम्पीटेड अगेंस्ट नूरी सादिया अशरीफा इन द क्वार्टर फाइनल ऑफ द वुमेन्स इंडिविजुअल कंपाउंड आर्चरी। शी हैज ऑलरेडी क्लिंच्ड 2 गोल्ड मेडल्स एट द इवेंट एज पार्ट ऑफ द मिक्स्ड टीम एंड वुमेन्स टीम रिस्पेक्टिवली, बट शी डिड नॉट लुक एट अ बेस्ट टुडे एज अ सीरीज ऑफ 9s एंड 1-8 इन द फाइनल राउंड कुड ओनली टेक अ फाइनल स्कोर टू 143. As a result, we saw her crashing out of the Asian Games 2026 today. However, on a much more brighter and nicer note, she should be proud of her performance, having already secured 2 gold medals.
1: और एक अच्छी खबर आ रही है, बहुत ही अच्छी खबर है। भारत ने रजत पदक जीत लिया है सेलिंग में और ये जो रजत पदक है वो स्किफ इवेंट में मनु और नोबेल ने दिलाया है। ये बहुत बढ़िया खबर आ रही है साक्षी।
0: ऑफ कोर्स गुड न्यूज देयर एंड कांग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। बट क्रिकेट की दुनिया से भी धर्मेंद्र एक क्विक अपडेट अपने दोस्तों को बता देते हैं कि आज पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से हरा कर अपनी जगह गोल्ड मेडल के लिए फाइनल के अंदर तय कर ली है। यस, इन व्हाट वाज रेन अफेक्टेड मैच एंड अ शॉर्टेंड सेमीफाइनल वी सॉ बांग्लादेश सेटिंग पाकिस्तान अ टारगेट ऑफ 112 फ्रॉम 13 ओवर्स व्हिच पाकिस्तान वाज एबल टू चेस डाउन कॉन्फिडेंटली एंड इजिली बाय मार्जिन ऑफ 6 wickets with 9 balls to remain. And और एक बड़ी न्यूज जो है धर्मेंद्र, वो ये है कि आज भारत और श्रीलंका भी आमने सामने होने वाले हैं दोस्तों इन द सेमीफाइनल मैच। एंड हूएवर विंस दिस गेम विल बुक अ प्लेस फॉर देमसेल्व्स इन द फाइनल एंड विल बी मीटिंग पाकिस्तान इन द फाइनल ऑफ द एशियन गेम्स 2026।
1: जी, और अगली अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
0: जी जरूर, 10:30 आपको मिलेंगे हम एक बार फिर से विद द नेक्स्ट अपडेट। फॉर नाउ इट्स गुड बाय।
2: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
3: जागते रहो जागते रहो,
4: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो।
3: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
4: अफवाहों से,
3: धोखाधड़ी से
4: जागरूक होना है अपने अधिकारों के प्रति,
3: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
4: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
3: सजग भारत,
4: जागरूक भारत,
3: सशक्त भारत।
4: सुनिए सजग भारत
3: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
4: जागरूक बनिए,
3: सजग रहिए।

0: హలో డియర్ లిసనర్స్, మన లైఫ్లో ఎక్కువ కేర్ చేసే వాళ్ళతోనే మనకి ఎక్కువ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ కూడా జరుగుతాయి. అవునా? మనం మన యాంగిల్ నుంచి చూస్తాం, వాళ్ళు వాళ్ళ యాంగిల్ నుంచి చూస్తారు. మనం మనమే కరెక్ట్ అని అనుకుంటాం.
1: 2026 అప్డేట్.
2: ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 ఐచి నగోయా.
3: Hello and a very warm welcome to all our listeners of Akashvani. Dosto, main hu Sakshi Mandwal. Mere saath is waqt yahan maujood hai Dharmendra aur hum lekar aa gaye hain aapke liye subah ke 10:30 baje ki live updates from the ongoing Asian Games 2026. Sabse pehle baat kar lete hain cricket ki, jahan Bharat aur Sri Lanka aaj hain is waqt aamne samne in the semi final clash, and India was obviously put into bat first today. Ji ha, and ballebazi karte hue Bharat ne aaj shuruaati daur mein hi bahut jaldi apne do wickets, important wickets, Abhishek Sharma aur Sanju Samson ka gawa diya very early on, and as a result they started reeling in at 24 for 2. Lekin then Vaibhav Suryavanshi ki upar pura ka pura ek tarah se kehte responsibility aa gayi to help India somehow sustain themselves and put themselves in a commanding position, and Vaibhav Suryavanshi then was able to lead India towards an important innings where he hit 20 gendon mein 38 runs, which includes 6 fours in 2 sixes at a strike rate of 190, thereby helping India somehow stabilize themselves at 59 runs for the loss of 2 wickets. But as I say this, Vaibhav Suryavanshi also has now gotten out. Ji ha, Vaibhav Suryavanshi got out and he was caught by Sinith Jayawardena. As a result, India now are 59 for 3 in just 6.2 overs. Dharmendra, a lot needs to be seen as to how the Indian innings will develop in the stipulated 20 overs.
4: Yeah, lekin tirandazi se to mili juli khabar aa rahi hai. Purushon ke vyaktigat compound event mein Ganesh Maniratnam ne semifinal mein jagah bana li hai, jahan unka samna kuch hi der mein Dakshin Korea ke Kim Jong Ho se hoga. Ganesh Maniratnam ne quarter final mein Chini Taipei ke ची लुनचेन को 148-138 के अंतर से हराया. गणेश ने इस मुकाबले में सिर्फ 2 अंक गवाए. स्कोर 29-28, 29-28, 30-29, 30-26 और 30-27 रहा. हालांकि चिकिता तनिवार थी, क्वार्टर फाइनल में हार गई, और एक जो मेडल की उम्मीद उनसे थी वो पूरी नहीं हो सकी. काफी नजदीकी मुकाबला रहा और इंडोनेशिया की नुरिसा दियान अशरीफा ने उन्हें हराया. और तीरंदाजी में ये जो खबर रही, ये मिली जुली खबर है
3: जी. और जूडो की दुनिया से आपको कुछ खबर दे देते हैं, जहां यामिनी मौर्य क्वालिफाइड फॉर द वुमेन्स 57 किलोग्राम्स कैटेगरी क्वार्टर फाइनल इन जूडो. लेकिन क्वार्टर फाइनल से आगे जीत पाने के बाद जब वो आगे गई, तो वहां पर हमने देखा कि यामिनी मौर्य लॉस्ट वुमेन्स 57 किलोग्राम क्वार्टर फाइनल टू मंगोलियाज अरियुन जया तरबिश बायुको. एंड दूसरी तरफ अब बात करते हैं कि शी देन मूव्ड इनटू द रेपेचेज वेयर शी वुड बी फेसिंग जापान्स मियो श्रीकाने फॉर अ प्लेस इन द ब्रॉन्ज मेडल मैच. दूसरी तरफ भारत की तरफ से हमने देखा कि इनुनगन भी तकलबाम एडवांस टू द वुमेन्स 70 किलोग्राम्स क्वार्टर फाइनल्स आफ्टर बीटिंग नेपाल्स पूनम श्रेष्ठ बाय इपो. शी विल टेक ऑन नॉर्थ कोरियाज मून सोंग हुई नेक्स्ट.
4: और शूटिंग से अच्छी खबर आने का सिलसिला जारी है. अनीश भानवाला ने 25 मीटर रैपिड फायर

0: पिस्टल के फाइनल में जगह बना ली है। हालांकि अनीश क्वालिफिकेशन में 9वें स्थान पर रहे, लेकिन इस प्रदर्शन के बावजूद उनसे पदक की उम्मीद साक्षी तो बनी हुई है।
1: जी, और कयाक की दुनिया से भी आपको कुछ खबरें दे देते हैं, जहां पर इंडिया शिखा चौहान हैज बुक्ड अ प्लेस इन द वुमेन्स कयाक सिंगल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 10th इन द सेमीफाइनल्स। शिखा क्लॉक 246.16 सेकंड्स टू सिक्योर अ स्पॉट इन द फाइनल व्हिच विल बी बिगिनिंग शॉर्टली एट अराउंड 10:30 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, व्हिच शुड बी से दैट द मैच इज ऑल सेट टू हैपन नाउ।
0: और टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में भारत के सुमित नागल चीन के यिबिंग वू से पराजित हो गए। स्कोर 4-6, 4-6 रहा। हालांकि सुमित ने वापसी की भरपूर कोशिश की, बहुत जोर लगाया, लेकिन भारी साबित हुए यिबिंग वू, और उन्होंने इस जीत के साथ टेनिस में भारत की जो दमदार चुनौती हुआ करती थी उस पर पानी फेर दिया और टेनिस में भारत की उम्मीदें समाप्त हो गई हैं।
1: जी, और सेलिंग की दुनिया से आज सुबह आई सबसे बड़ी खबर भारत के लिए, जहां इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरसिनिकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेन्स स्किफ इवेंट। इंडियाज प्रिंस कुरसिनिकल नोबल एंड मनु फ्रांसिस क्लेम द सिल्वर। द इंडियन पेयर फिनिश सेकेंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड द गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 नेट पॉइंट्स। इंडिया रिकॉर्डेड 2 रेस wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China went on to claim the gold while Hong Kong took the bronze medal.
0: और ताइक्वांडो में भारत की रूपा बायूर महिला व्यक्तिगत पुंसे के सेमीफाइनल में 7.6100 अंक के साथ 5वें स्थान पर रही। वे फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई हैं। पुंसे में हम आपको बता दें कि खिलाड़ी अकेले कई मूवमेंट का प्रदर्शन करते हैं, इसमें किसी प्रतिद्वंदी से मुकाबला नहीं होता। प्रदर्शन का आकलन सटीकता और प्रस्तुति के आधार पर किया जाता है।
1: जी, एंड जस्ट बिफोर वी रैप अप दिस अपडेट, लेट्स गिव यू ऑल्सो वेयर इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टेबल एज ऑफ नाउ। भारत के पास इस समय कुल लाकर 62 मेडल्स हो चुके हैं। भारत इस समय मेडल टेबल में 8वें स्थान पर है विद अ टोटल ऑफ 62 मेडल्स विच इंक्लूड्स 10 गोल्ड 22 सिल्वर 30 ब्रॉन्ज। दैट इज ऑल दैट वी हैड इन दिस अपडेट ऑफ 10:30 AM फॉर ऑल योर लवली पीपल। हम आपसे दोबारा जुड़ेंगे सुबह 11:30 बजे। फिलहाल मुझे साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को दीजिए इजाजत। थैंक यू, गुड बाय।

0: सिर्फ रातों में नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है।
1: अफवाहों से,
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति,
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: Cricket, where India is up against Sri Lanka in the semi-final match today, and India, having been put into bat first today, was able to put on a total of 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs, thanks to a very important and very resourceful contribution by Ishan Kishan, who put in 80 runs in 46 balls at a strike rate of 173.91, which included 4 fours and 5 sixes, when at one stage India was reeling at 87 for 4. It was a very confident and a very important contribution, the runs that came in from the bat of Ishan Kishan. And agar Sri Lanka ki baat kare to Sri Lanka ke bowlers ki taraf se ek all-rounded performance aaj hume dekhne ko mila, jahan par Tarendu Ratnayake ne 2 wickets liye, Sahan Archandigge ne 2 wickets liye, wahi वनुजा साहन ने एक विकेट लिया, लसित क्रूसपुल ने एक विकेट लिया और फर्नांडो ने भी एक विकेट लिया. सो वेल राउंडेड ऑल राउंडेड एफर्ट फ्रॉम द श्रीलंकन बोलर्स, बट नाउ श्रीलंका नीड्स 170 इफ दे वांट टू गो अहेड एंड विन दिस मैच अगेंस्ट इंडिया. द चेज कमिंग अप नेक्स्ट ऑल्सो.
1: और साक्षी, स्क्वाश से अच्छी खबर है जहां भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है. हालांकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को उम्मीदों के विपरीत 1-2 से हार मिली. पहला मैच अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ 2-3 से गवाया. स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा. तन्वी खन्ना ने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराकर टीम को वापसी कराई. तन्वी ने मैच को 13-11, 11-9, 13-11 से वो जीता. लेकिन निर्णायक मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा होजे लोक से लगातार गेम में 4-11, 7-11, 9-11 से हार गई और भारतीय टीम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा.
0: जी, एंड इन द वर्ल्ड ऑफ शूटिंग, इंडियाज अनीश भानावाला हैज मेड इट थ्रू द मेंस 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल आफ्टर फिनिशिंग 9th इन द क्वालिफिकेशन विद अ टोटल ऑफ 576 पॉइंट्स. भानावाला फाइनल सीरीज जील्डेड जस्ट 94, बट ही अर्नड अ प्लेस इन द फाइनल आफ्टर साउथ कोरिया हैड 3 शूटर्स फिनिश इनसाइड द टॉप 8. विद ओनली 2 शूटर्स फ्रॉम ईच कंट्री अलाउड टू क्वालिफाई, भानावाला मूव्ड इनटू द फाइनल. इट विल be India's final shooting event at these Asian Games, with Bhanwala now carrying the country's last medal chance in this discipline, and that match is scheduled for noon today Indian Standard Time.
1: Ji haan, aur kal ki 3 gold ki hat-trick ke baad jo teerandazon ki hum baat kar rahe the, aaj ek bronze bhi aaya hai. Aur ab hum aapko ye bataye ki tennis mein ek nirasha phir se haath lagi hai. Purushon ke singles quarter final mein Bharat ke Sumit Nagal Cheen ke Yibing Wu se 4-6, 4-6 से हार कर बाहर हो गए. नागल के इस हार के बाद 40 साल बाद ये पहला

0: मौका है जब भारत को टेनिस में कोई पदक नहीं मिला और खाली हाथ लौटना पड़ रहा है।
1: Right, in the world of taekwondo also we can give you a quick update that India's campaign in the women's individual Pumse event in taekwondo ended as Rupa Beor bowed out of the semi-final. She finished with 7.6100 points. This was not enough to finish amongst the 8 stars who qualified for the final.
0: और कुश्ती की बात करें तो भारत के लिए मिलीजुली खबर है। नितेश सिवाच ने पुरुषों के ग्रीको रोमन 97 किलोग्राम वर्ग के सेमीफाइनल में शानदार जीत दर्ज कर एक पदक पक्का कर लिया है। नितेश ने हांगझोऊ एशियन गेम्स के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट मंगोलिया के गंगखुयांग गनबातार को सेमीफाइनल में 9-0 से हराया। इस जीत के साथ नितेश ने भारत का 2026 एशियन गेम्स में कुश्ती का पहला मेडल पक्का कर दिया। नितेश ने इस साल एशियन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीता था।
1: Right, and as we wrap up this update, a quick look on the medal table also, with India standing still on the 8th spot in the medal table with a total of 63 medals, which includes 10 gold, 22 silver and 31 bronze. Here's hoping that the Indian medal tally carries on increasing and that India finishes on a good spot. For now, it's me, Sakshi Mandwal, and Dharmendra saying goodbye to all our listeners. We'll be joining you once again at 12:30 p.m. in the afternoon with the updates of the ongoing Asian Games 2026. Thank you for tuning in. Goodbye.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. The time in the studio clock is 11:36, which means, I'll tell you, India sirf ek country nahi. यहाँ हर स्टेट की अपनी एक ब्यूटीफुल कहानी, अपनी कल्चर और अपनी पहचान है. इसी डाइवर्सिटी को जानने और एक दूसरे के और करीब आने के लिए है हमारा सेगमेंट एक भारत श्रेष्ठ भारत. और इस वीक हम एक्सप्लोर कर रहे हैं केरलम को, विच इज़ गॉड्स ओन कंट्री. केरलम का नाम सुनते ही सबसे पहले क्या याद आता है? ग्रीन हिल्स, कोकोनट ट्रीज या ब्यूटीफुल बैक वाटर्स. चलिए सबसे पहले चलते हैं मुन्नार, केरलम का फेमस हिल स्टेशन, जहाँ हर तरफ टी गार्डन्स और मिस्टी माउंटेन्स है. सुबह की ठंडी हवा, माउंटेन्स पर चाहे क्लाउड्स, वो एंडलेस ग्रीन, एकदम सो ब्यूटीफुल पोस्ट कार्ड जैसा व्यू. मुन्नार में रवैकुलम नेशनल पार्क, मट्टुपेट्टी डैम और कुंदाला लेक जैसे प्लेसेस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. और मुन्नार के बाद चलिए तिक्कड़ी, जहाँ केरलम का वाइल्ड साइड देखने को मिलता है. पेरियार टाइगर रिजर्व में बोट राइड करते हुए फॉरेस्ट और यू नो वाइल्ड लाइफ देखना इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस. तो केरलम में जर्नी शुरू हुई माउंटेन से, अब देखिए यही जर्नी हमें फॉरेस्ट, बीचेस और बैकवाटर्स तक कहाँ कहाँ ले जाते हैं. कीप लिसनिंग टू FM रेनबो 101.9.

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

श्री वैष्णवी, वी आर इन एक भारत श्रेष्ठ भारत। अब थोड़ा एडवेंचर हो जाए तो केरलम के वायनाड की तरफ चलते हैं। वायनाड में फॉरेस्ट, वाटरफॉल्स, कॉफ़ी प्लांटेशंस और ब्यूटीफुल हिल्स है। नेचर लवर्स के लिए एक प्रॉपर एस्केप। हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो इदाकल केव्स देखिए, और ट्रैकिंग पसंद है तो चिम्ब्रा पीक भी एक्साइटिंग ऑप्शन है। अब चलिए वागमोन, जहाँ ग्रीन हिल्स और ओपन मिडोज देखकर बस एक ही वर्ड याद आता है, यू नो, पीस। और एडवेंचर लवर्स के लिए यहाँ पैराग्लाइडिंग भी एक एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है। मतलब फैमिली के साथ जाओ तो रिलैक्सिंग ट्रिप, फ्रेंड्स के साथ जाओ तो एडवेंचर ट्रिप। अब केरलम के एक आइकॉनिक वाटरफॉल की तरफ जाते हैं, वो है अतिरपल्ली। पानी की पावरफुल फ्लो, ग्रीन फॉरेस्ट और वाटरफॉल की आवाज़ एकदम नेचर का लाइव कॉन्सर्ट लगता है। वायनाड गिव्स यू, यू नो, दोस फॉरेस्ट, वैगमोन गिव्स यू हिल्स एंड अतिरपल्ली गिव्स यू दैट वॉव मोमेंट। तो केरलम आए तो सिर्फ फेमस प्लेसेस नहीं, नेचर के इन डिफरेंट शेड्स को भी अपनी लिस्ट में ज़रूर रखिए। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो 101.9।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यूपीएससी की 100 साल की यात्रा में पीढ़ियां, सरकारें, तकनीक और सिलेबस बदले हैं, लेकिन इस संस्था पर भरोसा पहले जैसा ही अटूट बना हुआ है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ऐसे युवाओं को लोक सेवा में लाने की जरूरत पर जोर दिया जो सरकारी पद के लिए नहीं बल्कि जनसेवा के लिए प्रेरित हों।
1: ये उत्सव उस विश्वास का है जो हर भारतवासी का इस संस्था पर है। 100 वर्ष की इस यात्रा में पीढ़ियां बदली, सरकारें बदली, लेकिन यूपीएससी पर भरोसा आज भी उतना ही अटूट है। 100 वर्षों की इस यात्रा पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया गया है। 100 महत्वपूर्ण केस लॉज का संकलन भी जारी हुआ है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि आज 21वीं सदी का भारत एक नई कार्य संस्कृति के साथ आगे बढ़ रहा है और इसका मूल सिद्धांत है जनहितैषी, सक्रिय और सुशासन। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि यूपीएससी ने पिछले 12 वर्ष में कई उपलब्धियां हासिल की हैं और कई नए आयाम जोड़े हैं। उन्होंने कहा कि यूपीएससी के जरिए होने वाली सरकारी नियुक्तियों की संख्या बढ़ी है और भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता भी आई है, जिससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। ये कार्यक्रम साल भर चलने वाले उन समारोहों का समापन है जो पिछले साल 1 अक्टूबर को शुरू हुए थे और 1926 में यूपीएससी की स्थापना के 100 साल पूरे होने का जश्न मना रहे थे। दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही फ्लाई दुबई की फ्लाइट के कप्तान स्मिथ मच्छार पर चाकू से हमला करने के आरोप में विमान के सह पायलट को गिरफ्तार कर लिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कैप्टन मच्छार को 174 लोगों की जान बचाने वाला सच्चा नायक बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मच्छार पर गर्व है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि उनके बहादुरी और मुश्किल समय में सूझबूझ दिखाने के हौसले ने सभी का दिल जीत लिया है। उन्होंने कहा कि उनकी बहादुरी और तुरंत कार्रवाई से एक बड़ा खतरा टल गया। राष्ट्रपति मुर्मू ने उनके जल्द ठीक होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर कहा कि कैप्टन स्मिथ मच्छार ने खतरे के समय असाधारण साहस और सूझबूझ का परिचय दिया जो अत्यंत प्रशंसनीय है। भारत को इस असाधारण नायक पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ मच्छार की पत्नी और उनके माता पिता से बात की। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री ने कैप्टन स्मिथ की बहादुरी की सराहना की जिससे सैकड़ों लोगों की जान बची। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय मिशन उन्हें हर संभव मदद पहुंचा रहा है। विदेश मंत्री ने कहा कि श्री मच्छार ने गंभीर खतरे के बावजूद सैकड़ों लोगों की जान बचाई और एक बड़ी त्रासदी को टाल दिया। स्वच्छता ही सेवा 2026 अभियान के अंतर्गत राष्ट्रव्यापी एक दिन एक घंटा एक साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छता सुनिश्चित करना और स्वच्छता में सुधार करना है, साथ ही आम जनता में स्वच्छता और अपशिष्ट निपटान के प्रति जागरूकता पैदा करना भी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज नई दिल्ली में रक्षा लेखा विभाग डीएड के 279वें वार्षिक दिवस समारोह को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं उनका।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to Yaadon Ki Barat, only on FM Rainbow 101.9. SD Burman ji ke music ko samajhna hai to unke childhood ko samajhna bahut zaruri hai. Unke aas paas Bengal ke folk songs ka mahol tha, especially Boatman ke Baitiyali songs. ये सिंपल सॉन्ग्स थे लेकिन उनमें इमोशंस बहुत स्ट्रांग होते थे. बाद में एस डी बर्मन जी ने क्लासिकल म्यूजिक भी सीरियसली सीखा. केसी डे, भीष्म देव चट्टोपाध्याय, बदल खान और अलाउद्दीन खान जैसे बड़े म्यूजिशियन से ट्रेनिंग ली. मतलब एक तरफ क्लासिकल डिसिप्लिन और दूसरी तरफ फोक म्यूजिक की सिंपलिसिटी, और बर्मन दादा ने दोनों को मिक्स करके अपनी एक कम्प्लीटली डिफरेंट साउंड बना ली. वो सिर्फ म्यूजिक सुनते नहीं थे, सराउंडिंग से भी म्यूजिक पिक करते थे. इसीलिए उनकी कंपोजिशंस में कभी नदी की आवाज़ जैसी फीलिंग मिलती है, कभी विलेज फोक की सिंपलिसिटी मिलती है. ये एक ब्यूटीफुल लेसन भी है. इंस्पिरेशन सिर्फ बुक्स या क्लासरूम्स में नहीं होते हैं, कभी कभी अपने आसपास की सिंपल चीज़ों को नोटिस करना भी एक ग्रेट आर्टिस्ट बना सकती है. कीप लिसनिंग टू FM Rainbow 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: You're tuning to Yadonki Bharat only on FM Rainbow 101.9. Ab ek interesting baat suniyega. ST Burman Royal family se thi, lekin music mein unka journey bilkul royal treatment wala nahi tha. Unke family background mein music ki jagah zarur thi, lekin film music ko career banana unke liye easy decision nahi tha. उन्होंने अपनी कंफर्ट जोन छोड़ी और कोलकाता चले गए, जहां उन्होंने म्यूजिक को सीरियसली परस्यू किया. वहां से उनका रेडियो सिंगर के रूप में भी सफ़र शुरू हुआ. 1932 में उनका पहला रिकॉर्ड रिलीज़ हुआ और 1934 में बंगाल ऑल इंडिया म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला. लेकिन असली हिंदी फिल्म सक्सेस उन्हें बहुत बाद में मिली. 1944 में वो बॉम्बे आए और वहाँ नए इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में खुद को एस्टैब्लिश करना पड़ा. सो बेसिकली नाम और बैकग्राउंड होने के बाद भी सक्सेस इंस्टेंटली नहीं मिलती है. उन्होंने पेशेंस रखा, अपनी स्टाइल को नहीं छोड़ा और स्लोली अपनी जगह बनाई. तो गाइस, एक स्मॉल रिमाइंडर, स्टार्टिंग स्लो होना मतलब जर्नी गलत रास्ते पर नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. All you need is to have patience and perseverance. Keep listening to FM Rainbow 101.9.

0: the show that's called Play It Cool. We'll take a little break now because this is now, indeed it is, time for the Asian Games 2026 update.
1: एशियन गेम्स 2026 आईजी नगोया।
2: हेलो एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द लिसनर्स ऑफ ऑल इंडिया रेडियो। मैं हूं साक्षी मांडवाल और मेरे साथ इस वक्त यहां मौजूद हैं धर्मेंद्र। हम लेकर आ गए हैं आपके लिए दोपहर के 12:30 बजे के ऑन गोइंग एशियन गेम्स 2026 के लेटेस्ट अपडेट्स। एंड क्विकली स्टार्टिंग ऑफ विद क्रिकेट, इंडिया स्टैंडिंग ऑन द ब्रिंक ऑफ मूविंग ऑन इन टू द फाइनल्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026 इन द इंडियन मेन्स T20 क्रिकेट। जी हाँ, आपको बता दें आज सेमीफाइनल के मुकाबले में भारत और श्रीलंका के बीच में श्रीलंका ने पहले टॉस जीतकर बोलिंग करने का निर्णय लिया। In return, when India was put into bat first, India was able to put on 169 runs on board in 20 overs. As a result, Sri Lanka ko mila 170 run ka target jeetne ke liye. Aur uske contrast mein, when the Sri Lankan batters came down to bat, they in fact just completely piled up and became 45 for the loss of 9 wickets. Yani, there was a total collapse from the Sri Lankan team when it came to chasing down the target. 9.4 overs abhi pure hue hain. और श्रीलंका की पूरी टीम ऑलमोस्ट सिमट चुकी है 45 रनों में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ वन मोर विकेट फॉर इंडिया एंड विद दैट इंडिया विल देन मूव ऑन टू सील देयर बर्थ इनटू द फाइनल्स। एंड एज आई से दैट टू ऑल आवर लिसनर्स, इट इज इन फैक्ट ऑल ओवर फॉर श्रीलंका फ्रॉम हियर एंड इंडिया हैज मूव्ड इनटू द फाइनल्स ऑफ द एशियन गेम्स 2026 बाय कंप्लीटली वाइंडिंग ऑफ श्रीलंका इन जस्ट अ पॉल्ट्री टोटल ऑफ 45 रन्स। जी हाँ, श्रीलंका की पूरी टीम 45 रनों में सिमट गई। 10 ओवर भी पूरे नहीं हुए, 9.5 ओवर के अंदर भारत की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने 2 विकेट लिए, अक्षर पटेल ने 2 विकेट लिए, वॉशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट लिया, अभिषेक शर्मा ने भी 2 विकेट लिए, रवि बिश्नोई के नाम एक भी विकेट नहीं रहा। लेकिन overall well-rounded team effort, collective effort put out by the Indians today when it comes to bowling. Definitely the batting star for India being Ishan Kishan, who was able to contribute 80 runs from his bat in mere 46 balls with a strike rate of 173.91, and of course the second batter being Vaibhav Suryavanshi, who made 38 runs in 21 balls with a strike rate of 180.95, thereby helping India put on 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs. So congratulations to all the fans of cricket, to the Indian men's cricket team, because from here now India is set to meet Pakistan on this coming Sunday in the Asian Games 2026 for the final that will be happening in between India and Pakistan. Dharmendra.
3: Diya, aur aaj hockey ka bhi to mukabla hona hai Bharat aur Pakistan ke beech mein, wo bhi kafi dilchasp hoga, lekin hum aapko abhi ki ek jankari de dein ki Bharatiya purush quadrant team bhi semi-final mein pahunch gayi hai Sepak Takraw ke आखिरी ग्रुप मैच में। वियतनाम को 2-1 से हराया और स्कोर रहा 10-15, 15-13, 15-7। पहला सेट गंवाने के बाद दूसरे सेट में 4-8 से पीछे थी भारतीय टीम और फिर दूसरा सेट जीता, फिर तीसरा सेट आसानी से जीतकर ग्रुप टॉप किया और सेमीफाइनल में जगह बना ली, यानी पदक यहाँ पक्का हो गया है।
2: जी, और शूटिंग की दुनिया से आपको बता दें दोस्तों कि शूटिंग का ये इवेंट अब कम्प्लीटली समाप्त हो चुका है। इंडिया का एशियन गेम्स में शूटिंग इवेंट के अंदर का सफर भी समाप्त हो गया। अनीश बनवाला हैज बीन एलिमिनेटेड इन द 7th प्लेस इन द मेंस 25 मीटर रैपिड पिस्टल फाइनल। अनीश शॉट अनदर 4x5 टू फिनिश विद 11 हिट्स फ्रॉम 15 शॉट्स। ऑल्दो दैट स्कोर वाज टाइड फॉर द 3rd बेस्ट एट द स्टेज, हिज लोअर क्वालिफिकेशन स्कोर मेंट ही लॉस्ट द टाई ब्रेक एंड वाज रैंक्ड 7th। विद दिस, इंडियाज कैंपेन इन शूटिंग also comes to an end and India finished with a total of 15 medals in shooting, 3 gold, 8 silver, 4 bronze.
3: लेकिन निशाना साधने के एक और खेल तीरंदाजी में भारतीय खिलाड़ियों का प्रदर्शन लगातार अच्छा है और जारी है वो प्रदर्शन। कल 3 गोल्ड मेडल जीते थे, आज एक ब्रॉन्ज मेडल आया है और गणेश ने ये ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। 15 में से 14 निशाने उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल के मुकाबले में परफेक्ट 10 के साधे और गणेश मणिरत्नम ने यह मुकाबला 149-144 के बेहद आसान अंतर से जीत लिया और इस मुकाबले को जीतकर

0: उन्होंने एक और मेडल भारत के लिए पक्का कर दिया है। तो इस तरह से तीरंदाजी में लगातार अच्छी खबर आ रही है, और स्क्वाश से भी अच्छी खबर है जहां भारतीय महिला टीम ने कांस्य पदक जीत लिया है। हालांकि सेमीफाइनल में भारतीय टीम को उम्मीदों के विपरीत 1-2 से हार मिली हांगकांग के खिलाफ। पहला मैच अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ 2-3 से गंवाया। स्कोर 11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12 रहा। तन्वी खन्ना ने वर्ल्ड नंबर 33 ली का यी को 3-1 से हराकर टीम को वापसी कराई। तन्वी ने मैच को आसानी से जीता, लेकिन निर्णायक मैच में अनुभवी जोशना चिनप्पा होजे लेक से हार गई, और इस तरह से भारत को कांस्य से संतोष करना पड़ा।
1: जी, एंड अ क्विक रैप अप ऑन द मेडल टेबल आल्सो एज टू हाउ इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टैली। वी विल नाउ टेल यू दैट इंडिया इज प्रेजेंटली प्लेस्ड एट द 8th पोजीशन विद द टोटल ऑफ 62 मेडल्स, जिसमें 10 गोल्ड है, 21 सिल्वर और 31 ब्रॉन्ज आ चुके हैं। जिसमें आपको बता दें, आर्चरी की दुनिया से अभी तक 3 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज आया है। एथलेटिक्स में 1 गोल्ड, 9 सिल्वर, 14 ब्रॉन्ज। बैडमिंटन में 1 ब्रॉन्ज, बॉक्सिंग में 3 ब्रॉन्ज मेडल्स, क्रिकेट में 1 गोल्ड आया है, कबड्डी 2 गोल्ड आ चुके हैं, कुराश में 1 ब्रॉन्ज आया है, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में 1 ब्रॉन्ज आया है, रोइंग में 1 ब्रॉन्ज आया है, शूटिंग में 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज, सॉफ्ट टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, स्क्वॉश में 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज, टेबल टेनिस में 1 ब्रॉन्ज, वेट लिफ्टिंग में 1 सिल्वर, रेसलिंग में 1 ब्रॉन्ज और वुशू में भी 1 सिल्वर। विद दिस, इंडिया प्रेजेंटली प्लेस्ड एट द 8th पोजीशन ऑन द मेडल टैली। फॉर मी, फॉर नाउ इट्स मी साक्षी मांडवाल एंड धर्मेंद्र सिंह गुड बाय टू ऑल आवर लिसनर्स। हम आपके साथ एक बार फिर से जुड़ेंगे दोपहर के 1:30 बजे, ब्रिंगिंग you all the live updates of the ongoing Asian Games. Thank you for tuning in.
2: Hello dear listeners, mana life lo ekkuva care chese vallatone manaki ekkuva misunderstandings kuda jarugutayi. Avuna, manam mana angle nunchi chustam, vallu vaala angle nunchi chustaru. Manam maname correct ani anukuntam, kani maybe avutala vallu kuda ade anukovachchu kada. అమ్మ మనకి చెప్పే కొన్ని మాటలు మనకి నసలాగా అనిపించవచ్చు. మన ఫ్రెండ్స్ చెప్పే నిజం మనకి హార్ష్గా అనిపించవచ్చు. ఒకరికి కరెక్ట్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంప్లీట్గా రాంగ్ అనిపించవచ్చు. బేసిక్గా ఒకరికి కన్సర్న్ అనిపించేది ఇంకొకరికి కంట్రోల్ లాగా అనిపించవచ్చు. అండ్ సమ్వేర్ బిట్వీన్ ఆల్ దీస్ మిస్అండర్స్టాండింగ్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. అలాంటి మన ఎవ్రీడే కాన్వర్సేషన్స్ వెనుక ఉన్న ఎమోషన్స్ని ఒక్కరి సైడ్ నుంచి కాకుండా రెండు పర్స్పెక్టివ్స్ నుంచి చూడడానికి, ప్రతి చిన్న అనుభవానికి, ప్రతి భావనకి వేదిక మన ఈ సిరీస్ అనువంత. At 7 p.m. every day, only on FM Rainbow 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9 with me RJ Sri Vaishnavi. अब आते हैं एसडी बर्मन जी की हिंदी फिल्म जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट मोमेंट पर. 1947 की फिल्म दुबई और इसका सॉन्ग मेरा सुंदर सपना बीत गया एसडी बर्मन के लिए मेजर ब्रेक थ्रू बना. इस गाने को गीता दत्त ने गाया था और सॉन्ग ने लिसनर्स के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट किया. सोचिए एक म्यूज़िक कंपोजर को जो बंगाल से आया है, हिंदी इंडस्ट्री में अपनी जगह बना रहा है और फिर एक सॉन्ग सडनली लोगों के दिल तक पहुंच जाता है. यहीं से एसडी बर्मन की हिंदी फिल्म जर्नी ने एक नया टर्न लिया. उसके बाद उन्होंने डिफरेंट मूड्स के सॉन्ग्स क्रिएट किए, रोमांटिक, इमोशनल, फोक बेस्ड और लाइट सॉन्ग्स. उनकी स्पेशलिटी थी कि मेलोडी को अननेसेसरली कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाते हैं, सिंपल ट्यून, स्ट्रॉन्ग इमोशन और सिंगर की वॉइस को स्पेस, बस मैजिक हो गया. आज भी मेरे सुंदर सपना बीत गया सुनेंगे तो म्यूजिक में उस वर्ल्ड में इमोशनली खो जाते हैं. तो चलिए इस ब्यूटीफुल माइलस्टोन को याद करते हुए म्यूजिक सुनते हैं. Keep listening to FM Rainbow 101.9.

0: ఏం మామా తిన్నాను పోదామంటే ఏ బిర్యానీయో మండియో అనుకుంటే ఈ అజీ ప్లేస్ కు పట్టుకొచ్చినావు.
1: వింటేజ్ బార్డ్స్ అన్ని ఇట్లనే ఉంటాయి మచ్చా, ఎప్పుడు తిన్నదే ఏం తింటావు? ఇక్కడ టమాటర్ కాట్ మస్త్ ఉంటది.
0: అదేంది మామా నేను ఎప్పుడు వినలేదు.
1: ఇదిగో ఆర్డర్ వచ్చేసింది, ముందు తిని చెప్పు ఎట్లుందో.
0: కిరాకుంది మామా, ఈ ప్లేస్లు ఈ డిష్లు ఎట్లా తెలిస్తాయి మామా నీకు ఇవన్నీ?
1: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.
2: ఎస్టీ బర్మన్ की जर्नी में देवानंद और गुरुदत्त के साथ उनका एसोसिएशन भी बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है. यू आर लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9. दिस इज मी आरजे श्री वैष्णवी एंड वी आर एन यादों की बारात. देवानंद के नवकेतन फिल्म्स के लिए उन्होंने बाजी, टैक्सी ड्राइवर, काला पानी और गाइड जैसे फिल्म्स में म्यूजिक दिया और गुरुदत्त के साथ बाजी, जाल, प्यासा और कागज़ के पुल जैसे मेमोरेबल प्रोजेक्ट्स आए. प्यासा का म्यूजिक हो या गाइड का सॉन्ग्स, बर्मन दादा हर फिल्म के मूड को समझकर म्यूजिक क्रिएट करते थे. उनका म्यूजिक सिर्फ गाना नहीं होता था, स्टोरी का पार्ट बन जाता था. और यही एक ग्रेट कंपोजर की स्ट्रेंथ होते हैं कि सॉन्ग को फिल्म से अलग नहीं होने देना. 1954 में टैक्सी ड्राइवर के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला है. लेटर गाइड के म्यूजिक को भी मेजर रिकॉग्निशन मिला. मतलब एक के बाद एक मेमोरेबल फिल्म, मेमोरेबल सॉन्ग और मेमोरेबल कोलैबोरेशन. क्या जर्नी है बॉस, एकदम गोल्डन एरा ऑफ हिंदी सिनेमा. कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9.

0: बस बस बस बस सापे रुक गया, आगे बढ़।
1: रे
0: रे के आगे क्या है? अरे वाह वाह वाह वाह वाह वाह वा, क्या गले में तासीर है।
1: ये बात है तो माँ
0: चल वापस आजा फिर से अपनी जगह पे।

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi. अब बात करते हैं एक ऐसे मोमेंट की जहां एस डी बर्मन जी ने सिर्फ म्यूजिक नहीं दिया बल्कि अपने सन आर डी बर्मन को भी एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी दी. 1969 की फिल्म आराधना का म्यूजिक एस डी बर्मन का था और इस फिल्म के सॉन्ग्स ने उनकी पॉपुलैरिटी को एक नए लेवल पर पहुँचे. मेरे सपनों की रानी में जो फेमस माउथ ऑर्गन पीस सुनाई देता है उसमें आर डी बर्मन ने माउथ ऑर्गन प्ले किया था और सफल होगी तेरी आराधना को एस डी बर्मन ने खुद गाया जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर मिला. ये इंटरेस्टिंग है ना, एक फादर ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड म्यूजिशियन और नेक्स्ट जनरेशन को भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का स्पेस दे रहा है. एस डी बर्मन का करियर यहीं रुक नहीं गया. 1973 में अभिमान के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर अवार्ड भी मिला. मतलब एज बढ़ रही थी लेकिन क्रिएटिविटी बिल्कुल यंग थी और शायद यही होता है रियल आर्टिस्ट का सीक्रेट, सीखना और क्रिएट करना कभी स्टॉप नहीं करना चाहिए. वाह दादा, क्या लेगेसी छोड़ गए. कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9.

0: एसटी बर्मन की लाइफ को देखो तो एक बात बहुत क्लियरली समझ आती है, अपनी ओरिजिनलिटी को पकड़ के रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। उन्होंने क्लासिकल म्यूजिक सीखा, फोक म्यूजिक से इंस्पिरेशन ली और फिर दोनों को अपने स्टाइल में प्रेजेंट किया। उन्होंने एक ही टाइप का म्यूजिक रिपीट नहीं किया, वक्त के साथ अपने साउंड को अडेप्ट भी किया। सिंगर भी रहे, कंपोजर भी रहे और अपनी आवाज़ से भी ऑडियंस तक पहुंचे। उन्हें संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड मिला, पद्मश्री मिला और नेशनल अवार्ड भी मिला। लेकिन अवार्ड से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि उनके गाने जनरेशन्स के बाद भी सुने जा रहे हैं। 1 अक्टूबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उन्हें याद करना एक्चुअली उनके म्यूजिक को फिर से फील करना है। तो आज अगर आपको उनकी लाइफ से एक चीज पिक करनी हो तो अपनी रूट्स को कभी मत भूलिए और अपनी इंडिविजुअलिटी को कभी मत छोड़िए। मैं हूँ आरजे श्री वैष्णवी और एसटी बर्मन के इस ब्यूटीफुल म्यूजिकल सफ़र को यहीं स्टॉप नहीं करते, म्यूजिक तो अभी बाकी है मेरे दोस्तों। फिर एक बार बर्मन दादा की एवरग्रीन मैजिक में खो जाते हैं। कीप लिसनिंग टू FM रेनबो 101.9।
1: ఏది మామా, తిన్నాను పోదామంటే ఏ బిర్యానీయో మండియో అనుకుంటే ఈ అజీబ్ ప్లేస్కి పట్టుకొచ్చినావు.
2: వింటేజ్ బార్స్ అన్నీ ఇట్లనే ఉంటాయి మచ్చా, ఎప్పుడు తిన్నదే ఏం తింటావు? ఇక్కడ టమాటర్ కాట్ మస్తు ఉంటుంది.
1: అదేంది మామా, నేను ఎప్పుడు వినలేదు.
2: ఇదిగో ఆర్డర్ వచ్చేసింది, ముందు తిని చెప్పు ఎట్లుందో.
1: కిరాకుంది మామా, ఈ ప్లేస్లు ఈ డిష్లు ఎట్లా తెలుస్తాయి మామా నీకు? ఇవన్నీ
2: జష్నే హైదరాబాద్, జష్నే హైదరాబాద్.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is Ajay Sri Vaishnavi. The time in the studio clock is 1:02 PM and we are officially in the show Dil E Rubani. सोचिए आपकी लाइफ कंफर्टेबल है, अच्छा करियर है, पर एक दिन आप सब छोड़कर जंगल चले जाएंगे. थोड़ा मुश्किल लग रहा है ना, लेकिन डॉक्टर प्रकाश आमते और उनकी वाइफ डॉक्टर मंदाकिनी आमते ने एग्जैक्टली यही किया. 1973 में वो महाराष्ट्र के हेमलकासा नाम की एक बहुत दूर जगह पर गए. वहाँ ना प्रॉपर रोड थी, ना बिजली, ना हॉस्पिटल की सुविधा. वहाँ मदीना गोंड ट्राइबल लोग रहते थे जिनको बेसिक मेडिकल हेल्प भी आसानी से नहीं मिलती थी. लेकिन प्रकाश जी और मंदाकिनी जी ने कहा यही रहकर कुछ करते हैं. उन्होंने एक छोटी सी जगह से अपना काम शुरू किया. सोचिए शुरुआत कितनी सिंपल रही होगी, लेकिन इसे छोटी शुरुआत ने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी. तो आज की कहानी है दो डॉक्टर्स की जिन्होंने सिर्फ पेशेंट्स का इलाज नहीं किया बल्कि एक पूरी कम्युनिटी का हाथ पकड़ा. दिली रुबानी में आज सीखेंगे बदलाव के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं, बस पहला कदम उठाना जरूरी है. कीप लिसनिंग टू FM रेनबो 101.9.

0: FM Rainbow 101.9.
1: Welcome back to FM Rainbow 101.9. This is RJ Sri Vaishnavi and we were talking about Prakash Ji or Mandakini Ji in Dil Hai Rubani. Prakash Ji or Mandakini Ji ke liye doctor banna sirf dawa dena nahi tha. Unhone dekha ki ek patient ko sirf medicine dekar ghar bhej dene se problem hamesha solve nahi hogi. Wahan logon ke paas health ke saath education ki bhi कमी थी, इसीलिए उन्होंने कम्युनिटी के बच्चों के लिए स्कूल शुरू करना पर भी फोकस किया, क्योंकि अगर आज एक बच्चे को पढ़ने का मौका मिलेगा तो कल वो अपनी पूरी फैमिली की ज़िंदगी बदल सकता है. धीरे धीरे रेजिडेंशियल स्कूल भी शुरू हुआ, बहुत से बच्चे पहली बार प्रॉपर एजुकेशन तक पहुँच पाए और सबसे ब्यूटीफुल बात, इन बच्चों में से कुछ आगे चलकर डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर और टीचर बने और अपनी कम्युनिटी के लिए वापस काम करने लगे. सोचिए, एक डॉक्टर ने सिर्फ एक पेशेंट को नहीं बदला, एजुकेशन के थ्रू पूरी जनरेशन को बदलने की कोशिश की. तो लेसन सिंपल है, अगर किसी को सच में हेल्प करनी है तो सिर्फ आज की प्रॉब्लम मत देखिए, कल का रास्ता भी दिखाइए. कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9.

0: ఫ్రీ నంబర్ 1950 కు కాల్ చేయండి. జారీ చేయవారు ప్రధాన ఎన్నికల అధికారి తెలంగాణ.
1: వెల్కమ్ బ్యాక్ టు దిల్లీ రూబన్. अब इस कहानी का एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट सुनिएगा. ह्यूमंस के साथ साथ एनिमल्स भी प्रकाश आमते जी की लाइफ का हिस्सा बन गए. एक दिन उन्हें एक छोटा सा ऑर्फेंड मंकी मिला. उसके बाद उनका एनिमल्स के साथ कनेक्शन और बढ़ता गया. वहाँ के कुछ लोग सर्वाइवल के लिए जंगल्स के एनिमल्स हंट करते थे. प्रकाश जी ने उन्हें एक अलग रास्ता दिखाने की कोशिश की. वो ऑर्फेंड एनिमल्स को अपने पास रखने लगे और उनके लिए एक सेफ जगह बन गए. धीरे धीरे उनके घर के आसपास एक यूनिक एनिमल फैमिली बनने लगी. मंकीज, लेपर्ड्स, बियर्स, क्रोकोडाइल्स, स्नेक्स और हाइनास तक उनकी केयर में रहे. सोचिए, एक डॉक्टर का घर और आसपास इतने सारे एनिमल्स. लेकिन उनके लिए ये सिर्फ एनिमल्स नहीं थे, लिविंग बीइंग्स थे. उन्होंने इंसान और नेचर के बीच एक कनेक्शन दिखाया. आज का लेसन, जिस दुनिया में हम रहते हैं वो सिर्फ हमारी ही नहीं है, नेचर और एनिमल्स के लिए भी थोड़ा स्पेस रखिए. कीप लिसनिंग टू एफएम रेनबो 101.9.

दोस्तों, आज के शो में अक्टूबर को वेलकम किया विद फ्रेश एनर्जी एंड पॉजिटिव थॉट्स। फिर बात हुई इंटरनेशनल म्यूजिक डे की, नासा की जर्नी की और सीडी रेवोल्यूशन ने म्यूजिक को कैसे चेंज किया। हर टॉपिक में कुछ नया सीखा, कुछ नया डिस्कवर किया और इंडिया की डाइवर्सिटी को थोड़ा और जाना। तो म्यूजिक हो, टेक्नोलॉजी हो, स्पेस हो या ट्रैवल, देयर इज ऑलवेज समथिंग न्यू टू एक्सप्लोर, राइट? इसी क्यूरियोसिटी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट शो में विथ मोर स्टोरीज, मोर म्यूजिक एंड मोर इंटरेस्टिंग मोमेंट्स। दिस इज मी आरजी।

0: जागते रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए
0: सजग रहिए।

0: आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीतिका उनियाल, और आज आप सभी के समक्ष ये बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि आपके लिए आपके शहर में आयोजित किया जा रहा है सेकेंड एडिशन ऑफ शेखो एफ इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसको सिम के नाम से जाना जाता है, सिम 2026। और इस मैराथन के बारे में आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो हैं सेक्रेटरी एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। आप हैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी सेखो इंडिया एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स मैराथन, और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी भी हैं। तो हम तहे दिल से सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का। सतेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद गीतिका जी।
0: और ये हमारे लिए बहुत ही हर्ष की बात है कि आज संदेश टू सोल्जर्स इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के बारे में चर्चा करने वाले हैं, अपने जो श्रोता हैं उन तक पहुंचाने वाले हैं कि कैसे भले ही इस साल नहीं अगले साल से ही वो इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, इस इवेंट का हिस्सा बन सकते हैं। लेकिन आपसे सबसे पहले एक सवाल पूछना चाहती हूँ। हाल ही में आपने सुब्रतो कप इसका आयोजन किया, 65th एडिशन था, 18 अगस्त से लेकर 25 सितंबर तक सुब्रतो कप चला। जिस तरह से सुब्रतो कप आयोजित किया जा रहा है, और आकाशवाणी के माध्यम से भी हम नित्य प्रति अपने श्रोताओं को बताते हैं कि किस तरह से टीम्स खेल रही हैं, कौन सी टीम्स हैं जो जीत रही हैं, और किस तरह से जोश का माहौल वहां बना होता है मैदानों में, यहाँ हम आकाशवाणी के माध्यम से अपने श्रोताओं तक पहुंचाते हैं। आप ये हमें बताएं कि इस साल का जो सुब्रतो कप आपने आयोजित किया, यानी कि इंडियन एयरफोर्स जो हमेशा कार्यरत रहता है, स्पोर्ट्स को जन जन तक पहुंचाता है, किस तरह से रहा ये 65th एडिशन सुब्रतो कप का?
1: 65th एडिशन बहुत ही रोमांचक था। जैसा आपने कहा 18 अगस्त को शुरू हुआ। हम ये फुटबॉल टूर्नामेंट तीन कैटेगरी में कराते हैं, अंडर 17 गर्ल्स, अंडर 17 बॉयज एंड अंडर 15 बॉयज। तो अंडर 17 गर्ल्स 18 को अगस्त को शुरू हुआ था दिल्ली में, और उसका 27 अगस्त को समापन हुआ। झारखंड की टीम जो एक रिमोट लोकेशन जाती है गुमला, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और वो जीती। जो अंडर 15 बॉयज था वो 1 से लेकर 9 सितंबर बेंगलुरु में हुआ, जब वेस्ट बंगाल की टीम जीती। और जो ग्रैंड फिनाले था अंडर 17 बॉयज, वो 15 सितंबर से लेके 25 सितंबर तक हुआ। ग्रैंड फिनाले हमारा अंबेडकर स्टेडियम में होता 25 सितंबर को, और सीआईएससी की टीम जीती। मैं सब श्रोतागणों को बताना चाहूँगा कि ये लगता एक महीने का हमारा टूर्नामेंट है, बट इसकी जो तैयारी है वो पिछले 6 से 7 महीने पहले शुरू हो जाती है। इसमें हर स्टेट की टीम पहले तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर खेल के फाइनली स्टेट की एक टीम आती है, स्कूल की टीम, जो यहाँ परफॉर्म करती है। तो इस पूरे अगर आप देखें, ये स्प्रेड जो है इस टूर्नामेंट का वो एक महीने का नहीं, कम से कम 6 से 7 महीने का है। तो बच्चों ने बहुत इंजॉय किया, और हम एज ऑर्गेनाइजर तो हमने बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया, बहुत रोमांचक था।
0: जी, कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ जब आप बच्चों की बात करें तो कहीं ना कहीं एक्सचेंज होता है, ऊर्जाओं का एक्सचेंज होता है, और हमारे युवा भी, बच्चे भी चाहते हैं कल चलकर फोर्सेस ज्वाइन करेंगे, इंडियन एयरफोर्स में हम पायलट बनेंगे, ऑफिसर्स बनेंगे। और इसी मुहिम के साथ इंडियन एयरफोर्स हमेशा कार्यरत रहता है। जैसे कि हमने कहा कि स्पोर्ट्स की दुनिया में तो बच्चे नाम कमा रहे हैं, और हमारे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कहीं ना कहीं हम फोर्सेस से ही सीखते हैं। अब बात करते हैं कि सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन क्या है, लेकिन उससे पहले आपसे जानना चाहूंगी कि आप कृपया करके हमें फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो के बारे में जरूर बताएं। निश्चित रूप से उनका इस मैराथन से ताल्लुक जरूर है। आप कृपया करके हमें बताएं कि उनका जो योगदान रहा भारतीय वायुसेना, अगर उसकी बात की जाए, अतुलनीय रहा। मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र से भी सम्मानित किया गया, और आपके मुख से आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चाहते हैं कि आपकी बात जन जन तक पहुंचे।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखो एक मिसाल हैं इंडियन एयरफोर्स के लिए, नहीं पूरे इंडिया के यूथ के लिए। वो बहुत ही यंग थे, 25-26 साल के थे जब उन्होंने 1971 की वॉर में हमारे दुश्मन के जहाज़ों को बड़ी बहादुरी से गिराया, उनसे लड़ाई करी, मरणोपरांत उन्हें परमवीर चक्र मिला। वो अकेले ऐसे ऑफिसर हैं इंडियन एयरफोर्स के जिनको परमवीर चक्र से वो सम्मानित हैं। तो यही एक उनको यूनिक चीज़ बनाती है, जिसके इनके नाम से और इनके जो इनकी पदवी है उसको मद्देनजर रखते हुए उनकी याद में हमने ये सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन शुरू करी।
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। अगर हम इस सेकेंड एडिशन की बात करें, और सेकेंड एडिशन अपने साथ बहुत सारी संभावनाएं, बहुत सारी उम्मीद, और कहते हैं कि जब हम अंतिम छोर में होते हैं ना, तो हम अगले की तैयारी करना शुरू करते हैं। अगर हम रेट्रोस्पेक्शन करें पहले एडिशन का, तो पहला एडिशन उसकी क्या खास बात थी, और इस एडिशन में क्या कुछ खास होने वाला है, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं।
1: पहला एडिशन हमारा 2 नवंबर 2025 को हुआ था। दिल्ली मेन सेंटर था रेस के लिए, पर हमारे बाकी जो भारतीय वायुसेना के एयरफोर्स स्टेशंस हैं उनमें 45 लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ कंट्री, ये मैराथन ऑर्गेनाइज कराई गई थी सेम डेट पे, सेम टाइम पे। और तो रनर्स की जो टोटल अगर आप नंबर्स बोलें, दिल्ली में वो 12,000 थे, और ऑल ओवर इंडिया को अगर हम पूरा पूरा समअप करें तो अराउंड 45,000 People ran on that day.
0: वाह, क्या बात है, क्या बात है। और उसी उम्मीद को आप आगे, यानी कि इंडियन एयरफोर्स, भारतीय वायुसेना, उसे कहते हैं ना कि हम मिसाल कायम करते हैं, और फिर उस जब हम चैलेंजेस फेस करते हैं, फिर सोचते हैं इससे बेहतरीन आगे और किया जाएगा। लाइफ का यही दस्तूर है कि हमें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। अगर अब सेकेंड एडिशन की बात की जाए, सेकेंड एडिशन ऑफ शेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन, जिसे हम सिम के नाम से भी जानते हैं, इस एडिशन में क्या कुछ

0: ये कंसेप्ट जो था हमारे प्रेजेंट चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, वो अपने आप में एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स एंथुसियास्ट हैं। तो उनका विजन था कि शेखों साहब बहुत यंग थे जब उन्होंने शहादत दी, तो वो चाहते कि जो एयरफोर्स का यूथ है और इंडिया का यूथ है वो कोलैबोरेट करें। इसलिए एयरफोर्स मैराथन लेके आए जिसमें डिफेंस पर्सनल भी भागते हैं और सिविलियंस भी भागते हैं। तो एक उद्देश्य है कि फिट इंडिया मूवमेंट की तरफ इसको मूव करना है। एयरफोर्स में तो के एक सिस्टम है जहाँ पे आपको फिटनेस पैरामाउंट है, पर हम चाहते हैं कि ये अमेलगमेट करें हम सिविलियंस के साथ भी, एंड इसको एक यूनिक प्लेटफॉर्म देके इसको आगे बढ़ाएं।
1: जी, और कहीं ना कहीं एक सिविलियन लाइफ के साथ, कहते हैं ना, कम्युनिकेशन, संवाद, मुझे लगता है शायद इस मैराथन के माध्यम से आसानी से हो जाता होगा।
0: बहुत लोग जुड़ते हैं और जो जुड़ जाते हैं वो सिर्फ जुड़ के ही रहना चाहते हैं।
1: जी, बहुत बढ़िया। अब अगर जब सेकेंड एडिशन की हम बात कर रहे हैं सिम के, तो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, किन किन राज्यों में हो रहा है, इसके बारे में भी हमें जानकारी दें।
0: जैसे कि मैंने बताया, सिम 4 अक्टूबर 2026 को जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में दिल्ली एडिशन होगा, और हमने कुछ मेजर सिटीज़ हैं अक्रॉस इंडिया जो हमने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे डिफेंस पर्सनल भी और सिविलियंस भी भागे हैं। अगर आप नॉर्थ से स्टार्ट करें तो नॉर्थ में चंडीगढ़ मेजर सिटी है, ईस्ट में गुवाहाटी है, अगर आप वेस्ट साइड आएँ तो मुंबई और जोधपुर है, आप सेंट्रल साइड आएँ तो ग्वालियर है, और अगर डाउन साउथ इंडिया में जाएँ तो बेंगलुरु एंड तिरुवनंतपुरम है। ये हमारे मेजर लोकेशंस हैं जहाँ रन होगा, बट ये यहाँ तक लिमिटेड नहीं है, और बड़े और छोटे एयरफोर्स स्टेशन में भी ये रन साइमल्टेनियसली कंडक्ट होगा, दिल्ली प्लस और अक्रॉस इंडिया जैसा हमने पिछली बार किया था।
1: बहुत खूब। 8 अक्टूबर हम सभी के लिए, हम सभी भारतीयों के लिए, ना केवल वायु सेना के लिए, हमारे लिए, प्रत्येक भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो क्या हम कह सकते हैं कि ये मैराथन उसका प्री सेलिब्रेशन है?
0: आप बिल्कुल कह सकते हैं, हमारा एयरफोर्स डे है जो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 8 अक्टूबर 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी, इस बार हमारा 94th एयरफोर्स डे है, एंड एयरफोर्स डे वीक इज़ गोइंग ऑन, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि पार्ट ऑफ एयरफोर्स डे सेलिब्रेशन है।
1: बहुत खूब, आपने बोला 94th हम एयरफोर्स डे मनाने जा रहे हैं, तो इस मैराथन से हमारी क्या उम्मीदें हैं?
0: देखिए, पिछली बार जैसा मैंने पहले भी कहा कि पिछली बार हमारे 45,000 रनर थे, तो इस बार हमारे हमें उम्मीद है कि नंबर डबल होगा, और हम जो 94th का फिगर है, 94th एयरफोर्स डे, हम उस नंबर को पाना चाहेंगे।
1: जब हौसले बुलंद हों तो नामुमकिन कुछ भी नहीं, और भारतीय वायुसेना इसी बात की मिसाल है और इस मिसाल को कायम कर रही है। सेकेंड एडिशन ऑफ सेखों इंडिया एयरफोर्स मैराथन 2026, यानी कि सिम 2026, इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। विंग्स ऑफ करेज, जी, जब हमारे ये जाबाज हवा में उड़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम भारतीय धरती से परचम लहराते हैं जीत का।

0: एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स में। मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त गीते कन्याल, और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह धनकर जी, जो आपको जानकारी दे रहे हैं सेकंड एडिशन ऑफ सिखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026, जिसे आप सिम 2026 के नाम से भी पुकार सकते हैं। और जब जब आप पुकारेंगे तब तक भारतीय वायुसेना आपके साथ होगी और आपके लिए निरंतर अविरल बहती रहती है, जैसे कि हवा, जैसे कि परिंदे, और भारतीय वायुसेना की ये मुहिम आपके लिए ही है बस। हम जानना चाहते हैं आपसे सत्येंद्र जी कि बहुत से लोग सुनने के बाद आतुर हो रहे होंगे कि काश हम भी, क्योंकि सिविलियंस के लिए ये भी मैराथन खुली हुई है, हम भी कैसे इसका हिस्सा बने। तो कैसे हिस्सा बन सकते हैं, क्या रजिस्ट्रेशन अभी भी ओपन है, आप हमारा मार्गदर्शन करें।
1: ये जो मैराथन की रजिस्ट्रेशन थी वो हमारी वेबसाइट है sekhoifmarathon.in, आपको उस पे साइट पे जाके रजिस्टर करना होता है। वो हर साल ये साइट कांस्टेंट यही रहेगी, लास्ट ईयर भी यही थी, कंटिन्यू रहेगी। अगर इस बार एडिशन की बात की जाए सिम 2026 की, तो 1 जुलाई 2026 को रजिस्ट्रेशन ओपन हुई थी और 15 सितंबर को ये रजिस्ट्रेशन बंद हो गई। तो हमें 10 दिन चाहिए होता है इस इवेंट को कराने के लिए, तो 15 सितंबर को हमने बंद करके अब वी आर फोकसिंग ऑन टू कंडक्ट द इवेंट, प्रिपरेशन ऑफ द इवेंट।
0: जी जी, तो कहते हैं कि उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जिस तरह फर्स्ट एडिशन सफल रहा, हम कामना करते हैं कि सेकंड एडिशन, जो हमारे उद्देश्य हैं, वो पूर्ण हो। और कहते हैं कि जब हमें कोई जानकारी प्राप्त होती है तो हमें इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि जिंदगी यानी कि भारतीय वायुसेना आपको फिर मौका देगी, थर्ड एडिशन में आप जरूर हिस्सा ले पाएंगे। और जैसा कि आपने स्वयं कहा कि आप साइट पर जाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित कर सकते हैं, तो अगले साल जब आप हिस्सा बनना चाहें तो आप साइट पर जाकर जानकारी ले सकते हैं और फिर रजिस्ट्रेशन कर अगले एडिशन का हिस्सा जरूर बन सकते हैं। जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि जानकारी हमेशा काम आती है, आज नहीं तो कल जरूर। अब अगर बात की जाए वो लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड एडिशन में, वो भी बहुत उत्सुक होंगे कि हम इस महाआयोजन का हिस्सा बन रहे हैं, क्या क्या हमारे लिए वहाँ फैसिलिटीज उपलब्ध हैं, किस तरह से हम रुक करेंगे, तमाम बातें जहन में चलती हैं। उन लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: हाँ, मैं आप जो करंट सिचुएशन है मैं वहां से शुरू करता हूँ। आज हमारा एक्सपो स्टार्ट हो गया है मैराथन का, जो सुबह 11 बजे से लेकर 7 बजे तक होगा तेजस ग्राउंड रेस कोर्स में, और कल भी होगा 11 बजे से लेकर 6 बजे तक। तो जिनकी बिप कलेक्शन और बाकी जो हमारे गुडी बैग्स हैं वो वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। रेस डे जो 4 अक्टूबर को है, उसमें एक तो इसमें यूनिक है, हमने दिल्ली मेट्रो से टाई अप किया हुआ है, तो सबको हर जो जितने भी रनर्स आ रहे हैं उनको हम एक फ्री टिकट दे रहे हैं दिल्ली मेट्रो की। वो येलो लाइन, वायलेट लाइन और ब्लू लाइन, इन तीनों को उसकी फैसिलिटी अवेल कर सकते हैं और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम पहुंच सकते हैं जहाँ पे इवेंट है। 4:30 फर्स्ट फ्लैग ऑफ 5:30 है, तो 4:30 के आसपास आप वहाँ पहुंच जाएं। और एज़ फार एज फैसिलिटीज कंसर्न, हम जैसे आप एंटर करेंगे आपके लिए एसी वॉशरूम्स अवेलेबल हैं, सेंटर

0: आपके लिए सारे हाइड्रेशन जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है वो अवेलेबल है। एन रूट आपको हाइड्रेशन, एनर्जी ड्रिंक्स, एनर्जी बार एंड अ प्रॉपर मेडिकल कवरेज थ्रू आउट द रूट एंड विद इन द एरिना ऑफ JLN विल बी अवेलेबल टू ऑल द पार्टिसिपेंट्स।
1: जी, एक्सपो में और कुछ क्या खास होने वाला है? क्योंकि जब हम एक्सपो जाते हैं तो हमारा दिल चाहता है कि शायद हम भारतीय वायुसेना से और भी ज्यादा रूबरू हो पाएंगे, क्योंकि जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी अर्जित करने के लिए हम उस गंतव्य तक जरूर पहुंचते हैं। तो वो लोग जो एक्सपो का हिस्सा बनेंगे वो निश्चित रूप से मैराथन के बारे में जानकारी तो प्राप्त करेंगे ही करेंगे, लेकिन क्या और कुछ खास है जिसको देखने के लिए हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं वहां पहुंचे?
0: बिल्कुल, एक्सपो एक यूनिक एक्सपीरियंस है। अगर लास्ट टाइम गए हमने एक ओपन एरिया में रखा था, पर इस बार हमने एक ह्यूज स्ट्रक्चर, जर्मन टेंट्स लगाए हैं, एयर कंडीशनड है वो। अगर अगर मैं आपको फ्लो के थ्रू ले जाऊं, आप जैसे एंटर करते हैं तो एक वॉल लगी हुई है जहां पे सारे पार्टिसिपेंट जो इस बार पार्टिसिपेट करें, एक एक इंडिविजुअल का नाम वहाँ लिखा हुआ है, तो वहाँ चेक कर सकते हैं आई एम पार्ट ऑफ दैट इवेंट और नॉट। अंदर स्टॉल्स लगे हुए हैं, डिफरेंट स्टॉल्स हैं, हमारा एयरफोर्स का स्टॉल भी है, हमारी बैंड की परफॉर्मेंस लाइव है और क्राउड बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक है। मैं अभी 2 घंटे पहले की बात बताता हूँ, लोग इंडियन एयरफोर्स की ट्यून्स पे वहाँ डांस कर रहे थे, देवर इन्जॉइंग द फुल फ्लो। तो एक यूनिक एक्सपीरियंस है, यू मस्ट गो। दूसरा, एक इंडियन एयरफोर्स फैसिलिटी दे रही है, तेजस ग्राउंड इज जस्ट नियर टू लोक कल्याण मेट्रो स्टेशन, जहाँ से हम बस की फैसिलिटी दे रहे हैं। जो लोग अपना मेट्रो से आ रहे हैं तो वो बस से हम कम्यूट कराएंगे, उनको ड्रॉप करेंगे मेट्रो स्टेशन से टू द वेन्यू एंड बैक। तो इस फैसिलिटी को जरूर अवेल करें।
1: जी, एक प्रश्न और यहाँ उठता है कि क्या ये एक्सपो सिर्फ पार्टिसिपेंट्स के लिए ही खुला हुआ है या आम जनमानस जो सेकेंड एडिशन का हिस्सा नहीं बन पा रहे हैं पर उनके मन में जिज्ञासा है कि चलो तेजस ग्राउंड चलते हैं और इस एक्सपो के माध्यम से ज्यादा जानकारी अर्जित करते हैं, क्या वो लोग भी वहां पहुंच सकते हैं?
0: इंडियन एयरफोर्स का दिल बहुत बड़ा है, हम ओपन अपने दोनों ओपन हैंड से सबको वेलकम करते हैं। जो बिल्कुल
1: आसमान जितना बड़ा है।
0: आसमान स्पेस तक हम आउटरीच करते हैं, तो आएं और इस एक्सपीरियंस का मजा लें।
1: वाह, क्या बात है! तो आपके लिए ये बहुत ही प्यारी सुखद जानकारी, भले ही आप सेको इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 इसका हिस्सा ना बन पाए हो, समय पर रजिस्ट्रेशन ना कर पाए हो, लेकिन जैसा कि विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी ने कहा कि भारतीय वायुसेना का दिल आसमान से भी कहीं ज्यादा बड़ा, कहते हैं कि स्काई इज द लिमिट, जिसका कोई अंत नहीं, वो अंतहीन है, वो है भारतीय वायुसेना। तो दिल बहुत बड़ा है, आप जाएं और कहीं ना कहीं आपके मन में जिज्ञासा जरूर बनेगी, जरूर उठेगी कि काश मैं भी भारतीय वायुसेना में होता, या काश मेरे बच्चे भी कल भारतीय वायुसेना में अपनी सर्विसेज दें। और ये आचार व्यवहार का एक सुखद माध्यम है, जिससे मोहब्बत की जाती है उससे मिलने जरूर जाना चाहिए। हम तो यही कहेंगे, आप तेजस ग्राउंड इस एक्सपो को देखने के लिए जरूर पहुंचें। और आप सभी के लिए, सभी श्रोताओं के लिए, भारतीय वायुसेना के लिए ये नगमा हमारी ओर से।

कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स की आज के इस अंक में आप सभी का पुनः स्वागत है। आप सभी से साझा करना चाहेंगे दोबारा सेकंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन 2026 यानी कि सिम 2026 इसका आयोजन किया जा रहा है 4 अक्टूबर को। और इसके संबंध में जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, जो सेक्रेटरी हैं एयरफोर्स स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड में। आप ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हैं सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन और आप ऑनररी सेक्रेटरी जनरल हैं सुब्रतो मुखर्जी स्पोर्ट्स एजुकेशन सोसाइटी के। तो आपका पुनः स्वागत करना चाहिए।

0: चाहते हैं हम. सत्येंद्र साहब, अब बात ये उठती है कि हम ना कभी कभी बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं कहीं जाने से पहले. वो सारे पार्टिसिपेंट्स जो इस मैराथन का हिस्सा बनने वाले हैं, एक दिन पहले ही ना मन में कहते हैं कि पेट में जो तितलियां हैं वो उड़ने लगती हैं,
1: बटरफ्लाइज
0: कि कल सुबह जल्दी उठना है, पहुंचना है, क्या होगा, कैसे होगा, उन तमाम लोगों के लिए क्या प्रावधान है?
1: अच्छा सवाल है, क्योंकि अभी एक्सपो में अगर आप जाओ तो वहाँ पे हमने सारा लेआउट्स, टाइमिंग्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दे रहे हैं, पर नेवरदलेस उसके बाद भी हम एक ट्रिगर मैसेज थ्रू व्हाट्सएप एंड एन ईमेल सबको भेजेंगे बिफोर द इवेंट कि उनको क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है, कहाँ पे रिपोर्ट करना है, क्या क्या एन रूट होने वाला है, पूरी जानकारी उसके अंदर होगी, तो वो अपनी बटरफ्लाइज सेटल कर सकते हैं एडवांस में.
0: क्या बात है, और अपनी बटरफ्लाइज को वहीं उड़ाएं मैदान जंग कह रही हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम फोर्सेस का हिस्सा बनते हैं, फोर्सेस के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, तो वो सारी तितलियां उड़ने के लिए आतुर हो जाती हैं.
1: बिल्कुल.
0: अब सवाल ये उठता है कि हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो निश्चित रूप से 4 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे समय से पहले ही, लेकिन समय क्या है, किस वक्त रिपोर्ट करना है?
1: हाँ, पहला जो हमारा फ्लैग ऑफ है 21 किलोमीटर का, वो 5:30 बजे है, तो हमने जो रिपोर्टिंग टाइम नॉर्मली 1 घंटा पहले रहता, तो 4:30 उनको रिपोर्ट करना है. वो रिपोर्ट करेंगे और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर आएंगे, उसके बाद उनका जुम्बा सेशन होगा, वार्म अप होगा, और फिर 5:30 फ्लैग ऑफ होगा.
0: क्या बात है. अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्योंकि जिनके पास रजिस्ट्रेशन स्लिप अगर कुछ है या अपने वेरिफिकेशन के लिए, उनको क्या दस्तावेज दिखाने होंगे, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से लोग ऐसे भी पहुंचे गंतव्य पर जो ये कहें कि हम इस कार्यक्रम का हिस्सा है, लेकिन आप भारतीय वायुसेना के परिसर, उस वक्त भारतीय वायुसेना का परिसर है वो जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, या वो अन्य गंतव्य जो अलग अलग शहरों में अलग अलग स्टेशन पर आयोजित किया जा रहा है ये मैराथन, तो वहां पर सिक्योरिटी और आइडेंटिफिकेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, उसके लिए क्या फैसिलिटी
1: हाँ,
0: है?
1: आज जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक्सपो चल रहा है, तो यहाँ बिब डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं जिसमें नाम और उनके डिटेल्स होते हैं, तो ये सब बिब सारे रनर्स को दी जाती है, और एक मैंडेटरी आइडेंटिफिकेशन है जो उनको उस दिन अपनी टी शर्ट के साथ पहन के दौड़ना है, तो जो उसके अंदर एक सेंसर लगा हुआ है जो रीड करता है मूवमेंट्स के लिए, तो ये बिब जो पहन के आएंगे उनको ही जो वहाँ सिक्योरिटी गार्ड होंगे अलाउ करेंगे, अदरवाइज बाकी लोग एंटर नहीं कर पाएंगे.
0: जी, तो आपके लिए प्रतिबंधित है अगर आपके पास, जैसा कि हमें सत्येंद्र साहब ने कहा, विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह धनकर साहब ने, कि अगर आपके पास अपनी आइडेंटिटी बताने के लिए बिब नहीं है तो आप अंदर एंट्री नहीं पा सकते हैं, लेकिन उम्मीद कायम रखिए अगले साल आपको फिर मौका मिलेगा. अगर आप इस मैराथन रेस की बात की जाए तो इसकी यूनिकनेस क्या है, क्या खास बात है?
1: ये अपने आप में बहुत ही एक यूनिक रेस, मैं इसलिए कहूँगा, मैराथन्स होती हैं अक्रॉस इंडिया, अक्रॉस वर्ल्ड होती हैं, पर ये मैराथन के साथ एक, इसको हम इवेंट काउंट करेंगे बिकॉज ये शोकेसिंग इंडियन एयरफोर्स की भी है. आज हम सिविलियन वर्ल्ड के साथ मिलके कदम से कदम बढ़ा रहे हैं, अगर हम उनको कुछ दे तो हम इंडियन एयरफोर्स की माइट भी उन्हें दिखाना चाहते हैं. तो नॉर्मली अगर आप कोई मैराथन देखो, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के आउटर एरिया से हो जाती है, वहीं पे से शुरू होती है, वहीं पे ख़त्म हो जाती है, लोग अपना मेडल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं, थोड़ा छोटा मोटा प्रोग्राम होता है और अपने घर चले जाते हैं, बट ये एक टोटल डिफरेंट एक्सपीरियंस है. जब लोग दौड़ के वापस आएंगे, अपना मेडल लेंगे, अपनी रिफ्रेशमेंट्स लेंगे, तो उन सबको हम अशर करेंगे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के अंदर, जहाँ पे आपको इंडियन एयरफोर्स का एक्चुअल रौद्र रूप देखने को मिलेगा. इन टर्म्स ऑफ स्काई डाइविंग हमारी एयर वॉरियर ड्रिल टीम है वो परफॉर्म करेगी, हमारी बैंड है वो परफॉर्म करेगी, एंड मैनी मदर मोर एक्टिविटीज. तो आप एक इवेंट है जो आपको मिस आउट नहीं करना है, आपको सिर्फ रेस नहीं, रेस के पोस्ट रेस के जितने इवेंट्स है वो भी जरूर देखना है.
0: मैं सोच रही हूँ कि मैंने कुछ मिस कर दिया है समय पर रजिस्ट्रेशन ना करवा कर.
1: जैसा आपने कहा कि हमेशा मौका मिलता है,
0: बिल्कुल, और भारतीय वायुसेना जैसा कि आपने कहा कि विशाल है और आसमां की तरह है, आसमां को छूने जैसी बात है, तो ये आपको मौके देती रहती है, और निश्चित रूप से अगला एडिशन और भी स्वाद होगा. लेकिन इस एडिशन की अगर बात की जाए, और विंग कमांडर सत्येंद्र सिंह धनकर जी ने कहा है कि बहुत यूनिक है, इसका हिस्सा बनिए और फिर देखिए जो अनुभूति आप अपने साथ अपने घर लेकर जाएंगे, आप ताउम्र उसको दोहराएंगे और कहेंगे कि अगले एडिशन में भी हम हिस्सा जरूर बनेंगे इस मैराथन का. अब बात आती है, जैसे कि आपने स्वयं बताया कि अलग अलग स्टेशन पर एक साथ ही कार्यक्रम होने वाला है, ये इवेंट होने वाला है,

0: सच में बताइए, एक साथ होने वाला है?
1: ये बिल्कुल, ये वो तो आप कहते हैं ना, एयरफोर्स प्रिसीजन पे बिलीव करती है, जो हमारा मिशन है वो प्रिसीजन है। तो हमारा मिशन यही है कि एक ही टाइम पे शुरू होना, एक ही टाइम पे खत्म होना, एक ही दिन करना। तो ये हमारे प्रिसीजन को हम सबको, दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम इतना, हमारा जबरदस्त प्रिसीजन है कि हम उसको आउटरीच कर सकते हैं। बेशक हम कोलोकेटेड ना हो, अक्रॉस इंडिया स्प्रेड हो, पर हम उसको अचीव कर सकते हैं।
0: ठीक उस तरह जिस तरह से हमारा एक कार्यक्रम संदेश टू सोल्जर्स है, जो ठीक 4 बजे अलग अलग केंद्रों पर सुनाई देता है, तो आपके और हमारे बीच में एक समानता तो यह हो गई कि हम प्रेसिशन यानी कि डिसिप्लिन, समय को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। और फोर्सेस की यही खास बात है और आकाशवाणी की भी यही खास बात है कि समय हमारे लिए सर्वोपरि है। सही समय पर बड़ी बड़ी जंग जीती जा सकती है।
1: जब भी हम आई थिंक एक मंच पे एक ही चीज डिस्कस कर रहे हैं,
0: वह क्या बात है। और हम चाहेंगे कि इस मंच के माध्यम से, आकाशवाणी के माध्यम से, हम यूं ही एयरफोर्स, भारतीय वायु सेना का परचम लहराते रहे। परचम आप लहरा रहे हैं, लेकिन उस परचम को हम अपने हाथों में ले दुनिया तक पहुंचाएं। अब एक बार फिर से बात आपसे पूछना चाहूंगी, जैसा कि आपने कहा कि इसको फ्लैग ऑफ किया जाएगा और अलग अलग कैटेगरीज के लिए जो है मैराथन के लिए लोग भागेंगे, चलेंगे, दौड़ेंगे मन से तन से, और यही सोचेंगे कि हमें जीत हासिल करनी है। एक बार दोबारा से हमारे सभी सुनने वालों को ना कैटेगरीज के बारे में आप बताएं, और ये भी बताएं कि जब हम किसी प्रतिस्पर्धा में का हिस्सा बनते हैं तो जीत में हम चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले, वो अवार्ड्स जो इस मैराथन के माध्यम से उन तमाम पार्टिसिपेंट्स को मिलने वाले हैं उसके बारे में भी जिक्र करें।
1: हाफ मैराथन्स नॉर्मली 3 कैटेगरी में होती है, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 21 किलोमीटर एंड 10 किलोमीटर टाइम रन होता है, कंपटीशन होता है, 5 किलोमीटर नॉर्मली फन रेस होता है। पर हमने ऐसा नहीं किया, हम चाहते हैं तीनों कैटेगरी में कंपटीशन हो। तो हमारे 21 के, 10 के और 5 के तीनों कॉम्पिटिटिव हैं, और तीनों में जो भी ओपन कैटेगरी एंड डिफेंस कैटेगरी में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड आएंगे सबको प्राइज़ मिलेगा। एंड प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वहीं पर होगी JLN में, एंड एक अच्छा अमाउंट है, 25 लाख के आसपास हमने ईयरमार्क किया है फॉर द इवेंट। तो ऑल द बेस्ट फॉर द पार्टिसिपेंट।
0: डिफेंस पर्सनल और सिविलियंस के लिए अलग अलग अवार्ड कैटेगरीज हैं,
1: हर रेस में डिफेंस के लिए अलग है और सिविलियंस के लिए अलग है। जो जिन्होंने जैसे डिफेंस ने रजिस्टर किया है तो वो उसमें कॉम्पीट करेंगे, और सिविलियंस का जो हुआ है उसमें कॉम्पीट करके दोनों को अलग अलग प्राइज मिलेंगे। कैटेगरीज दोनों के लिए अलग अलग है
0: जी, क्योंकि हमारे भारतीय वायुसेना के डिफेंस पर्सन जो हैं वो तो सक्षम हैं, और किसी भी कहते हैं जंग पर लड़ना उनके लिए नामुमकिन बिल्कुल नहीं है। लेकिन कहते हैं कि जहां हमने ये सोच लिया कि बस ये जीत हमारी है, वहां आधा काम खत्म, हमें हमेशा तैयार रहना है, हमेशा अपने आप को गियर अप करना। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और मैं जानना चाहती हूँ, जब भी कोई पार्टिसिपेंट रजिस्टर करता है तो उस वक्त उसकी शारीरिक सक्षमता कितने मायने रखती है? क्या उसे कोई मेडिकल फिटनेस फॉर्म सबमिट करना होता है?
1: ये अगर आप फॉर्म देखें तो ये एक बेसिक रिक्वायरमेंट है सारे मैराथन्स की, कि उसको ही और शी हैज टू टेल के ही इज मेडिकली फिट टू अंडरगो। उसको अपने सेल्फ डिक्लेरेशन करनी पड़ती है, और हम उसको कंसिडर करते हैं अगर कोई इंसान सेल्फ डिक्लेयर कर रहा है तो वो फिजिकली फिट है।
0: जी, सबसे पहले अपने शरीर को हम स्वयं जानते हैं, और जब हम ये मानते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं, तो हम यही कहते हैं कि हमें कोई परेशानी नहीं। अब यही सवाल मैं डिफेंस पर्सन के संबंध में पूछना चाहूंगी, वो डिफेंस पर्सन जो इस इवेंट का हिस्सा बन रहे हैं उनका भी वेरिफिकेशन, क्योंकि बहुत सारे डिफेंस पर्सन ऐसे भी होंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं और अब भले ही सेवा में नहीं है, फोर्सेस में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सेवाओं का हिस्सा रहे हैं, उनका वेरिफिकेशन किस माध्यम से होता है?
1: ये इसको स्मूथली हम ईज करने के लिए हमने एक्सपो में एक काउंटर्स बनाए हैं, वेरिफिकेशन काउंटर्स, जहाँ पे हमारे सर्विंग और रिटायर्ड पर्सनल ऑफ ऑल आर्म फोर्सेस वो आ सकते हैं। वो अपना आईडी कार्ड दिखा के वो अपने बिप कलेक्ट कर सकते हैं। तो प्रोसेस बहुत स्मूथ है, इट्स वेरी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आप जाएंगे वहाँ पे, बहुत ईज है, डिफरेंट काउंटर्स हैं, आप अपना वेरिफिकेशन करा सकते हैं।
0: वाह क्या बात है, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। लेकिन हम यही कहेंगे कि यहाँ आपको आसमान छूने का मौका दिया जा रहा है, आप बिल्कुल बिना किसी भय के इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, क्योंकि भारतीय वायुसेना आपके साथ है, आपके लिए कार्यरत है, और आपको ये सुनहरा मौका दे रही है कि आप हिस्सा बन सके सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंजन एयरफोर्स मैराथन सिम 2000

0: व्यक्तिगत रूप से कहूँ तो आज मुझे बहुत बहुत आनंद आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है मैं किसी एयरफोर्स स्टेशन में बैठी हुई हूँ, और भले ही हमारे साथ यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी यूनिफॉर्म में हैं, पर ना जाने क्यों ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे इस नीली पोशाक ने ना अपनी रंगत स्टूडियो के अंदर बिखेरी हुई है और मैं इस रंग में बहती चली जा रही हूँ और आसमान के किसी छोर को ना पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। आपको दिल से हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और भारतीय वायु सेना जो हर साल, यूं कहूंगी मैं कि हर वक्त यही कोशिश करती है कि स्पोर्ट्स के माध्यम से सभी भारतवासियों को जोड़े, और इसकी पहल, इसकी मुहिम सुब्रतों कप और अब सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन के माध्यम से की जा रही है। ये सेकंड एडिशन है, फर्स्ट एडिशन का आप खुद साक्षी रहे हैं, किस तरीके का माहौल होता है?
1: अगर मैं कहूँ, मतलब वो कहते हैं गूज बम्स, तो ये एक पहला वर्ड होगा। अब मैं अपने श्रोतागण को बोलना चाहूँगा कि मेरी आवाज़ के माध्यम से इमेजिन करें कि जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम की हरी घास, ओपन एरिना, वाइट फ्लडलाइट वहाँ पे है। हमारी जो टी शर्ट की थीम है वो वाइट कलर है विथ ट्राई कलर थीम। तो जब उनके ऊपर लाइट पड़ती है तो ऐसा लगता है कि जैसे आसमान में तारे होते हैं ना, एक तारों की पूरी चादर बिछी हुई है, तो अगर कोई हाइट पे खड़ा होकर देखे तो उसे ऊपर भी तारे दिखेंगे और जमीन पे भी तारे दिखेंगे। तो ऐसा माहौल होता है कि मन करता है बस ये देखता ही जाए।
0: वाह, क्या बात है! आपने कहीं ना कहीं कहते हैं कि रेडियो के माध्यम से वैसे भी हमारे जो श्रोता है ना, उनकी आंखों के आगे चित्र घूमने लगते हैं। मेरी आंखों के आगे साक्षात आपके शब्दों से चित्र बनने लगे हैं, और मैं महसूस करने लगी हूँ कि कितना भव्य माहौल वहाँ होने वाला है। आप खुद को महसूस करने वाले हैं उन हवाओं में, फिजाओं में, जिनकी कल्पना आपने सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने भर मात्र से कर ली होगी। भले ही आपके मन में द्वंद्व भी होगा, परेशानी भी होगी कि हम क्यों इसका हिस्सा ना बन पाए, क्योंकि हम कहते हैं कि जिंदगी आपको दूसरा मौका जरूर देती है, तो तीसरे एडिशन का आप हिस्सा जरूर बन पाएंगे। अब बात करें, और जानकारी हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से हम अर्जित कर सकें। हमें भारतीय वायु सेना पर पूरा पूरा विश्वास है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से ज्यादा हमारे जो भारतीय हैं वो जुड़ेंगे और अगली मरतबा फिर आएंगे। अगर हम बात करें वहां जिस तरीके की फैसिलिटीज आपने जैसे बताया कि यहाँ पे की गई हैं, रूट्स और मैप्स, उसके लिए क्या हमारे पास वहाँ पर प्रावधान है? कितना आसान, कितना सरल है जब हमारे पार्टिसिपेंट्स वहाँ दौड़ेंगे, चलेंगे, भागेंगे, उनके लिए आप बताएं।
1: जो रेगुलर रनर्स है, अगर जे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देखा जाए तो 21:10 और 5K का स्टैंडर्ड रूट रहता है। इसकी पूरी जानकारी हमने एक्सपो में दे रखी है, बट ये सारी जानकारी थ्रू मेल भी लोगों के पास गई हुई है। फिर मैं एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन दोबारा बताना चाहूँगा कि 21 किलोमीटर जो है वो पूरा ल्यूटेंस डेली में घूमते हुए कर्तव्य पथ पे जाती है, और जब वापस हम आते हैं तो जो हमारा नेशनल वॉर मेमोरियल है, जहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की मूर्ति लगी है, उसके राउंडल के थ्रू आती है। तो एक यूनिक चीज़ है। नॉर्मली रेसेस वहाँ से नहीं होती हैं, पर हमने परमिशन ली है वहाँ की, तो आपको एक यूनिक एक्सपीरियंस देंगे। और जो 21 किलोमीटर के रनर्स होते हैं, नॉर्मली 7:15 के आसपास वहाँ से निकल रहे होते हैं, और उस टाइम सनराइज हो रहा होता है, तो वो एक ऐसा पिक्चरिस्टिक माहौल होता है कि आपको थकावट भी आपकी दूर हो जाती है और आनंदित हो जाते हैं। एज फार एज 10K गोज, तो 10 किलोमीटर भी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से निकल के लोधी रोड के एरिया के आसपास सर्कुलर रूट है, वहाँ पे करते हुए वापस आएगी, और 5 किलोमीटर भी उसका जस्ट हाफ है, उसी रूट पे रहेगी।
0: बहुत खूब, तो आपके लिए पूरे प्रावधान, पूरी फैसिलिटी भारतीय वायुसेना ने कर रखी है, बस आप उस कार्यक्रम का हिस्सा बनना है। अब एक ना बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, अगर आपकी इजाजत हो तो पूछ लूँ।
1: अरे बिल्कुल।
0: वो जो गुडी बैग आप देने वाले हैं
1: हाँ,
0: उसमें पार्टिसिपेंट्स को क्या क्या मिलने वाला है?
1: ये
0: कार्यक्रम में हिस्सा लेने से पहले मन में उत्सुकता होने लगी कि क्या क्या मिलने वाला है।
1: काफी कुछ मिलने वाला है। अगर आप गुडी बैग को ही देखें तो उसपे शेखो साहब की फोटो है, सबसे बड़ी, तो आप मनमोहक हो जाएंगे उस गुडी बैग को देख के। गुडी बैग के अंदर हमारा एक एयरक्राफ्ट का मॉडल है, एक जो हम अपने ओवरऑल्स पे एक सेखो का पैच, जो नॉर्मली जैकेट्स से है उस पे एक पैच लगाते हैं, पैच है उसके अंदर अवेलेबल, एनर्जी बार है उसके अंदर, एक रिस्ट बैंड है जब भी आप भागेंगे और आपको पसीने आएंगे उसको सुखाने के लिए, और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारी टी शर्ट। इस बार हमने रिबॉक के साथ कोलेब्रेशन किया है, और एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट है जो आपको रनिंग का एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस

0: देगी।
1: बहुत खूब। एक बात कहूं, आप गुडी बैग नहीं दे रहे हैं, आप सपने दे रहे हैं। मैं चाहती हूँ मैं उसी दौर में फिर पहुंच जाऊं जब मैं फिर एफओस का एग्जामिनेशन देने के लिए खुद को तैयार करूं। तो सपने दे रहे हैं यहाँ पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी, आप जरूर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे कह रही हूँ, सेकेंड एडिशन ऑफ सेखों इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026, और उम्मीद की लौ कायम रखिए, थर्ड एडिशन आपके लिए और भी शानदार होगा। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो
0: तो
1: एक
0: किसी का,
1: सब
0: ये आप सर ने सही बोला, सपने देखेंगे जब भी तो पूरे होंगे।
1: बिल्कुल, लेकिन अगर कोई सपने दे दे अपने हाथों से तो उससे बड़ी बात दुनिया में शायद कुछ और हो नहीं सकती। एक सवाल हमारे पास और है। अक्सर हम जब कहीं जाते हैं तो हमारे पास बहुत सारा बैगेज होता है। अब हम सोचते हैं खासतौर पर जब मैराथन में जब हम दौड़ेंगे भागेंगे तो उस वक्त हमारे सामान का क्या होगा, तो इसके लिए क्या फैसिलिटी है?
0: इसके लिए फैसिलिटी जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में है। जब जैसे आप एंट्री करेंगे, हमने बहुत बड़े बैगेज काउंटर्स बनाए हुए हैं जहां आप अपना बैगेज सुरक्षित डिपॉजिट कर सकते हैं, और जब आपकी रेस खत्म होती है वहां से वापस ले सकते हैं।
1: जी बहुत बढ़िया, तो बिल्कुल निश्चिंत तो होकर जाइए, आपकी सुरक्षा, आपके सामान की सुरक्षा भारतीय वायुसेना करने वाला है इस मैराथन में। अब अक्सर ना हमारे साथ क्या होता है, टिकट मिला है, टिकट दिया है मैंने, मैं नहीं जा पा रहा हूँ, दोस्त तुम चले जाओ। अक्सर हमारे साथ ये होता है। तो क्या इस मैराथन में कोई पार्टिसिपेंट ऐसा कर सकता है कि मैं नहीं जा पा रहा हूँ तो मेरा घर का परिजन, मेरा दोस्त चला जाए?
0: काश ऐसा हो पाता, बड़ी नॉन ट्रांसफरेबल है।
1: जी, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि आपका पूरा वेरिफिकेशन देगा, पूरा आपका ब्यौरा देगा
0: बिल्कुल
1: कि आप वही हैं जो अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, तो इस बात को आप जहन में बिठा लीजिए जनाब कि आपको पूरी एहतियात के साथ यहाँ पर पहुंचना है। यहाँ पर मैं कुछ नाम लेना चाहूंगी और उसके बाद आपसे कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जो पूछना चाहेंगे। आज मैंने इस कार्यक्रम में व्हाट्सएप नंबर का जिक्र नहीं किया, उसके बावजूद बहुत से संदेश यहाँ तक हमें मिले हैं, और वंदे मातरम लिखा है हमारे पास, सरवाड़ से संदेश आया है, अरकेड़ी पंडित चन्नप्पा का। संदेश भेजने वालों में और भी बहुत सारे दोस्त हैं जिनमें द्वारका सेक्टर 15 से शंकर का संदेश है। वंदे मातरम में यश शिंदे मुंबई से इन्होंने लिख भेजा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। आपके संदेश तफसील से मैं कमांडर साहब को, विंग कमांडर साहब को सुनाऊंगी, लेकिन यहाँ समय की नजाकत है, सिर्फ नाम पढ़ पाऊंगी। पंकज अमरावती संदेश भेजा है। यशवंत आडमुटे इन्होंने संदेश भेजा है महाराष्ट्र से, बीकानेर से हमारे पास संदेश आया है। मंसूर अली का दमदार संदेश टू सोल्जर्स इन्होंने लिख भेजा है वंदे मातरम। तमिलनाडु से हमारे पास आया है ये संदेश, नाम नहीं लिखा, विजय कुमार भी इन्होंने संदेश नाम भेजा है। और चंपावत टनकपुर उत्तराखंड से संदेश आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अनिल कुमार का हमारे पास संदेश है। आज समय कम है लेकिन संदेशों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का। अब यहाँ पर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल जो मैं पूछना चाहूंगी, स्पिरिट ऑफ सिखों क्या है ये हमें बताएं।
0: ये एक हमने पहल करी है इस एडिशन से। हमने देखा कि मैराथन्स में काफ़ी लोग होते हैं जो किसी इश्यूज के वजह डिप्राइड होते हैं, किसी किसी अंग में कोई डिफेक्ट होता है या अदरवाइज कोई एक्सीडेंटल इश्यूज हो जाते हैं, या कुछ लेडीज होती हैं जो ओल्ड एज होती हैं वो साड़ी वगैरह पहन के भागती हैं, कुछ कॉस्ट्यूम्स इस तरह की होती हैं। तो ये शो करता है कि हाँ, ये दीज आर डेडिकेटेड। जैसे शेखो साहब का स्पिरिट था इतना हाई इंडिया के लिए, ऐसा ही इन लोगों के लिए यूनिकनेस है कि इनका स्पिरिट इतना हाई है कि इतने चैलेंजेस के बाद भी उनको वो एक अपॉर्चुनिटी ले रहे हैं और वो इस रेस में भाग रहे हैं। तो हमारी वहाँ टीम रहेगी जो असेस करेगी ऐसे हमारे धावकों का, और उनको हम फेलिसिटेट करेंगे रेस के बाद।
1: बहुत खूब। एक बात और, महिलाएं और पुरुष दोनों की तादाद आप अगर कंपैरिजन, तो खैर सवाल नहीं उठता, लेकिन अगर बात की जाए जितना बढ़ चढ़कर पुरुष हिस्सा लेते हैं, महिलाएं भी आपने फर्स्ट एडिशन में देखा होगा तो महिलाओं का भी इसी तरीके की प्रतिक्रिया रहती है।
0: काफ़ी योगदान रहता है, मैं कहूँगा बराबर तो नहीं, मगर 60-40 की रेशियो तो 100% रहती है।
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। तो अगली बार मैं भी हूँ, इसीलिए यहाँ पर अपना नाम दर्ज करवा रही हूँ, खासतौर पर विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी को। अब एक बार दोबारा से उन सभी स्टेशन का नाम ले लीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हर व्यक्ति की ना अपने राज्य से, अपने जहाँ पे भी एयरफोर्स स्टेशन है, एक आत्मीयता जुड़ी होती है और लगता है अच्छा हमारे शहर में, हमारे जो शहर का जो एयरफोर्स स्टेशन है राज्य का, यहाँ पर भी है, उनका नाम ले लीजिए।
0: तो जैसा मैंने पिछली बार नॉर्थ टू साउथ गया था, अब मैं सोचता हूँ रिवर्स एक्शन करते हैं, अब
1: जी
0: साउथ टू नॉर्थ चलते हैं।
1: जी
0: तो अगर साउथ इंडिया में जाए तो तिरुवनंतपुरम में पहला स्टेशन है, बेंगलुरु दूसरा स्टेशन है, उसके बाद और ऊपर सेंटर में आए तो ग्वालियर है, ईस्ट में जाए तो गुवाहाटी है, वेस्ट में मुंबई और

0: जोधपुर है और नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़।
1: तो आप कहीं से भी हैं, आपके लिए सुनहरा मौका है, आप इसका हिस्सा बनिएगा। हम जानते हैं आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं, 15 सितंबर को रजिस्ट्रेशन समाप्त हो गए थे, लेकिन जैसे कि हम बहुत उम्मीदवार हैं, ऊर्जावान हैं, और हमारी ऊर्जा हमें अगले साल की ओर भी रुख कर रही है, लेकिन अगले साल के लिए आपको जानकारी तो फिर भी चाहिए होगी, तो हम धनकर साहब से निवेदन करना चाहेंगे कि साइट का नाम दोबारा बता दें, जिससे कि हमारे वो श्रोता जो इस बार न सही अगली बार हिस्सा बन पाए इस मैराथन का।
0: अगर आप गूगल पे डालेंगे secho-marathon.in, ये साइट का नाम है, आप एक बार इसको देख लें। मैं अर्ज करूंगा जो नहीं भी पार्टिसिपेट कर पाए फिर भी इस साइट को एक बार विजिट कर लें, फ्यूचर में भी यही साइट रहने वाली है, हम इसी पे अपने नेक्स्ट एडिशन कंटिन्यू करेंगे।
1: बहुत खूब, हम दिल से एक बार फिर धन्यवाद देना चाहते हैं विंग कमांडर सतेंद्र सिंह धनकर जी का, और हम यही चाहते हैं कि हर मर्तबा हम आपके साथ यूं ही हर शो में शामिल हों, आपसे बात करें, और सेकेंड एडिशन ऑफ सेखो इंडियन एयरफोर्स मैराथन सिम 2026 सफल हो, क्योंकि भारतीय वायुसेना ने हमेशा जीतना सीखा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
0: धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, एंड ऑल द बेस्ट।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।

0: 20th ఎడిషన్ ఆఫ్ ఏషియన్ గేమ్స్ 2026 బీయింగ్ హెల్డ్ ఇన్ జపాన్ నుంచి పీరియాడికల్ ఎఫ్ఎం అప్డేట్స్.
1: గేమ్స్ 2026 ఐజీ నగోయా.
2: Hello and a very warm welcome to the live update that we bring to you at this hour. Ghar mein baj rahe 2:30, hum lekar aa gaye hain aapke liye the live updates of the ongoing Asian Games 2026. Main hoon Sakshi Mandwal, mere saath hain yahan par Dharmendra. Sabse pehle khushkhabri ke saath is update ki shuruaat karte hain ki squash mein India has claimed the bronze medal. Yes, you heard me right over there. The Indian team has claimed the bronze medal in the squash event. Humne dekha ki V Senthil Kumar lost 1-4 to Amishan Raj Chandran in the deciding match of the men's team semi-final between India and Malaysia. V Senthil Kumar won the opening game 12-10, but Malaysia's Amishan Raj hit back to take the next three games 11-6, 11-8, 11-9. Earlier in the day, in the same event, we saw in the earlier matches that Malaysia took the early lead, jahan India lost the opening match of the men's team semi-final with Abhay Singh going down 0-3 to Ian Yo Ng. The Malaysian won all three games 11-8, 11-8, 11-8 in just 27 minutes, giving Malaysia an early 1-0 lead. Then we saw Veer Chautrani helping India make a recovery back into the second match, thereby leveling the scores 1-1 because Veer Chautrani beat Sanjay Jiwa 3-0. And finally, we saw that V. Senthil Kumar went down to lose the game, and as a result, India had to settle in with the bronze.
3: Udhar kushti se bhi achhi khabar hai. Bharat ke Nitesh Sivaj ne purushon ke 97 kilogram ग्रीको रोमन वर्ग में सिल्वर मेडल जीत लिया है. उन्हें फाइनल में जापान के यूरी नाकाजातो ने फाइनल में 4-0 से हराया और गोल्ड अपने नाम किया. नाकाजातो ने मुकाबले में 4-0 की बढ़त बनाई. नितेश ने पिन से बचाव किया लेकिन जापानी पहलवान ने उन्हें वापसी का मौका नहीं दिया. नाकाजातो ने मैच की रफ्तार अपने नियंत्रण में रखी और गोल्ड जीता. और इस सिल्वर के साथ भारतीय कुश्ती दल ने अपने अभियान की शुरुआत पदकों के साथ कर दी है. लेकिन ग्रीको रोमन रेसलिंग में एशियन गेम्स गोल्ड के लिए भारत का इंतजार जारी रहा. हम आपको बताएं कि 64 साल बाद कोई भारतीय पहलवान फाइनल में पहुंचा था और 1962 में मालवा सिंह और गणपत अंदालकर ने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था. लेकिन उधर अहलावत की बात करें तो वो महिलाओं की 62 किलोग्राम भार वर्ग में पदक से चूक गए.

0: और फाइनल के लिए टिकट कटाया।
1: जी, और अब गोल्फ की दुनिया से भी कुछ खबरें आपको लेकर देते हैं अपडेट्स के तौर पर। इंडियाज प्रणवी उर्स वाज इन द सेकंड प्लेस इन द वुमेन्स इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले आफ्टर टू राउंड्स, कार्डिंग 11 अंडर 129 टू सेट टू स्ट्रोक्स बिहाइंड लीडर शैनन जुआन जिन टैन ऑफ सिंगापुर। दीक्षा डागर वाज टाइड 21st एट 4 ओवर 144 व्हाइल आदिति अशोक वाज टाइड 25th एट 5 ओवर 145। इंडिया वर थर्ड इन द टीम स्टैंडिंग्स बिहाइंड चाइना एंड सिंगापुर।
0: और अगर हम बात करें आगे कुछ और खेलों की, तो तीरंदाजी से भी भारत के लिए आज बेहद अच्छी खबर आई और भारत ने चौथा मेडल जीता। कल के 3 गोल्ड के बाद आज गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक अपने नाम किया। पुरुषों के कंपाउंड इंडिविजुअल के ब्रॉन्ज मेडल मुकाबले में उन्होंने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के स्कोर से हराया। यह एशियन गेम्स में 20 वर्षीय मणि का दूसरा मेडल है। उधर सेपक टेकरा के मेंस क्वाड्रेंट इवेंट में मेडल पक्का हो गया है। भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में म्यांमार को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। टीम इंडिया ने ग्रुप के 3 मैच जीते और अजेय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया।
1: Right, moving on to Taekwondo, India's campaign in the women's individual Pomse event in Taekwondo ended as Rupa Bayer bowed out of the semi-final. She finished with 7.6100 points. This was not enough to finish among the 8 stars who qualified for the final. And finally, to sum up this latest update, we shall be also giving you the medal table and also telling all our listeners as to where is India presently standing on the medals table. So presently, the Indian team stands on the 8th spot with a total of 64 medals, which includes 10 gold, 22 silver and 32 bronze. On that note, फिलहाल के लिए वक्त हो गया है मुझे यानी साक्षी मांडवाल और धर्मेंद्र को इजाजत देने का। हम आपसे एक बार फिर से आज के दिन की आखिरी अपडेट लेकर मिलेंगे शाम के 7:30 बजे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत। गुड बाय एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन।
2: एशियन गेम्स 2026।
3: ऑलराइट, दोज वर द अपडेट्स फ्रॉम दिल्ली अबाउट 20th एडिशन ऑफ एशियन गेम्स 2026 बीइंग हेल्ड इन जापान।

0: रहो जागते रहो,
1: सिर्फ जागते नहीं सजग रहो,
0: सिर्फ रातों में नहीं जिंदगी के हर मोड़ पर सजग रहना है,
1: अफवाहों से
0: धोखाधड़ी से
1: जागरूक होना है, अपने अधिकारों के प्रति
0: अपने जिम्मेदारियों के प्रति।
1: हर सही फैसले की शुरुआत होती है जागरूकता से, और जागरूकता की शुरुआत होती है सजग भारत से।
0: सजग भारत,
1: जागरूक भारत,
0: सशक्त भारत।
1: सुनिए सजग भारत
0: सोमवार सुबह 11:30 पर सिर्फ FM रेनबो 101.9 पर। सजग भारत,
1: जागरूक बनिए,
0: सजग रहिए।

0: Rainbow 101.9.
1: All right, before we move ahead with the callers, please stand by for the 20th edition of Asian Games 2026 being held in Japan. Live updates right from Delhi.
2: एशियन गेम्स के 12वें दिन के खेल की अंतिम अपडेट के साथ मैं हूं धर्मेंद्र और मेरे साथ हैं साक्षी मंडवाल। आईची नागोया में आज का दिन भारत के लिए मिला जुला रहा। कोई गोल्ड आज टीम के हाथ नहीं लगा, हालांकि 5 मेडल जीतने में सफलता जरूर मिली। दिन का सबसे उल्लेखनीय प्रदर्शन कुश्ती की ग्रीको रोमन शैली में रहा, जहां नितेश सिवाच ने फाइनल में जगह बनाई। भारत का कोई पहलवान 64 साल बाद ग्रीको रोमन कुश्ती के फाइनल में पहुंचा। हालांकि फाइनल में नितेश को जापान के यूरी नागाजातो ने 0-4 से हरा दिया और भारत का गोल्ड जीतने का इंतजार जारी रहा।
3: जी, और सेलिंग की दुनिया में अगर बात करें तो वहां से भी आज सुबह हमें खुशखबरी मिली, बिकॉज इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसनिकल नोबल विनिंग सिल्वर इन द मेंस गिफ्ट इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 नेट पॉइंट्स। हांगकांग टुक द थर्ड स्पॉट, थेरेबाय रैपिंग अप विद द ब्रॉन्ज मेडल फॉर देमसेल्व्स।
2: और तीरंदाजी में जहां कल हमारी टीम ने 3 गोल्ड मेडल जीते थे, वहीं आज एक ब्रॉन्ज मेडल मिला। कंपाउंड मेंस इवेंट में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक मुकाबले में वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149-144 के अंतर से हराया। ये एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है।
3: जी, स्क्वाश की दुनिया में भी आज भारतीय मेन को डेफिनेटली ब्रॉन्ज मेडल मिला। और अगर हम बात करें महिलाओं की तरफ भी, तो वहां पर भी द इंडियन वुमेन्स टीम वेंट डाउन 1-2 टू हांगकांग इन द वुमेन्स टीम सेमीफाइनल एंड हैड टू सेटल इन फॉर द ब्रॉन्ज। अगर मेन्स की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि इन द फर्स्ट मैच इंडिया लॉस्ट द ओपनिंग मैच ऑफ द मेन्स टीम सेमीफाइनल विद अभय सिंह गोइंग डाउन 0-3 टू इयान यो एनजी। उसके बाद सेकंड गेम में वीर चौटरानी बीट संजय जीवा 3-0 टू ब्रिंग इंडिया लेवल 1-1। एंड फाइनली बी सेंथिल कुमार लॉस्ट 1-4 टू अमीशन राज चंदरन इन द डिसाइडिंग मैच ऑफ द मेन्स टीम सेमीफाइनल। एंड देयर बाय इंडियन मेन्स टीम इन स्क्वाश हैड टू ऑल्सो सेटल विद ब्रॉन्ज एंड द वुमेन्स स्क्वाश टीम ऑफ कोर्स सेटल्ड इन विद द ब्रॉन्ज एट द अर्ली पार्ट ऑफ द डे।
2: उधर हॉकी में भारत ने बेहद रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 4-3 से हराकर एशियन गेम्स मेंस हॉकी के फाइनल में जगह बना ली है। अभिषेक ने मैच के आखिरी मिनट में गोल कर भारत को जीत दिलाई। गोल्ड मेडल के लिए 3 अक्टूबर को भारत का सामना मलेशिया से होगा। और हम आपको बताएं कि भारत ने मैच के 23वें मिनट तक 3-0 की बढ़त बना ली थी। उसके बाद पाकिस्तान ने जोरदार वापसी की और अगले 26 मिनट में 3 गोल कर मैच 3-3 से बराबर कर दिया। 59 मिनट तक मैच बराबरी पर था। फाइनल हुटर बजने से करीब 50 सेकंड पहले अभिषेक ने फील्ड गोल कर भारत को जीत दिला दी। और पुरुष हॉकी में अगर हम बात करते हैं तो भारत ने एशियन गेम्स में 4 गोल्ड, 9 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल अब तक जीते हैं।
3: Right, and in cricket also we have some good news to give you, where Indian men's cricket team defeated Sri Lanka today in the semi-final by a huge margin of 124 runs. India, having been put into bat first, posted a total of 169 for the loss of 7 wickets in 20 overs, whereas Sri Lanka in that chase of making 170 got bundled out for a paltry 45 runs. Now the Indian men's team will be up for the final clash against Pakistan, who defeated Bangladesh also in the semi-finals today and then moved on towards the finals. ये फाइनल का मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच शनिवार को आपको देखने को मिलेगा।
2: और सेपक ठकरा के मेंस क्वाड्रेंट इवेंट में मेडल भारत के लिए पक्का हो गया। भारत ने आखिरी ग्रुप मैच में म्यांमार को 2-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और टीम इंडिया ने ग्रुप के 3 मैच जीते और अजेय रहते हुए ग्रुप में टॉप किया।
3: जी, वहीं ताइक्वांडो की दुनिया से अगर आपको कुछ खबर दे तो वहां पर बहुत ज्यादा अच्छी खबर हम आपको नहीं दे पाएंगे, बिकॉज भारत का सफर इन द वुमेन्स इंडिविजुअल पॉम्जे इवेंट इन ताइक्वांडो एंडेड टुडे एज रूपा बेओर बोड आउट ऑफ द सेमीफाइनल। शी फिनिश्ड विद 7.6100 पॉइंट्स। दिस वाज नॉट इनफ टू फिनिश अमंग द 8 स्टार्स हु क्वालिफाइड फॉर द फाइनल।
2: और शूटिंग से भी अच्छी खबर नहीं है। मेन्स 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल फाइनल में भारत के अनीश भानवाला 7वें स्थान पर रहे। इसके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया है। अनीश ने एक और सीरीज में 5 में से 4 हिट किए। उनके कुल 15 शॉट में से 11 हिट रहे। इस स्कोर के साथ वे 3रे स्थान के लिए बराबरी पर थे। हालांकि टाई होने पर क्वालिफिकेशन का स्कोर देखा गया। क्वालिफिकेशन में अनीश का स्कोर कम होने के कारण वे टाई ब्रेकर में पीछे रह गए और 7वें स्थान पर रहे। इसके साथ 3 गोल्ड, 8 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज समेत कुल 15 पदक जीतकर भारत का शूटिंग अभियान खत्म हो गया। भारत ने पिछले एशियन गेम्स के मुकाबले 4 स्वर्ण समेत 7 कम पदक जीते।
3: Right, in rugby sevens, the Indian women's rugby sevens team had a tough start on the opening day of the Aichi Nagoya 2026 Asian Games, suffering two heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizua Rugby Stadium. The first match, India lost to Hong Kong China 7-33, and the second match, India lost to People's Republic of China 5-43.
2: जी हाँ, और वॉलीबॉल में भी अच्छी खबर नहीं रही। पाकिस्तान के हाथों भारत को 3-0 से शिकस्त मिली और भारत का अभियान वॉलीबॉल में भी समाप्त हो गया है।
3: राइट, विद दिस टू क्विकली सम अप हाउ इंडिया स्टैंड्स इन द मेडल टेबल टुडे। बाय द एंड ऑफ द डे, वेल, इंडिया इज स्टैंडिंग प्रेजेंटली ऑन द 8th स्पॉट विद अ टोटल ऑफ 64 मेडल्स, व्हिच इंक्लूड्स 10 गोल्ड, 22 सिल्वर एंड 32 ब्रॉन्ज। लेट्स ऑल्सो टेल यू दैट ऑन द नंबर 1 स्पॉट इज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना विद अ टोटल ऑफ 288 मेडल्स, व्हिच इंक्लूड्स 154 गोल्ड medals. Japan is a number 2 with a total of 217 medals, with a total of 59 gold medals in that. And on the 3rd spot we have Republic of Korea with a total of 113 medals, jisme se 30 gold medal hain. Aur Bharat ka sthan abhi medal table par hai 8th sthan par. Iske sath hi dosto, filhal ke liye Dharmendra aur mujhe Sakshi Mandwal ko aaj ke liye dijiye ijazat. Hum aapse kal subah ek bar fir 9:30 baje judenge with all the updates of the ongoing Asian Games 2026. For the moment, it's goodbye and
2: namaskar,
3: good night.
2: Namaskar.
4: Asian Games 2026, Aichi Nagoya.
1: All right, those were the live updates from Delhi about the 28th edition of Asian Games 2026 being held in Japan.

0: సర్ది కట్టుకొని రాదు
1: ఎక్కడికో.
0: ఏ శనగుల ఏ శనగుల.

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त स्टूडियो घड़ी में रात के 9:30 और 10 सेकेंड्स हो रहे हैं, और अब पेश है उर्दू प्रोग्राम नए रंग।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्स पर। उर्दू प्रोग्राम नैरंग की बज में सामाइन का दिली खैर मकदम है। सामाइन, आज की इस बज्म को हमने सजाया है हरफ ताबिंदा से। तहरीर व पेशकश होगी नूरुद्दीन की, मिजाहिया मुशायरा आप समाप्त करेंगे, शुरकाए कलाम होंगे फरीद सहर, शाहिद अदीली, वहीद पाशा खादरी और मोइन अमर बम्बो। गीत सुरीले गाते जा आप समाप्त करेंगे और नरंग की बज्म के आखिर में आप सुनेंगे पयाम शब, पेशकश होगी नदीम अख्तर जैदी की। और सामिन, शब 10 बजे से 10:20 तक दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा एशियन गेम्स 2026 का 20वां एडिशन जापान में मुनक्किद हो रहे का हाइलाइट्स। ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में रात के 9:32 और 4 सेकेंड्स हो रहे हैं और अब बज़्म का आगाज़ करते हैं हरफ ताबिंदा से, और हरफ ताबिंदा पेश कर रहे हैं नूरुद्दीन। आइए सुने।
1: मोहतरम सामाइन, आदाब क्या हैं? आदाब का मतलब है सलीखा या तरीखा। ये वो अच्छे अतवार हैं जो हमारी ज़िंदगी के हर पहलू में रहनुमाई करते हैं, ख्वाह वो बोलने का अंदाज हो, बैठने का सलीखा हो, दूसरों से पेश आने का तरीक़ा हो, या हत्ता के खाने पीने के आदाब हों। ये सब हमारी शख्सियत का हिस्सा बनते हैं और दूसरों पर हमारा तासुर कायम करते हैं। आदाब की अहमियत को किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आदाब माशरे में हम आहंगी और सुकून पैदा करते हैं। जब हर फर्द आदाब की पासदारी करता है तो बाहमी एहतराम और मोहब्बत परवान चढ़ती है। आपके आदाब आपकी शख्सियत का आईना होते हैं। एक बाअदब शख्स हर जगह इज्जत की निगाह से देखा जाता है, जबकि बेअदब शख्स को कोई पसंद नहीं करता। अच्छे आदाब ताल्लुकात को मजबूत बनाते हैं, चाहे वो खानदानी रिश्ते हों, दोस्ती का बंधन हो या पेशावराना ताल्लुकात। आदाब उनमें चाशनी पैदा करते हैं। जिंदगी के हर शोबे में कामयाबी के लिए आदाब जरूरी हैं। ख्वाह आप तालिब इल्म हो, मुलाजिम हो या कारोबारी शख्स, आपके अच्छे आदाब आपको आगे बढ़ने में मदद देते हैं। चंद बुनियादी आदाब जिन्हें हमें अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। गुफ्तगू के आदाब, नर्म लहजे में बात करना, दूसरों की बात गौर से सुनना, दखल अंदाजी से गुरेज करना और गाली गलोच से बचना गुफ्तगू के अहम आदाब हैं। मुलाकात के आदाब, सलाम करना, मुसाफह करना, नजरें मिलाकर बात करना और मुस्कुराना मुलाकात के बुनियादी आदाब हैं। खाने पीने के आदाब, बिस्मिल्लाह पढ़कर शुरू करना, दाएं हाथ से खाना, निवाला छोटा लेना और बर्तन साफ करना इस्लामी आदाब में शामिल हैं। लिबास के आदाब, साफ सुथरा और बाविखार लिबास पहनना और मौके की मुनासिबत से लिबास का इंतखाब करना। सोशल मीडिया के आदाब, किसी को बदनाम न करना, तौहीन आमेज गुफ्तगू से परहेज करना और दूसरों के जज्बात का ख्याल रखना भी आज के दौर में नहायत अहम है। आदाब और तालीम, आदाब का ताल्लुक सिर्फ हमारी ज़ाती ज़िंदगी से नहीं बल्कि ये हमारे तालीमी सफ़र में भी कलीदी किरदार अदा करते हैं। एक बाअदब तालिब इल्म न सिर्फ असातिज़ा का एहतराम करता है बल्कि अपने हम जमातों के साथ भी अच्छे रवैये का मुजाहरा करता है। असातिज़ा का एहतराम इल्म हासिल करने का पहला जीना असातिज़ा का एहतराम है। उनकी बात पर गौर करना, उनके सवालात का अदब से जवाब देना और उनकी इज्जत करना तालीम में बरकत का बाइस बनता है। क्लासरूम के आदाब, क्लास में खामोशी इख्तियार करना, उस्ताद की इजाजत के बगैर बात न करना और अपने साथियों को परेशान न करना क्लासरूम के बुनियादी आदाब हैं। इल्मी जुस्तजू में आदाब, इल्म हासिल करते वक्त आजिजी इख्तियार करना और अपने इल्म पर गुरूर न करना भी आदाब में शामिल है। इम्तिहान के आदाब, दयानतदारी से इम्तिहान देना, नकल से परहेज करना और दूसरों को परेशान न करना भी तालिब इल्म के लिए जरूरी है। आदाब एक ऐसी खसूसियत है जो हमें सिर्फ इंसान नहीं बल्कि शरीफ इंसान बनाती है। ये सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि हमारी इल्मी

0: रहे
1: उधर जाते जाते
0: इधर आ रहे हैं उधर जाते जाते इधर आ रहे हैं। शेर देखिएगा, कमर झुक गई है जवानी में मेरी,
1: कमर झुक गई है,
0: कमर झुक गई है जवानी में मेरी, तेरे नाज नखरे
2: उठाते उठाते
0: उठाते तेरे नाज नखरे,
1: बहुत काबिल रहमान,
0: तेरे नाज नखरे उठाते उठाते तेरे नाज नखरे। ये शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा।
1: इरशाद इरशाद,
0: जला कर खुसर सास ये बोलते हैं,
2: जला कर खुसर सास ये बोलते हैं
0: बहु जल गई है पकाते बहु जल गई है पकाते पकाते, जला कर खुसर सास ये बोलते हैं, जला कर खुसर सास ये बोलते हैं बहु जल गई है
1: पकाते
0: बहु जल गई है
2: पकाते।
0: शबे वसल बिस्तर पे थी काच कूरी शबे वसल बिस्तर पे थी काच कूरी सहर हो गई है
2: खुजाते
0: सहर हो गई है सहर हो गई है खुजाते खुजाते सहर हो गई है। शेर देखिएगा, जलाया है धोनी ने लंका की, जलाया है धोनी ने रावण की लंका,
1: क्या बात है,
0: जलाया है धोनी ने रावण की लंका, वो मुंबई में छक्का लगाते
1: लगाते
0: वो मुंबई में छक्का, वो मुंबई में छक्का लगाते लगाते वो मुंबई में छक्का
2: लगाते।
0: आखिरी शेर देखिएगा, गरीब हो गई आज भारत की जनता,
1: क्या बात है,
0: गरीब हो गई आज भारत की जनता, हुकूमत को रिश्वत खिलाते खिलाते हुकूमत को रिश्वत, हुकूमत को रिश्वत खिलाते खिलाते हुकूमत को रिश्वत।
2: मख्ता समाज कीजिएगा,
0: वही ऐसे शायर को क्या नाम दूं मैं।

0: क्या कहने, वाह वाह वाह वाह।
1: एक और
2: हजरत एक और एक गजल समाप्त कीजिएगा।
0: सीधी नजर घुमाते घुमाते एक गजल और पेश
2: कीजिए। पैरोडी आपके सामने पेश कर रहा हूँ, समाप्त कीजिएगा। एक साहब अपनी बीवी की तारीफ कुछ इस तरह से कर रहे हैं,
0: हाँ
2: समाप्त कीजिए।
1: इरशाद।

0: वाह वाह वाह।
1: अभी आप समात फरमा रहे थे जनाब वहीद पाशा खादरी को, जिन्होंने अपना दिलचस्प मिजाहिया कतात और मुरस्से गजल से हम सबको महसूस किया। अब चलते हैं उस मोतबर शायर की समत जो तंजो मिजाह की महफिलों में अपने मखसूस मिजाहिया कलाम के बाद काफ़ी पसंद किए जाते हैं। अभी हाल ही में इनका मजमू कलाम जैवर तबाद से आरस्ता हो चुका है, हिंदुस्तान भर में मुशायरे पढ़ चुके हैं। इनका तखालुस भी मिजाहिया है जिसको सुनते ही लोगों पर तबस्सुम की लकीरें नुमायाँ हो जाती हैं। मेरी मुराद जनाब मोइन अमर बम्बू से है, मैं उनका इस खते से इस्तकबाल करता हूँ। खोखला होता है बम्बू दोस्तों,
0: क्या
1: खोखला होता है बम्बू दोस्तों, झट खफा होता है लम्बू दोस्तों।
0: अरे क्या कहना,
1: खोखला होता है बम्बू दोस्तों, झट खफा होता है लम्बू दोस्तों, हाथ बिन पेंदे के लोटे दे अगर, हाथ बिन पेंदे के लोटे दे अगर, साथ जब देता है चंबू दोस्तों।
0: अरे क्या कहना
1: जनाब मोइन अमर बम्बू।
2: अगदे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है,
1: अगदे सानी,
2: अगदे सानी मेरा कहने को सुहाना लग रहा है, था लिफाफा नया मजमून पुराना लग रहा है।
1: अरे रे रे क्या बात है भाई,
2: घूंघट उठाते ही मेरे दीदे निकल गए बम्बू, टाप नब्बे था मगर रिक्शा
1: पुराना था।
0: क्या कहना भाई,
1: क्या बात है, रिक्शा पुराना था।
0: रिक्शे पे गहरी नजर है।
2: आजकल हर नौजवान शादी के लिए गोरी होना जो बोल रहे हैं, उस ताल्लुक से चार लाइन, पैमाने से सब पी रहे तो मिट्टी के प्याले कहाँ जाना।
1: क्या बात है,
0: क्या
1: है।
2: पैमाने से सब पी रहे तो मिट्टी के प्याले कहाँ जाना।
1: बहुत अच्छे।
2: ट्यूबलाइटा सब रख लिए तो मोमबत्ती के उजाले कहाँ जाना।
1: अरे क्या बात है।

0: क्या बात है।
1: कुदरत से जोड़ा बनता है बंबू मियाँ, सच है, लेकिन गोरे गोरे सब चुन लिए तो पीले काले कहाँ जाना।
2: अरे क्या बात है, अच्छा तरह से, अच्छा तरह से मोइन भाई,
0: क्या कहने भी, वाह वाह वाह वाह।
1: ये एक और
2: इरशाद,
1: सीने में आहों को दबाना अच्छा नहीं,
0: अच्छा
1: सीने में आहों को दबाना अच्छा नहीं, तन्हा बिस्तर पे सो जाना अच्छा नहीं। बंबू तुम ससुराल से ला लो जोरू को, डोई रख ले को हाथ जलाना अच्छा नहीं।
2: अच्छा अच्छा,
1: ये हेलमेट के तालों से पुलिस किस तरह परेशान कर रही है और आवाम भी पुलिस को किस तरह परेशान कर रही है।
0: ये
1: हो चेकिंग कितनी भी मुश्किल चाल चल जाते हैं लोग, हो चेकिंग कितनी भी मुश्किल
0: चाल चल जाते हैं
1: लोग, रोड पर पुलिस की नजरों से फिसल जाते हैं लोग।
0: अच्छा,
1: लाजमी हेलमेट हुई है जब से बंबू, क्या करें चिकनी हंडी पे कलर करके निकल जाते हैं लोग।
2: कलर कराने का जवाब नहीं भाई, बहुत अच्छे,
0: वाह वाह वाह वाह।
1: ये नाखलफ औलाद के ताल्लुक से
0: इरशाद, इरशाद
2: जी,
1: माँ बाप को जो झिड़कियां देते हैं
2: जी,
1: उस ताल्लुक से, छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी। माँ
0: क्या कह रही है,
2: बहुत अच्छा,
1: छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी, जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद।
0: क्या कहने,
1: जागती थी रात भर तुझको सुला देने के बाद, बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब, बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है, बद्दुआ किस मुंह से दूं तुझको दुआ देने।
2: अरे क्या बात है, बहुत अच्छी, बद्दुआ किस मुंह से दूं तुझको दुआ देने के बाद, फिर एक बार आता हूं,
0: ममता की अक्कासी,
1: छींक भी आए तुझे तो मैं परेशान रहती थी,
2: बहुत खूब,
1: जागती थी रात भर तुझको सुला देने के,
2: क्या बात है,
1: बीवी की ताईद लेकर झिड़कियां देता है अब, बद्दुआ किस मुंह से दूं तुझको
2: दुआ, दुआ देने के बाद, बहुत अच्छे,
0: वाह वाह वाह।
1: मियां ये हाल ही का वाकया है, परसों मुझे एक लड़की मिली थी
2: जी,
1: बोली आबिट्स तक छोड़ दो।
2: अच्छा
0: अच्छा,
1: लेको जा रहा था, साला देखा लेकिन साला शक नहीं करता, मुझसे ही तुम कैको मांगे लिफ्ट पूछा, तो लड़की बोली बुड्ढों के हम साथ रहे तो देखने वाला शक नहीं करता।
0: क्या कहने भैया,
2: अच्छा,
0: अरे वाह,
1: तन्हाइयों में अपना वक्त अच्छा काट रही,
2: तन्हाइयों में
1: अपना वक्त अच्छा काट रही, बीवी गई है मैं के मियाँ खुशियां बांट रही।
2: अच्छा अच्छा,
1: बीवी पकाई मुर्ख तो सौ एतराज थे, बीवी पकाई मुर्ख तो सौ एतराज थे, अब दाल पड़ोसन की मजे ले को चाट रही।
0: अरे क्या कहने भाई, वाह वाह वाह वाह।
1: शादी करके घर में बीवी इसलिए लाता नहीं, शादी करके घर में बीवी इसलिए लाता नहीं, सामने हो मौत तो फिर कौन घबराता नहीं।
0: अरे वाह वाह वाह वाह,
1: हो गई जब शादी तो पछताने से क्या फायदा, दूध वापस भैंस के थन में कभी जाता नहीं।
0: अरे वाह,
1: एक आखिरी चौवा,
0: इरशाद,
1: दिल सीने में रख ले को भी दिल का लगाना नहीं आता, अच्छे खासे हट्टे कट्टे वजन उठाना नहीं आता, औरतों से बस दिल लगी करते हैं, शादी के नाम से घबराते हैं, खाली मामू कन्ने बनते हैं, पतंग उड़ाना नहीं आता।
2: अरे क्या बात है, क्या बात है,
0: क्या कहने,
2: ये थे जनाबे मोई नंबर बंबू, आपसे ख्वाहिश की जाती है कि और गजल से नवाजें।
1: बाजार जाको शान से हौला खरीद रहा है, बाजार जाको शान से
2: हौला
1: खरीद रहा है, नेफा ही नहीं है गुड़गी में नाड़ा खरीद रहा है।
0: क्या कहने,
2: नेफा ही नहीं है,
1: नेफा ही नहीं है गुड़गी में
0: नाड़ा खरीद रहा है,
2: रास्तेकारी नाच कर।
1: अधड़ उम्र की बेड़ की बेवा के वास्ते, अधड़ उम्र की बोड़ की बेवा के वास्ते, बुड्ढा चूड़ी का जोड़ा और चुटला खरीद रहा है।
2: अच्छा है, अच्छा है।
1: मुश्किल से जो पहनती है, मुश्किल से
2: जो पहनती,
1: जो पहनती है बस आधी मैक्सी,
2: आधी मैक्सी,
1: मुश्किल से जो पहनती है बस आधी मैक्सी, हौले तो उसके वास्ते बुरखा खरीद रहा है।
2: अच्छा अच्छा, तंज है,
0: वाह वाह।
1: बीवी से बढ़ को मामा का रखता है वो ख्याल, बीवी से बढ़को मामा का रखता
2: है वो ख्याल,
1: बिरयानी छोड़ को चाकने का डोपा खरीद रहा है।
2: अच्छा है।
1: तलाक दे के बीवी को बेवा से कर रहा है अख्त, तलाक दे के बीवी को बेवा से कर रहा है अख्त, क्यों ढोल अपना छोड़ को धपड़ा खरीद रहा है।
0: अच्छा।
1: बंबू नए फकीर को है भीख की जल्दी, बंबू
0: नए फकीर को है भीख की जल्दी,
1: बच्चा अभी हुआ नहीं झूला खरीद
0: रहा है।

0: झूला खरीदा बहुत खूब।
1: एडवांस है।
0: ये थे जनाबे मुइन अमर बम्बू, जो अपने तंजो मिजाज से भरपूर कलाम से महफिल को जाफर नजार कर रहे थे। अब मैं उस मुब्तदी और कम मारूफ शायर को जहमत कलाम देने जा रहा हूँ, जिसको दुनिया तंजो मिजाज फरीद सहर के नाम से जानती है। जी हाँ, नाचीज यानी फरीद सहर से उसका कलाम समात फरमाए। सबसे पहले चंद खतात बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए कि बॉलिंग तेज करो,
1: बॉलिंग तेज करो
0: या करो तुम स्पिन ही।
1: अच्छा,
0: बॉलिंग तेज करो या करो तुम स्पिन ही, वो रन मैं लेके रहूंगा जो लेने वाला हूँ।
1: अरे वाह वाह वाह, क्या कहने।
0: बॉलिंग तेज करो या करो तुम स्पिन ही, वो रन मैं लेके रहूंगा जो लेने वाला हूँ। पसंद आए तुम्हें या ना आए शेर मेरे, पसंद आए तुम्हें या ना आए शेर मेरे, मगर मैं पढ़ के रहूंगा जो पढ़ने वाला
1: हूँ। अरे क्या कहने,
0: मगर मैं पढ़ के रहूंगा जो पढ़ने वाला हूँ।
2: वाह वाह वाह।
0: और एक खता देखिए कि एक गजल कहने को हम इस बज्म में,
1: एक गजल कहने को हम इस बज्म में,
0: ठोक कर आए हैं हम इस बज्म में।
1: अरे क्या कहने,
2: वाह वाह।
0: एक गजल कहने को हम इस बज्म में,
1: ठोक कर
0: आए हैं हम इस बज्म में, और दाद देने में बखालत मत करें।
1: वाह वाह,
0: दाद देने में बखालत मत करें, वरना हम मारेंगे बम इस बज्म में, वरना हम मारेंगे बम इस बज्म में।
2: वाह वाह वाह।
0: और एक खता उर्दू की नजर कर रहा हूँ, सब उर्दू का मुशायरा है। देखिए कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा उर्दू तेरा राज चलेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा उर्दू तेरा राज चलेगा, और तेरा मुस्तकबिल है दरख्शां, तेरा मुस्तकबिल है दरख्शां, हर कोई तुझसे प्यार।
1: दोनों बातें राज की है।
0: और हजरत एक खता, दो खतात हैं, एक मशवरा सास को है, एक मशवरा बहू को। ये थे जनाबे मोइन अमर बम्बू, जो अपने तंजो मिजाज से भरपूर कलाम से महफिल को जाफरा निजार कर रहे थे। अब मैं उस मुब्तदी और कम मारूफ शायर को जहमत कलाम देने जा रहा हूँ, जिसको दुनिया तंजो मिजाज फरीद शहर के नाम से जानती है।
1: क्या इनके सारी
2: वाह।
0: जी हाँ, नाचिस यानी फरीद शहर से उसका कलाम समात फरमाए।
2: इरशाद।
0: सबसे पहले चंद खतात बर्दाश्त कर लीजिए। देखिए कि बॉलिंग तेज करो या करो तुम स्पिन ही।
1: अच्छा,
0: बॉलिंग तेज करो या करो तुम स्पिन ही, वो रन मैं लेके रहूंगा जो लेने वाला हूँ।
2: क्या कहने, क्या कहने। वाह वाह।
0: बॉलिंग तेज करो या करो तुम स्पिन ही, वो रन मैं लेके रहूंगा जो लेने वाला हूँ। अब पसंद आए तुम्हें या ना आए शेर मेरे, पसंद आए तुम्हें या ना आए शेर मेरे, मगर मैं पढ़ के रहूंगा जो पढ़ने वाला हूँ। मगर मैं पढ़ के रहूंगा जो पढ़ने वाला
3: हूँ। आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और मुशायरा मिजाहिया मुशायरा आप समाप्त कर रहे हैं। हमने सुना कलाम वहीद पाशा खादरी मोइन अमर बम्बू का, और अभी हमें सुनना बाकी है फरीद सहर और शाहिदा दिली के कलाम को। तो मिजाहिया मुशायरा सुनना है हमें 10:20 से, और इस मिजाहिया मुशायरे को अभी हम फिलहाल यहाँ रोकते हैं, और इसका सिलसिला जारी रहेगा यकीनन 10:20 से। और इस वक्त स्टूडियो की घड़ी में वक्त हुआ है रात के 9:58 और 48 सेकेंड्स। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। 2026 एशियन गेम्स का 20वां एडिशन जापान में मुनक़िद किया जा रहा है। इसी जमन में आइए सुनते हैं दिल्ली केंद्र से हाइलाइट्स।

0: नमस्कार, आकाशवाणी।
1: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
2: बीसवें एशियाई खेलों में आज के कार्यक्रम के साथ उपस्थित हैं हम। मैं हूं अनुपम पाठक, नमस्कार। सबसे पहले आज की सुर्खियां। नितेश सिवाच ने ग्रीको रोमन कुश्ती में इतिहास रचा, पाया रजत पदक। सेलिंग में फ्रांसिस मनु और प्रिंस नोबेल ने रजत पदक हासिल किया। कंपाउंड आर्चरी में गणेश मणिरत्नम ने कांस्य पदक पर निशाना साधा। स्क्वैश में महिला और पुरुष टीम दोनों स्पर्धाओं में कांस्य पदक। और हॉकी में भारत ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। पहलवानी के मैट पर आज भारतीय लिहाज से एक अनोखी उपलब्धि आई। सोनीपत हरियाणा के लाल ने कमाल कर दिया। 1962 के बाद पहली बार कोई भारतीय ग्रीको रोमन स्पर्धा के इवेंट में फाइनल में पहुंचा। खुलासा शाहिद आजमी से।
3: भारतीय पहलवान नितेश कुमार ने 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में रजत पदक जीतकर 64 साल का इंतजार खत्म कर दिया। शानदार प्रदर्शन के दम पर फाइनल तक पहुंचे नितेश भले ही स्वर्ण पदक से चूक गए, लेकिन उनका रजत पदक भारत की कुश्ती के इतिहास में एक नया अध्याय लिख गया। पुरुषों के 97 किलोग्राम ग्रीको रोमन वर्ग में नितेश ने क्वार्टर फाइनल में तुर्कमेनिस्तान के अमन बर्दी अगामेदेव को 7-1 से हराया, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के गंगखुयाग गनबातार को 9-0 से शिकस्त देकर फाइनल में जगह बनाई। फाइनल में उन्हें जापान के यूरी नकाजातो के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा, लेकिन रजत पदक जीतकर नितेश ने इतिहास रच दिया। वह 1962 के बाद ग्रीको रोमन वर्ग में एशियन गेम्स फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पहलवान बने। हालांकि इससे पूर्व दो और ग्रीको रोमन मैच खेले गए, लेकिन कोई खास कामयाबी नहीं मिली। 60 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित को ईरान के अब्बासपुर रागानी के खिलाफ मुकाबला गंवाना पड़ा। वहीं 77 किलोग्राम में अमन ने शानदार शुरुआत करते हुए मंगोलिया के बोरगिल तोशिन बातार को 8-6 से हराया। हालांकि अगले मुकाबले में कतर के शाहीन बदाघी मुफराद ने अमन को 9-0 से शिकस्त दी। इसके साथ ही भारत का ग्रीको रोमन कुश्ती अभियान 2 पदकों के साथ समाप्त हो गया। वहीं महिला वर्ग में आज एकमात्र वजन वर्ग में भारतीय पहलवान मानसी अहलावत 62 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। मानसी का कांस्य पदक मुकाबले में मंगोलिया के अल्तजिन तोक्तोक से सामना हुआ। रोमांच से भरपूर इस मैच में मानसी ने आखिरी दम तक जोर लगाया, लेकिन 4-2 से हारकर कांस्य पदक से चूक गई। इससे पहले मानसी ने प्री क्वार्टर फाइनल में कजाकिस्तान की इरीना कुज़निसोवा को 6-1 से हराया, जबकि क्वार्टर फाइनल में दक्षिण कोरिया की जो सुबिन को विक्ट्री बाई फॉल से मात देकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। हालांकि सेमीफाइनल में जापान की नोनोका ओजाकी के खिलाफ मानसी को 0-6 से हार का सामना करना पड़ा। अब कल 2 अक्टूबर को पुरुषों के 65 किलोग्राम फ्रीस्टाइल में सुजीत कलकल और 125 किलोग्राम में रुहाल चुनौती पेश करेंगे। वहीं महिलाओं के 50 किलोग्राम में दीपांशी और 76 किलोग्राम में प्रिया मलिक मैट पर उतरेंगी।
2: नौकायन के नाविक कई दिनों से समंदर की लहरें गिन रहे थे। आज कई स्पर्धाओं में उनकी नाव किनारे पर जा लगी। स्किफ में प्रिंस नोबेल और फ्रांसिस मनु की नाव तो चांदी से भर गई, और इस चांदी की पूरी कहानी साक्षी मंडवाल से।
4: इंडिया सिक्योर्ड देयर फर्स्ट सेलिंग मेडल एट द एशियन गेम्स विद मनु फ्रांसिस एंड प्रिंस कुरिसिंकल नोबेल विनिंग सिल्वर इन द मेन्स स्किफ इवेंट। द इंडियन पेयर फिनिश्ड सेकंड विद 23 नेट पॉइंट्स एंड 29 टोटल पॉइंट्स आफ्टर 9 रेसेस बिहाइंड गोल्ड मेडलिस्ट चाइना हु फिनिश्ड ऑन 16 net points. India recorded 2 race wins and 2 second place finishes in the 9 race series. China claimed the gold while Hong Kong took the bronze medal.
2: कंपाउंड आर्चरी में युवा होनहार गणेश रत्नम और चिकिता तानीपार्थी थे आर्चरी रेंज में, पदक एक ही आया। रिपोर्ट शाहिद आजमी से।
3: एशियन गेम्स के 12वें दिन तीरंदाजी में भारत के लिए एक पदक आया, तो एक मुकाबले में करीबी हार का सामना करना पड़ा। पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड वर्ग में गणेश मणिरत्नम थिरुमरु ने कांस्य पदक अपने नाम किया। कांस्य पदक के मुकाबले में गणेश ने वियतनाम के कोंग डुक डांग को 149 के मुकाबले 144 अंकों से हराया। गणेश ने मुकाबले में घसब की सटीकता दिखाई और 15 में से 14 तीरों पर परफेक्ट 10 का स्कोर किया। यह एशियन गेम्स में गणेश का दूसरा पदक है। इससे पहले स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय पुरुष कंपाउंड टीम का हिस्सा रहे थे। उनके कांस्य पदक के साथ कंपाउंड तीरंदाजी में भारत ने 3 स्वर्ण और 1 कांस्य समेत 4 पदक जीते। वहीं महिला कंपाउंड व्यक्तिगत स्पर्धा के क्वार्टर फाइनल में चिकिता तानीपार्थी को इंडोनेशिया की नुरिसा दियान अश्फरीहान ने बेहद करीबी मुकाबले में 144 से 143 हराया। इसके साथ ही चिकिता का व्यक्तिगत कंपाउंड अभियान क्वार्टर फाइनल में समाप्त हो गया।
2: स्क्वाश में टीम स्पर्धाओं में भारतीय टीमें शानदार प्रदर्शन करती हुई सेमीफाइनल तक पहुंच गईं और आज सेमीफाइनल में दोनों टीमों के रैकेट विपक्षी कौशल और दमखम को पार नहीं कर सके, लेकिन उनके हौसले और अभियान की दाद

0: दीजिए, जिसने दोनों को दिलाए कांस्य पदक। रिपोर्ट धर्मेंद्र से।
1: स्क्वाश में भारत को आज 2 कांस्य पदक मिले। पुरुष टीम को मलेशिया के हाथों सेमीफाइनल में 1-2 की हार से ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। पहले मैच में अभय सिंह को एनजी इयान ने 0-3 से शिकस्त दी। स्कोर 8-11 रहा, लेकिन दूसरे मैच में वीर चोटरानी ने भारत को वापसी कराई। इस मैच को चोटरानी ने 3-0 से अपने नाम किया। उन्होंने मलेशिया के खिलाड़ी संजय जीवा को 11-4, 11-8, 11-5 के स्कोर से शिकस्त दी। लेकिन वी सेंथिल कुमार निर्णायक मैच में पराजित हो गए। उन्हें ए चंद्रन ने 4 सेट में 12-10, 6-11, 8-11, 9-11 से हराया और भारत के फाइनल में पहुंचने की उम्मीद खत्म कर दी। भारतीय महिला स्क्वाश टीम को भी ब्रॉन्ज मेडल से संतोष करना पड़ा। टीम को सेमीफाइनल में हांगकांग के खिलाफ 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। इस सेमीफाइनल मुकाबले की शुरुआत भारतीय महिला स्क्वाश टीम के लिए अच्छी नहीं रही। ये अलग बात है कि अनाहत सिंह ने चान सिन युग के खिलाफ अच्छी शुरुआत की और पहले 2 गेम जीते। अनाहत ने पहला गेम 11-9 और दूसरा गेम 11-8 से अपने नाम किया। हालांकि इसके बाद चान सिन ने शानदार वापसी की और उन्होंने अगले 3 गेम जीतकर मैच को अपने नाम कर लिया। तीसरा गेम चान सिन ने 11-6 से जीता तो चौथे गेम को 13-11 और पांचवें गेम को 12-10 से जीता। इस जीत के साथ हांगकांग ने मैच में 1-0 की बढ़त बना ली। हालांकि इसके बाद तन्वी खन्ना ने भारतीय टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा। उन्होंने अपने से ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी ली का यी को बेहतरीन वापसी करते हुए हराया। पहले गेम में तन्वी को 4-11 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारतीय खिलाड़ी ने अगले 3 गेम जीतकर स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। तन्वी ने दूसरा गेम 13-11, तीसरा गेम 11-9 और फिर 13-11 से जीता। निर्णायक मुकाबले में ज्योत्सना चिनप्पा ने निराश किया और वह होजे लोक के खिलाफ हार गयी। होजे ने पहला गेम 11-4 से अपना नाम किया। इसके बाद दूसरे गेम में भी हांगकांग की खिलाड़ी का दबदबा रहा और उन्होंने गेम को 11-7 से जीता। होजे तीसरे गेम में भी हावी नजर आई और उन्होंने 11-9 से जीतकर हांगकांग को फाइनल का टिकट दिलाया।
0: हॉकी में परंपरागत विपक्षी भारत और पाकिस्तान थे आमने सामने और क्या मैच हुआ, लोमहर्षक, सांसें थाम देने वाला। भारत ने करीब 1 दशक से पाकिस्तान पर चली आ रही अपनी बादशाहत बनाए रखी, मैच 4-3 से जीत लिया। किसी बेहतरीन थ्रिलर की तरह था ये मैच। 3-3 की बराबरी, खेल समाप्त होने वाला था, सीटी बजने वाली थी, लग रहा था मामला शूट आउट में जा रहा है। तो हूटर बजने के ठीक 40 सेकंड पहले भारतीय हमला होता है, गेंद डी में पहुंचती है, पाकिस्तानी डिफेंडर के स्टिक से टकराकर फ्लेक्ट होती है और अभिषेक ने फुर्ती के साथ गेंद को गोल मुहाने के भीतर कर दिया। भारत फाइनल में पहुंच गया, लेकिन इस मैच के रंग कई बार बदले थे। पहले दोनों क्वार्टर्स भारत के नाम और अगले दोनों में भारतीय रक्षण की चूक और पाकिस्तान के पलटवार। पहले क्वार्टर में ही 5वें मिनट और फिर 13वें मिनट में कप्तान हरमनप्रीत ने पेनल्टी कॉर्नर हिट्स का जादू चलाया। भारत 2-0 से आगे। हाफ टाइम के बाद सुखबीर ने एक बेहतरीन फील्ड गोल कर भारत को 3-0 से आगे कर दिया। भला किसने सोचा था कि पाकिस्तान अभी भी मैच में वापस आ सकता है, लेकिन लगा भारतीय रक्षण की धार अचानक कुंद सी हो गई है। पहले पेनल्टी कॉर्नर में अल महमूद और फिर हनान शाहिद का फील्ड गोल और उसके बाद चौथे क्वार्टर में राणा वहीद का भी लेफ्ट फ्लैंक से मारा गया करारा शॉट, जिससे गोलकीपर कोसों दूर थे। बहरहाल अभिषेक के गोल ने भारत की जीत पक्की कर दी। अब स्वर्ण पदक के लिए भारत मलेशिया से भिड़ेगा 3 तारीख को और कहने की जरूरत नहीं, हॉकी का स्वर्ण पदक और सभी पदकों से ज्यादा प्यारा होता है हमें। क्रिकेट में आखिरकार भारतीय टीम सचमुच मैदान में उतरी और शानदार मैच खेला। इस शानदार जीत की शानदार कहानी धर्मेंद्र से।
1: क्रिकेट में भारत ने श्रीलंका को 124 रन से हराकर एशियन गेम्स के फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने जापान के निशिन में खेले गए सेमीफाइनल में पहले बैटिंग करते हुए 20 ओवर में 7 विकेट पर 169 रन बनाए। ईशान किशन ने नाबाद 80 रन की पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी ने भी 21 गेंदों पर 38 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की टीम 9.5 ओवर में 45 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रीलंका के 6 बल्लेबाज खाता तक नहीं खोल सके। जसप्रीत बुमराह, अक्षर पटेल और अभिषेक शर्मा ने 2-2 विकेट भारत के लिए लिए। भारत ने श्रीलंका पर 2020 क्रिकेट में अपनी सबसे बड़ी जीत का रिकॉर्ड भी बनाया। पिछली सबसे बड़ी जीत 93 रन की थी, जो 2017 में कटक में मिली थी। अब शनिवार को गोल्ड के लिए भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। ये पहला मौका है जब ये दोनों टीमें एशियन गेम्स में क्रिकेट मुकाबले में आमने सामने होंगी। ईशान ने बताया कि भारतीय टीम फाइनल मैच के लिए तैयार है। ईशान किशन ने इस मैच के बारे में कहा,
2: आई थिंक जस्ट कीपिंग इट सिंपल, यू नो, यू डोंट थिंक सो मच। वी प्लेड टुडे, वी नो द कंडीशंस आर नॉट गोइंग टू बी सो इजी, स्पेशली दे आर आल्सो स्पिनिंग स्पिनर फ्रेंडली टीम। एट द सेम टाइम, यू नो, यू जस्ट डोंट थिंक लाइक व्हाट्स गोना हैपन आफ्टर 2 डेज, यू जस्ट कीप काम, यू प्ले योर शॉट्स, यू बी इन द मोमेंट एंड जस्ट एंजॉय दोस क्रंच मोमेंट्स।

0: सिपक टॉकरो में पुरुष क्वाड्रेंट में अरुण और बॉबी कुमार के खेल ने उम्मीदें जगाए रखी। जानते हैं साक्षी मंडवाल से।
1: India secured a medal in men's quadrant sepak takraw after beating Myanmar 2-1 in their final group match. The victory sent India into the semi-finals and keeps their unbeaten run intact across three group matches. India finished top of their group and are assured of a place on the podium. Earlier in the day, we saw India defeat Vietnam in the men's quadrant group A match of the sepak takraw event. They won in straight sets by a margin of 15-12, 15-7, thereby defeating Vietnam 2-0.
0: शूटिंग की स्पर्धाएं आज समाप्त हो गई। अंतिम स्पर्धा भी कल से जारी पुरुषों की 25 मीटर रैपिड फायर में अनीश भानवाला फाइनल तक तो पहुंचे, लेकिन पदक पे निशाना नहीं साध पाए। आज की स्पर्धा पर शाहिद आजमी का विवरण।
2: एशियन गेम 2026 में शूटिंग स्पर्धा में आज भारत की आखिरी उम्मीद अनीश भानवाला का सफर 25 मीटर रैपिड पिस्टल के फाइनल में सातवें स्थान पर रहते हुए खत्म हुआ। क्वालिफिकेशन में अनीश ने 576 का स्कोर कर नवा स्थान हासिल किया। हालांकि एक देश से अधिकतम दो निशानेबाजों को फाइनल में पहुंचने के नियम के तहत उन्हें फाइनल में जगह मिली। आपको बता दें, दक्षिण कोरिया के तीन निशानेबाज क्वालिफाई हुए थे, लेकिन नियम के तहत उनके दो निशानेबाज ही फाइनल में पहुंच सके। फाइनल में अनीश ने एक अहम दौर में 15 में से 11 सटीक निशाने लगाए, लेकिन टाई ब्रेकर में पीछे रह गए। इस तरह अनीश सातवें स्थान पर रहे और उनके साथ ही एशियन गेम्स में भारत का शूटिंग अभियान समाप्त हो गया। अब एक नजर डालते हैं एशियन गेम 2026 में भारतीय निशानेबाजों के प्रदर्शन पर। भारतीय शूटरों ने एक बार फिर अपनी सटीक निशानेबाजी का दम दिखाया। हालांकि कुछ नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं रहे। ओवरऑल भारत ने कुल 15 पदक अपने नाम किए, जिनमें 3 गोल्ड, 8 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। अभियान की सबसे बड़ी उपलब्धि रही नीरू ढांडा का प्रदर्शन। उन्होंने महिलाओं की ट्रैप स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने के साथ ही कायनन चेनाई के साथ मिक्स ट्रैप में भी स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं सुरुचि सिंह और कमलजीत की जोड़ी 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम इवेंट में एशियन गेम्स रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता। और अगर पिछले एशियन गेम्स की तुलना करें तो हांगझाऊ 2022 एशियन गेम्स जो 2023 चीन में आयोजित हुए थे, वहाँ भारतीय निशानेबाजों ने 22 पदक जीते थे, जिनमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल शामिल थे।
0: वॉलीबॉल में टीम दमखम तो पूरा लगाती है, लेकिन 1986 के बाद से पदक नहीं आ पा रहा। लेकिन आज क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को वो ब्लॉक नहीं कर पाए। विवरण धर्मेंद्र से।
3: वॉलीबॉल में भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान से 0-3 से हार गई। पाकिस्तान ने मुकाबला 25-19, 25-23, 25-18 से जीतकर सेमीफाइनल में जगह बना ली। ये मैच 1 घंटे 20 मिनट तक चला। भारत को सबसे ज्यादा 10 अंक अंशवाल राय ने दिलाए। पाकिस्तान के मुराद खान ने 22 अंक बनाए। इस हार के साथ भारत का एशियन गेम्स में वॉलीबॉल अभियान खत्म हो गया।
0: जूडो में उम्मीदें यामिनी मौर्य से थी, लेकिन मन मोह लिया मणिपुर की एक लड़की ने। कांस्य पदक के बिल्कुल नजदीक पहुंच गई। जूडो का विवरण साक्षी मंडवाल से।
1: In judo, Yamini Maurya's campaign ended with a defeat in the women's 57-kilogram repechage at the Asian Games. While India's Inanganbi Taklambam first beat Nepal's Poonam Shrestha by IPO to qualify for the quarterfinals. However, she lost by IPO to North Korea's Song Hui Moon in the quarterfinals. Song's reaching the final opened up the repechage route for Taklambam. The Indian was scheduled to face China's Jing Tang in the repechage round. However, the Chinese judoka was disqualified before the bout. Consequently, Taklambam was awarded a walkover victory by a Fusen Gachi. India's Inanganbi Taklambam lost the bronze medal bout in the women's 70-kilogram event, getting defeated by Anujin Ulzi, who won the bout by Waza Ari.
0: In Asiai khelon mein tennis ne zarur kai dil tod diye. मायूस किया। 40 साल बाद टेनिस में भारतीय दल बिना पदक के रह गया। सुमित नागल भी अपना मैच आज हार बैठे क्वार्टर फाइनल का। लेकिन गोल्फ की बात करें तो उसमें उम्मीदें जगी हुई हैं। कल आरंभ हुआ था, भारतीय टीम चुनौती देने की स्थिति में लग रही थी, और आज क्या हुआ इसका विवरण दे रही हैं साक्षी मंडवाल।
1: India's Pranavi Urs was in the second place in the women's individual stroke play after two rounds, carding 11 under 129 to set two strokes behind leader Shannon Juan Jin Tan of Singapore. Diksha Dagar was tied 21st at 4 over 144, while Aditi Ashok was tied 25th at 5 over 145. India are third in the team standings behind China and Singapore.
0: साइकिलिंग ट्रैक में आज पुरुष ओमनियम, महिला स्प्रिंट और मेडिसिन की प्रतियोगिताएं थीं। ओमनियम में हर्षवीर सिंह सैखों नवे स्थान पर पहुंचे।

महिलाएं मेडिसिन स्पर्धा समाप्त ही नहीं कर सकी और स्प्रिंट में साइकिलों के चक्के रिपेचैस तक पहुंचकर ही थम गए। तो ताइक्वांडो में क्या हुआ, आइए जानते हैं

0: में भारत पूल ई में है। हांगकांग से पहला मैच ही बहुत मुश्किल साबित हुआ भारत के लिए। इस स्पर्धा का पूरा विवरण साक्षी मंडवाल से।
1: इंडिया वुमेन्स रग्बी सेवन टीम कंप्राइजिंग शिखा यादव, दुमुनी मारंदी, संध्या राय, मामा नाय, वैष्णवी पाटिल, कल्याणी पाटिल, अमनदीप कौर, आरती कुमारी, भूमिका शुक्ला, गुरिया कुमारी, निर्मल्या राउत, संध्या रानी टुडू एंड उज्ज्वला घुगे हैड अ टफ स्टार्ट ऑन द ओपनिंग डे ऑफ द आईची नगोया 2026 एशियन गेम्स, suffering two heavy defeats in Pool B, Pool E in some classifications at the Paloma Mizuho Rugby Stadium. In match number 1, India was handed a defeat by Hong Kong China 33-7, while in match number 2, India was handed a defeat by People's Republic of China 43-5.
0: और अब पदक तालिका की ताजा स्थिति शाहिद आजमी से।
2: एशियन गेम्स 2026 में भारत के खाते में अब तक 10 स्वर्ण, 22 रजत और 32 कांस्य सहित 64 पदक हैं और भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है। वहीं मेडल टेबल पर चीन 154 स्वर्ण समेत 288 पदकों के साथ पहले, जापान 59 स्वर्ण समेत 217 पदकों के साथ दूसरे और दक्षिण कोरिया 30 स्वर्ण समेत 113 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर है।
0: ये एशियाई खेल अपने समापन की ओर बढ़ चले हैं। ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, लेकिन अभी भी पदकों के लिए पूरी रस्साकशी जारी है। वो सवाल जो प्रतियोगिताएं उठाती हैं, जिनके जवाब होते हैं स्वर्ण पदक या रजत पदक या कांस्य पदक पाना, उसके लिए जद्दोजहद जारी है और भारतीय खिलाड़ी भी इसमें लगे हुए हैं। कल का दिन बहुत खास रहने वाला है क्योंकि महिला हॉकी का फाइनल है। सारी निगाहें वहीं रहेंगी। भारत की लड़कियां चीन के विरुद्ध उतरेंगी हॉकी के मैदान पर। बहुत शानदार मैच रहेगा ये। इसके बारे में जानना हो तो हमारी अपडेट्स आकाशवाणी पे हमारे साथ रखिएगा। भारतीय लड़कियों ने इस पूरे टूर्नामेंट में बहुत शानदार खेला है। सबसे पहले उज्बेकिस्तान को 19-0 से परास्त किया, उसके बाद इंडोनेशिया को 17-1 से, थाईलैंड को 20-1 से, जापान को 3-1 से, सिंगापुर को 7-0 से और सेमीफाइनल में कोरिया की मजबूत टीम को 2-0 से परास्त किया था। यानी पूरे जोश में होंगी लड़कियां और स्वर्ण पदक भारत के हिस्से में आना चाहिए। कल और 3 स्वर्ण पदक हैं जिन पर भारतीय निगाहें रहेंगी। बॉक्सिंग के रिंग में उतरेंगे अंकुश पंघाल, परवीन हुड्डा और लवलीना बोरगोहेन। देखते हैं बॉक्सर्स भारत के लिए क्या करके दिखाते हैं। वैसे बॉक्सर्स ने अब तक के इन एशियाई खेलों में बहुत शानदार प्रदर्शन किया है, पहले से कहीं बेहतर। अगर प्रदर्शन ऊंचा हुआ है तो बॉक्सिंग वो स्पर्धा है जिसमें भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा करके दिखाया है। कुश्ती में भी कल भारतीय पहलवान बहुत कुछ कर गुजरने की चाह लेकर मैट पर उतरेंगे। फ्री स्टाइल में सुजीत कलकल होंगे 65 किलोग्राम भार वर्ग में, रजत होंगे 125 किलोग्राम भार वर्ग में, दीपांशी 50 किलोग्राम भार वर्ग में और प्रिया 76 किलोग्राम भार वर्ग में अपने दांव पेंच दिखाएंगे। तो आर्चरी में रिकर्व टीम की सेमीफाइनल स्पर्धाएं हैं। अंकिता भगत, कीर्ति और कुमकुम खेलेंगी चीन के विरुद्ध। इसके अलावा केनो स्लालोम में महिला और पुरुष के क्रॉस इंडिविजुअल हैं। साइकिलिंग में महिला ओमनियम, पुरुष काइरिन और पुरुष मेडिसन की प्रतियोगिता होगी। गोल्फ में पुरुष टीम राउंड 3 में खेलेगी और इसके अलावा इंडिविजुअल स्ट्रोक प्ले महिला और पुरुष का जारी रहेगा। रग्बी सेवन में मलेशिया के विरुद्ध मैच होगा। सेपक टोकरा में महिला क्वाड्रेंट के मुकाबले होंगे। ताइक्वांडो में कशिश मलिक उतरेंगी। और अब समय आ पहुंचा है विदा लेने का। एक बार फिर आपको याद दिला दूं, कल सुबह 9:30 बजे से FM रेनबो पर नियमित अपडेट्स सुनना मत भूलिएगा और रात 10 बजे हमारा ये हाइलाइट्स कार्यक्रम। तो फिलहाल मुझे अनुपम पाठक को दीजिए आज्ञा, एडिटर विशाल कुमार और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर शाहनवाज खान।
3: एशियन गेम्स 2026 आईची नगोया।
4: ये आकाशवाणी हैदराबाद ही 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। जापान में मुनाकिद हो रहे एशियन गेम्स 2026 का 20वां एडिशन की झलकियां अभी आप सुन रहे थे, जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा था। ये आकाशवाणी हैदराबाद ही 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। सामाइन बज़्म है नैरंग की और हमने हर्फ़ ताबिंदा सुना था और फिर मिजाहिया मुशायरे का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें हमने शोरा को सुने यानी वहीद पाशा खादी का कलाम सुना और मोइन अमर बम्बू का कलाम। अब आइए और भी कलाम सुनना बाकी है, तो मिजाहिया मुशायरे के तहत हम समाप्त करते हैं फरीद सहर और शाहिद अदीली के कलाम को। आइए सुने।
5: नैरंग के सुनने वालों को हमारा आदाब। मोहतरम सामाई, آج ہم آپ کی خدمت میں ایک مزاحیہ مشاعرہ پیش کر رہے ہیں۔

0: अरे उधर जाते जाते
1: इधर आ रहे हैं उधर जाते जाते इधर आ रहे हैं। शेर देखिएगा, कमर झुक गई है जवानी में मेरी,
0: कमर झुक गई है,
1: कमर झुक गई है जवानी में मेरी, तेरे नाज नखरे
2: उठाते
1: उठाते तेरे नाज नखरे,
0: बहुत काबिल है,
1: तेरे नाज नखरे उठाते उठाते तेरे नाज नखरे। ये शेर बतौर खास समाप्त कीजिएगा।
0: इरशाद इरशाद,
1: जलाकर बहू को जलाकर खुसर सास ये बोलते हैं,
2: जलाकर खुसर सास ये बोलते,
1: जलाकर खुसर सास ये बोलते हैं, बहू जल गई है पकाते
0: पकाते, क्या बात है, क्या
2: बात है, बहुत उम्दा।

0: जला कर खुसर सांस ये बोलते हैं, जला कर खुसर सांस ये बोलते हैं, बहु जल गई है
1: पकाते
0: बहु जल गई है
1: पकाते।
2: सामिन अकराम, अभी आपने सुना मिजाहिया मुशायरा, शुरकाए कलाम थे फरीद सहर, शाहिद अदीली, वहीद पाशा खादरी और मोइन अमर बम्बू। यकीनन जो हालात आज इस दौर में हो रहे हैं, या यूं कहें कि हालात हाजरा पर जो शायरी मिजाहिया तौर पर तंज किया गया है, इस मुशायरा को हमने सुना, यकीनन आप महसूस हुए होंगे और आजकल हो रहे हालात से भी वाकिफ हुए होंगे कि क्या कुछ कहाँ हो रहा है। ये आकाशवाणी हैदराबाद है 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। इस वक्त स्टोरी की घड़ी में रात के 10:27 और 11 सेकेंड्स हो रहे हैं। समय आज हम मना रहे हैं मोमर अफराद का बैन अल-अक़वामी दिन, यानि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। इसके ज़िमन में अगर बात की जाए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है। बुजुर्ग शहरियों का आलमी दिन हम मना रहे हैं दुनिया भर में, और आज बुजुर्गों का आलमी दिन यानि 21 अक्टूबर 2026 को। इसका मकसद यही है मनाने का कि वो जो बुजुर्ग अफराद है या मोमर शहरी हैं, उनकी अहमियत और उनके हुकूक की जानिब तवज्जो करना है या फिर तवज्जो दिलाना है। और तवज्जो दिलाते हुए ये बताना है कि किस तरह रिश्तों में दरारें आ रही हैं, खासकर बूढ़े बुजुर्ग लोगों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM MHz पर। सामाइन, आप सुन रहे हैं उर्दू प्रोग्राम नैरंग, और बज्म सजी है गीत सुरीले गाते जाखी। और आज हम मना रहे हैं 1 अक्टूबर 2026 को इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स का। बात हम कर रहे हैं बुजुर्ग और मोहम्मर अशखास की, कि न सिर्फ बुजुर्ग शहरी या अशखास माशरे के कीमती सरमाया हैं, बल्कि हर एक फैमिली, हर एक खानदान का अहम जुज है। जिस तरह जिस्मानी अजू अहमियत रखते हैं और उसके बिना इंसान चल फिर नहीं सकता या फिर सेहतमंद जिंदगी नहीं गुजार सकता, उसी तरह बुजुर्ग भी बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। उम्र रसीदा अफराद की ज़िंदगी को खुशगवार बनाने के लिए हम, जैसे कि 1 अक्टूबर को आलमी योम बुज़ुर्ग मनाया जाता है, ताकि आवाम को इनकी इज्जत व एहतराम और ज़रूरतों का एहसास दिला जाए। अब ये एहसास हम में जागना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब फ़र्द दुनिया में आता है तो उसके साथ कुछ रिश्ते भी बन जाते हैं और ये रिश्ते अटूट होते हैं।

तो दुनिया के ये रिश्ते बड़े ही निराले और अजीब हैं। दुनिया में जब आए हैं तो काम करना है ऐसे काम जो अपनों को खुश रखे, उस उनमें यगानापन नहीं बल्कि बेगानगी पैदा ना हो, बल्कि अपनायत का एहसास हो।

ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज पर। दो प्रोग्राम नैरंग की बज्म सजी है और आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाते जा। और हम बात कर रहे हैं आज के इस मौजू पर जो कि मौमर अफराद का बैनुल अक्वामी दिन मनाया गया आज 1 अक्टूबर के लिहाज से। और बुजुर्ग हस्तियां यही कहती हैं अपने मौमर अफराद जो बुजुर्ग हैं, दादा दादी, नाना नानी या और जो भी हैं, बस अपने बच्चों से, नौजवानों से यही उनकी गुजारिश है कि ना तेरे बिन हम जी सकेंगे। लेकिन हो क्या रहा, ओल्ड एज होम में उन्हें दाखिल कर दिया जाता है और फिर पलट कर नहीं देखा जाता। यूं तो अक्वामे मुत्तहिदा कई तरह की इकदाम उठाता रहता है। अक्वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली की 14 दिसंबर सन 1990 की करारदाद के मुताबिक हर साल 21 अक्टूबर को आलमी योमे बुजुर्ग मनाया जाता है। इससे कबल वियना इंटरनेशनल प्लान ऑफ एक्शन ऑन एजिंग यानी उम्र की हदबंदी के सिलसिले में अमली इकदाम के तहत इस दिन को मनाने की पेशकश की गई थी। उसी वर्ष के आखिर में अक्वामे मुत्तहिदा ने, जनरल असेंबली ने इसकी तायिद की थी। जैसे कि सामईन, ओल्ड एज होम आज हम देखेंगे तो कह जा सकते हैं कि जो बड़े बड़े शहर हैं या फिर नामवर हस्तियां हैं अपने वालिदैन को वहां छोड़ जाते हैं और फिर पलट कर उन्हें देखा नहीं जाता।

सामाइन, आप सुन रहे हैं गीत सुरीले गाते जाओ, और मौजू चल रहा है 1 अक्टूबर के लिहाज से मोमर अफराद का बैनुल अक्वामी दिन, इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स, जैसे कि अभी कहा गया। और आप सब भी जानते हैं कि यूएनओ, अक्वामे मुत्तहिदा, किस तरह की इकदाम अमली तौर पर लेता रहता है। तो इस जमन में भी सन 1990 में ये कदम उठाया गया था कि किस तरह मोमर अफराद आए दिन परेशान हो रहे हैं, और वो जो उनके अफराद खानदान होते हैं, किस तरह का उनके साथ बर्ताव होता है। अक्वामे मुत्तहिदा की करारदाद के मुताबिक आलमी योम बुजुर्ग का मकसद मनाने का यही है कि उम्र रसीदा अफराद की बहबूदी के लिए काम करना, ताकि हर मुल्क में मोमर अफराद इज्जत और विकार की जिंदगी बसर कर सकें। लिहाजा इस साल अक्वामे मुत्तहिदा का आलमी योम बुजुर्ग का मौजू उम्र रसीदा आबादी को डिजिटल रसाई फराहम करना है। अक्वामे मुत्तहिदा का कहना, ये साल मोमर अफराद को डिजिटल दुनिया में शामिल करने की जरूरत पर मबनी है। तो रिश्तों की बात हम कर रहे हैं, ऐसा नाजुक रिश्ता जो एक उम्र होने के बाद खत्म होने के कगार पर ठहर चुका है, और यकीनन हम तरक्की कर रहे हैं या कर चुके हैं। तरक्की कर रहे हैं तो क्या हमारे आदाब, हमारे अखलाक, अखलाकी अकदार इतनी गिर गए हैं कि आज जिन्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत है, हम उनसे हाथ छुड़ा लेते हैं।

सियासत दौरा तो देखिए, मंजिल उन्हें मिली जो शरीके सफर न थे। जिंदगी में कभी ऐसा होता है कि मेहनत कोई करता है और फायदा कोई और उठा लेता है, ऐसे वक्त में मायूस या इंतकाम का शिकार होने के बजाय अपने किरदार और उसूलों पर कायम रहना चाहिए। असल कामयाबी सिर्फ मंजिल हासिल करना नहीं, बल्कि ईमानदारी से सफर तय करना और मुश्किल वक्त में साथ देने वालों की कदर करना भी है। मंजिल पर पहुँच कर ये न भूलें कि सफर में किसने साथ दिया था, क्योंकि कामयाबी की असल कदर तब होती है जब मेहनत, वफादारी और कुर्बानी का हक अदा किया जाए।

0: ये आकाशवाणी हैदराबाद है, 101.9 FM मेगाहर्ट्ज़ पर। स्टूडियोज़ की घड़ी में रात के 11 बजने ही वाले हैं। चंद ही लम्हों में आप सुनेंगे हिंदी वो अंग्रेजी में समाचार जिसे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। बारी बारी आप सुनेंगे हिंदी वो अंग्रेजी, यानी 11:05 पर हिंदी में समाचार और 11 बजे हिंदी समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी समाचार और 11:10 पर समय आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र के प्रोग्राम्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
2: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ

0: समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि तीनों सशस्त्र सेनाओं के बीच तालमेल और एकीकरण पर जोर दिया जा रहा है। वही भावना रक्षा लेखा विभाग के वित्तीय ढांचे में भी होनी चाहिए। नई दिल्ली में रक्षा लेखा दिवस पर उन्होंने कहा कि अगर वित्तीय प्रणालियों को भी एकीकृत किया जाए तो पूरा रक्षा प्रबंधन और भी बेहतर हो जाएगा। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग की वैधता 1 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष तक कर दी है। केंद्र ने पात्र दिव्यांगजनों और दिव्यांग लाभार्थियों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग जारी करने और नवीनीकरण के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। ये दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। पहले दिव्यांगजनों के लिए छूट प्राप्त फास्टैग का वार्षिक नवीनीकरण अनिवार्य था। सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक बढ़ा दी है। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इससे पात्र विद्यार्थियों को राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा और संबंधित अधिकारियों द्वारा समय पर सत्यापन भी सुनिश्चित हो सकेगा। पुदुचेरी जिला प्रशासन ने 6 अक्टूबर को होने वाले थट्टन चावड़ी विधानसभा उपचुनाव के मद्देनजर निगरानी और कार्रवाई तेज कर दी है। आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन पर नजर रखने के लिए 4 फ्लाइंग स्क्वाड और 1 विशेष निगरानी टीम 24 घंटे तैनात की गई है। इसके अलावा 5 बाइक स्क्वाड और आबकारी विभाग की 3 टीमें भी लगातार निगरानी कर रही हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव प्रचार रविवार 4 अक्टूबर को शाम 6 बजे समाप्त हो जाएगा। चुनाव अधिकारी ने बताया कि मतदाता चुनाव संबंधी शिकायतें टोल फ्री नंबर 1950 या निर्वाचन आयोग के सी विजिल मोबाइल ऐप के जरिए दर्ज करा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ. दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में आज भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदकों के साथ टोटल 66 पदक जीत लिए। नौकायन में मनु फ्रांसिस और प्रिंस कुरिसिंकल नोबल ने रजत तथा महिला स्किफ में शीतल वर्मा और हर्षिता तोमर ने कांस्य पदक जीता। कुश्ती में नितेश सिवाच ने रजत पदक हासिल किया। उधर पुरुष क्रिकेट टीम ने श्रीलंका को और पुरुष हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, pro-active and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examinations must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi today, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service.
0: हमें अपने सिलेक्शन पैरामीटर्स और रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप बनाना होगा. हमें ऐसे युवाओं को पब्लिक सर्विस में लाना होगा जो पब्लिक ऑफिस से नहीं पब्लिक सर्विस से आकर्षित हो. इसलिए जरूरी है कि रिक्रूटमेंट की परीक्षा सिर्फ यह न परखे कैंडिडेट कितना जानता है, बल्कि वो यह भी देखे युवा सिविल सर्विसेज में आना क्यों चाहता है.
2: The Prime Minister said an examination should not be considered just as an event, as it is related to the future of the youth. Mr. Modi noted that a delay of even a few months can create difficulties for the youth, and therefore the examination system should follow the principle of time certainty. President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Smith Mutcher for his heroic courage in preventing a major tragedy and saving many precious lives. Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and U.S. President Donald Trump have also hailed Smith Mutcher as a hero who averted a big tragedy. Mr. Netanyahu thanked Captain Smith Mutcher for saving the lives of 174 people on board Tel Aviv-bound Fly Dubai flight. Meanwhile, External Affairs Ministry today said it continues to closely follow the health condition of Captain Smith Mutcher. It said in a statement that after receiving initial medical treatment in a hospital in Tabuk, Saudi Arabia, he has now been shifted to Abu Dhabi for continued medical attention and recovery. Indian ambassador in UAE met Captain Mutcher in hospital and inquired about his well-being. Earlier, the ambassador also met his family and assured all possible support for the captain's health and well-being. The Indian Embassy in Abu Dhabi and Consulate in Dubai are in close touch with the local authorities in the matter. Union Home Affairs Minister Amit Shah today chaired a meeting in New Delhi to resolve the long-standing Mahanadi water dispute. Union Jal Shakti Minister C.R. Patil, the Chief Ministers of Chhattisgarh and Odisha and other senior officials were present at the meeting. The dispute over sharing of Mahanadi waters between Chhattisgarh and Odisha has remained unresolved for several years. Odisha had requested the central government in November 2016 to set up a tribunal to resolve the dispute. The government has extended the validity of exempted fast tags from existing 1 year to up to 5 years for Divyangjan, depending on the degree of disability. The centre has revised the guidelines for issuance and renewal of the exempted fast tags for eligible Divyangjan and persons with disability beneficiaries. The guidelines will come into effect from tomorrow. Bihar continues to battle floods. Several rivers in the state are flowing above the danger mark. Chief Minister Samrat Chaudhary has sought the assistance of the Indian Air Force for relief and rescue operations in view of the seriousness of the situation. After inspecting the rising water level of the Ganga in Patna today, Mr. Chaudhary told reporters that several rivers in the state are flowing at high levels. At the Asian Games 2026 in Japan, India enjoyed another action-packed day today, with the men's hockey and cricket teams reaching their respective finals. Men's hockey team defeated their arch-rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. Greco-Roman wrestler Nitesh Tiwaj today bagged silver medal in men's 97kg at Asian Games in Japan. Nitesh lost to Japan's Yuri Nakazato 0-4 in the final. Nitesh missed out on a historic gold but secured India's first silver medal in Greco-Roman wrestling at the Asian Games since 1962. Indian pair of Manu Francis and Prince Kurisinkal Noble bagged the silver medal in the men's skiff opening race 9 of the Asian Games sailing competition. And that is the end of this news bulletin.
3: अब सुनिए आज शाम 6:30 बजे प्रसारित मार्केट मंत्र कार्यक्रम का पुनः प्रसारण.

0: Good evening and welcome to Market Mantra. I am Niharika Bhuvania with my co-anchor in Hindi, Sonu Sood.
1: नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है. आज की आर्थिक खबरों की बारीकियों पर चर्चा के लिए

0: आज वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार उदयन रे स्टूडियो में आमंत्रित है। नमस्कार उदयन, मार्केट मंत्रों में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सोनू।
0: और अब हेडलाइंस के साथ निहारिका भुवानिया।
2: The headlines for this evening are as follows. Benchmark domestic indices shed nearly 1%. Sensex falls over 550 points. Nifty settles below 22,450. Finance Ministry expects country's economy to grow by 7.3% in second quarter of current financial year. And government needs to encourage households to shift more savings to long-term pension products, says Chief Economic Advisor V. Anant Nageswaran.
0: प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगभग 1% की गिरावट पर हुए बंद। सेंसेक्स 550 अंकों से अधिक गिर गया। निफ्टी 22,450 के नीचे आ गया। वित्त मंत्रालय का अनुमान है कि मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की अर्थव्यवस्था 7.3% की दर से बढ़ेगी और सरकार को परिवारों को प्रोत्साहन देना चाहिए कि वे अपनी बचत की ज्यादा राशि लंबे समय के पेंशन उत्पादों में हस्तांतरित करें, कहा प्रमुख आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन ने।

0: And before we move forward, a small disclaimer for all our listeners. The views and opinions expressed by experts in this program are their own and not those of Akashvani. Akashvani advises its listeners to do their own research or consult a registered professional before taking any investment decision. And we further advise all listeners to exercise due diligence and rely on their own judgment for taking any financial decision.
1: और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं. प्रमुख घरेलू बाजार सूचकांक लगातार चौथे सत्र आज गिरावट में रहे. सेंसेक्स 0.8% की मंदी से 571 अंक कम होकर 71,910 पर बंद हुआ. निफ्टी 0.9% टूटकर 199 अंकों की गिरावट दर्ज करता हुआ 22,422 पर बंद हुआ. विस्तारित बाजार की बात करें तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में मिड कैप 100 और स्मॉल कैप 100 दोनों सूचकांक लगभग 1% की भारी गिरावट पर बंद.
0: Benchmark domestic equity indices extended their losing streak for the fourth straight session today. The Sensex plunged 571 points or 0.8% to close at 71,910. The Nifty shed 199 points or 0.9% to settle at 22,422. In the broader market at the National Stock Exchange, the mid-cap 100 as well as the small-cap 100 indices tumbled around 1% each.
1: सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से 24 गिरावट में रहीं. सबसे अधिक गिरने वाली कंपनियां रहीं मारुति 4.6%, महिंद्रा एंड महिंद्रा 3.3% और 3% गिरावट के साथ टाटा स्टील. इसके विपरीत सबसे अधिक बढ़ने वाली कंपनियां थीं 4% उछाल के साथ इन्फोसिस और 1.4% बढ़त के साथ TCS और HCL टेक.
0: इन द सेक्टोरल इंडेक्सेस ऑन द BSE, 22 out of 28 sectors edged lower while capital goods remained unchanged. Among the top losers, auto shed 3.1%, metal fell 2.2% and consumer discretionary dropped 2.1%. In contrast, IT jumped 1.8%, focused IT rose over 1.6% and insurance added 0.6%. The overall market breadth at the BSE was negative as shares of 3,056 companies declined, 1,367 advanced and 229 remained unchanged.
1: रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 48 पैसे कमजोर होकर 96.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ. क्या कहेंगे उदयन, ये सप्ताह काफी दबाव में रहा है बाजार. चारों ही दिन छोटा सप्ताह है, छोटा कारोबारी सप्ताह है. आज भी बाजार जब गिरावट के साथ खुले, बॉन्ड यील्ड्स मल्टी ईयर हाईज तक पहुंच गई थी, क्रूड ऑयल प्राइसेस की कीमतें बढ़ी हुई थी. इस बीच पूरा टाइम दबाव में रहे और आफ्टरनून ट्रेड तक आते आते लगभग 1280 अंक गिर गया था सेंसेक्स. लेकिन अगर एक ऑप्टिमिस्टिक की तरह हम उसके बाद देखें, जो 700 अंकों से अधिक की बढ़त आई, ये आपको क्या सिग्निफिकेंट लगती है? कैसे देखते हैं आप बाजार की स्थिति को?
2: देखिए, जब से हम पिछले कुछ सप्ताह

0: में जो हमने गिरावट देखी है बाजार में, और सिक्वेंशियली वो गिरावट हम देखते आ रहे हैं। ये अगर आप गिरते हुए बाजार के की इतिहास को देखें, ये
1: जी
0: कौन कौन से ऐसे वक्त रहे हैं जहां पे बाजार में गिरावट आई है और इस

0: ये वाला पीरियड है। पर अभी भी जो गिरावट हुई है, क्योंकि हम इतने ऊंचे स्तर पे थे, उतना नहीं हुआ है जितना वो जिन सालों के बारे में बात किया,
1: जी
0: 2008, 2010, उन टाइम्स में ऐसा नहीं हुआ, 2000 में जब .com बबल क्या कहा जाता था,
1: जी
0: तो
1: 2013 में टेपर टैंट्रम
0: हाँ
1: इस
0: जी, तो
1: जी
0: वो अभी वो टॉप 6 में हम आ गए हैं, जो काउंटडाउन होता है गानों गीतों का होता है, रेडियोज में आते हैं, तो उसमें तो आ गया। पर ये एक पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है। पर दूसरी बात ये है कि अब अगर हम आप इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखा जाए,
1: जी
0: तो हमें ये रियलाइज करना पड़ेगा कि स्टॉक्स जो हैं ज्यादातर शेयर बाजारों में दबाव में हैं। तो रिस्क, हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स को अगर, या शेयर्स को अगर आप हायर रिस्क इन्वेस्टमेंट कहते हैं, तो रिस्क लेने की जो एपेटाइट है, जो भूख है, जो आपका अर्ज है, वो पीरियोडिकली कम होता जा रहा है। हाँ, कई लोग हम इमीडिएटली कहेंगे कि आप देखिए अमेरिका में बढ़ रहा है और दूसरी जगह में बढ़ रहा है, वहाँ पे कारण है, फंडामेंटल रीजंस हैं, वहाँ पे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल्स आ रहे हैं वो काफ़ी मजबूत फाइनेंशियल्स हैं। तो फिर आपकी AI रिलेटेड बातें, पर ये हमें देखना पड़ेगा। अगर बॉन्ड मार्केट यील्ड्स के बारे में बात किए, दुनिया के सारे बॉन्ड बाजारों में बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जा रहे हैं, तो कई जगह में कई
1: जो स्टॉक मार्केट के बजाय अभी बॉन्ड मार्केट्स में ज्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं इन्वेस्टर्स.
0: बिल्कुल नहीं, वो क्योंकि वहां पे क्या हो रहा है कि यील्ड अगर बढ़ेगा तो आपका प्राइस घट रहा है,
1: घट रहा है.
0: इसका मतलब आपको उससे भी ज्यादा यील्ड वाले बॉन्ड चाहिए होंगे, तो अगर आप बेचना चाहेंगे तो फिर मुश्किल है। अगर आपके होल्डिंग्स में आपके फंड मैनेजर ने बॉन्ड्स ले रखे हैं, या तो आपने डेट फंड लिया है या किसी और में लिया है, तो उसके तो वैल्यू नीचे जा रहा होगा। पर अगर आप उसको मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं,
1: जी
0: बिल्कुल मतलब मान लीजिए 30, जैसे मान लीजिए अमेरिका के जो हैं वो ऑल टाइम हाईस में चल रहे हैं, तो 30 साल होल्ड करना पड़ेगा, तो जो 30 साल का व्यक्ति है वो 60 साल की उम्र तक वो होल्ड करेगा, ऐसा होता तो नहीं है, ठीक है ना। तो जो फाइनेंशियल एसेट्स हैं जो बाजार में ट्रेडेड होते हैं, वहां पे दबाव है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये दबाव तब तक रहेगा जो एक फंडामेंटल जो बिल्डिंग ब्लॉक है या जो इस्तेमाल होता है, कच्चे तेल के दाम, जब तक उसमें निश्चितता नहीं आएगी तब तक दबाव में रहेगा। कुछ देशों में कम रहेगा, जो लोग खुद आयात पे निर्भर नहीं करते और उनमें कम रहेगा। हम भारत जैसे अर्थव्यवस्था जहाँ पे हम ज्यादातर अमाउंट पे हम लोग आयात करते हैं, हम लोग हमारे ऊपर प्रेशर पड़ा रहेगा, तो वो आप कॉरपोरेट फाइनेंशियल्स में उसका इम्पैक्ट, हमें उसकी आशंका रहेगी। और आप पाएंगे
1: अब
0: कि
1: जब रिजल्ट्स आने शुरू होंगे.
0: थोड़ा बहुत इफेक्ट तो जरूर जरूर होगा। तो ये स्टॉक मार्केट, क्योंकि उसे लीड इंडिकेटर बोला जाता है, वो आगे से ही भापने की कोशिश करते हैं, आपको सिग्नल देते हैं, संकेत देते हैं कि कैसा आगे चल के होगा, उसको लीड इंडिकेटर, कई ऐसे इंडिकेटर्स हैं जो लीड इंडिकेटर्स माने जाते हैं, तो स्टॉक मार्केट को बोला जाता है। तो ये आप देखेंगे, ये जब तक तेल, कच्चे तेल के दाम जो है सब, अगर आप एक चीज की तरफ अगर
1: जी जी
0: आपको उंगली डालनी है, टू पॉइंट योर फिंगर एट वन, पुट योर फिंगर एट वन, तो वो कच्चे तेल के दाम, अगर ये कल स्थिर हो जाता है, आपको आइडिया हो
1: और जो
0: जाता है,
1: ज्यादा इम्पोर्टर नेशंस हैं उनको ज्यादा
0: बिल्कुल
1: इम्पैक्ट करता है ये.
0: कल कल अगर ये सॉर्ट आउट हो जाएगा ना, मैं आपको पूरे मतलब वैसे तो आपने प्रोग्राम से पहले डिस्क्लेमर दे ही दिया है, तो
1: जी
0: फिर भी मैं कहने के लिए, और मेरे से बहुत ज्यादा लोग डिसएग्री नहीं करेंगे, कि ऑटोमेटिकली आप देख पाएंगे कि पूरे माहौल में काफी परिवर्तन और फर्क आ जाएगा। तो ये बना रहे, जब तक रहेगा तो ये शॉर्ट टर्म रिलीफ रैली, पिवट वगैरह वगैरह,
1: जी
0: पर जो छोटे निवेशक हैं जो इस प्रोग्राम के सुनने वाले हैं, उनको वही काम करना है जो वो हमेशा करते आए हैं, नियमित रूप से निवेश करना, कोई नई चीजें नहीं करनी। जब मार्केट सीधी वर्टिकली ऊपर जा रही थी तब भी कुछ अलग नहीं करना था, एक्चुअली हम लोग सोचते हैं कि क्योंकि हम किताबें पढ़ते हैं, प्रोग्राम देखते हैं, हमें लगता है निवेश जो है कुछ उसमें कुछ खास करना पड़ता है। तो निवेश एक व्यायाम की तरह है, आपके डेली जो आप खाना खाते हैं,
1: जी
0: हेल्दी खाना खाते हैं उसकी तरह है, वो बोरिंग होना होता है।

0: ये नहीं कि उसमें कुछ खास चमत्कारी कुछ होता है, चमत्कारी नहीं होता, चमत्कारी लोग बोलते हैं, हम जैसे एक्सपर्ट आके हो सकते हैं
1: एक्सरसाइजिंग
0: ये
1: मसल,
0: जी, तो लोग ऐसी बात करेंगे
1: जैसे वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटीज भी है निचले दामों पर।
0: हाँ, पर वो उसके लिए आपके आप में वो मतलब जिगरा चाहिए जिसे कहते हैं कोलोकियल टर्म्स में, सो यू नीड टू हैव एन एपेटाइट फॉर दैट। तो ये हमें ध्यान रखना है कि इस ऐसे, और जाते जाते मैं इस बात को खत्म करते करते एक बात और बात कहूं कि ये हमने हमारे हमारे देश में शोध हुआ है कि आप मार्केट में जो ऐसी गिरावट आती है उसमें उसके बाद जब रिबाउंड होता है सबसे ज्यादा वेल्थ जो क्रिएट होते हैं, जो आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो इस रिबाउंड में होता है, क्योंकि आप और हम जैसे लोग, इवन सबसे ज्ञानी गुणी लोग भी पता नहीं कर सकते कि कौन सा कब जाके बॉटम मार्केट रीच करता है, इसलिए आपको इन्वेस्टेड होना पड़ता है। तो जैसे एक वोल्टेज स्टेबलाइजर वोल्टेज को स्टेबलाइज करता है, जितनी देर तक आप इन्वेस्टेड रहेंगे बाजार में निवेशित रहेंगे वो एक साल में ऊपर नीचे ज्यादा होगा, दो साल में थोड़ा कम होगा, आगे चल के बिल्कुल स्टेबल वोल्टेज की तरह हो जाता है
2: जी। एंड विद दैट लेट्स आल्सो मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टोरी फॉर दिस इवनिंग। इंडियाज इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 7.3% इन द सेकेंड क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2027, supported by resilient domestic demand and investment. According to the Finance Ministry's monthly economic review for September, the economy entered the second quarter of current fiscal from a position of strength after recording 7.8% growth in the first quarter. However, it cautioned that India cannot take its growth performance for granted as geopolitical polarization and disruptions across global supply chains intensify. Higher oil prices, tightening global financial conditions and trade uncertainty pose challenges to sustaining the growth momentum. The review highlighted that high frequency indicators for July to August suggest growth has continued into the second quarter, although at a more measured pace. So very quickly on this, Udin, projection has also said that at the current run rate of nearly $400 billion in total exports achieved in the first 5 months of 2026, the country's overall export value for the full financial year could reach approximately $1 trillion. So what could be driving this kind of growth? And also, we've been able to maintain a position for ourselves given the volatile global scenario. Just a quick comment on that.
0: One, I would say that I would guess that the fact that our the value of the rupee has gone down would have made us a lot of our exports price competitive. I don't have access to any study, but people have already started talking about that this is one possibility. It's a pretty sharp fall in the value of the rupee, and it would have actually made a difference in many of the places where we compete on the basis of price with our competitors. That's
1: for
0: number
1: sure.
0: One. Number two is we have been diversifying our basket.
2: Mm-hmm.
0: Okay, and lot of some our products have become high value added, like mobile phones and stuff like that, electronics. So they're very high value added. Second is things like petroleum related stuff where the prices are going up. So these would have added a kicker out there. Last but not the least would be these trade agreements. Some of these things must be coming into play. So they haven't come into play all that much in the level at levels that we would like. But in the next 6, 7, maybe 8 months, we will see those benefits coming in and, you know, smart entrepreneurs catching in.
2: It's kind of laying the groundwork for future prosperity.
1: उदय, आपको लगता है कि करंट स्थिति में ब्रीफली क्या लगता है आपको, जो ग्रोथ पर भी जैसा कि इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि काफी है चुनौतियां हैं, एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन के लिए भी चुनौतियां, जब क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि आरबीआई के लिए जो अब मंडे से वेंसडे तक उनकी पॉलिसी मीटिंग होने वाली है, एक बहुत मुश्किल फैसला है?
0: मुश्किल फैसला तो है, क्योंकि आपने FCNR के जो नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं वहां से जबरदस्त आपने कलेक्शन किया, तो इसका मतलब बहुत लिक्विडिटी थी, आपने गवर्नमेंट ओपन मार्केट ऑपरेशन करके वो लिक्विडिटी सक आउट किया है, पर फिर भी आपको देखना पड़ेगा कि सिचुएशन कहां पे है।
1: तो इंटरेस्ट रेट्स के लिए क्या आपको लगता है कि किस तरह का डिसीजन?
0: देखिए, ज्यादातर लोगों का मानना है कि जैसे फेड है वैसे ही आरबीआई रेट हाइक करेगी, अब वो कब करेगी और हमारे उस पर कितना प्रेशर है ये तो आरबीआई वो कर पाएंगी, पर मुझे लगता है कि और ज्यादातर

0: लोगों का मानना है कि एक या दो रेट हाइक्स शायद ऑन द कार्ड्स हैं. वो कब आएगा नोबडी नोज, बट
1: यस
0: हम उम्मीद कर सकते हैं.
1: अब अगली खबर लेते हैं. सितंबर में भारत के विनिर्माण क्षेत्र में तेजी आई है. नए ऑर्डर और उत्पादन में वृद्धि के चलते इस क्षेत्र का क्रय प्रबंधक सूचकांक पीएमआई 7 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया. एचएसबीसी इंडिया विनिर्माण पीएमआई अगस्त के 52.8 से बढ़कर सितंबर में 55.1 हो गया. वहीं दूसरी तिमाही का औसत पीएमआई 53.8 रहा. रिपोर्ट में कहा गया है कि मजबूत घरेलू और वैश्विक मांग से बिक्री और उत्पादन बढ़ने के बल पर भारत का फैक्ट्री क्षेत्र बीती तिमाही में मजबूती पर बंद हुआ. मांग में बढ़त व्यापक थी. इलेक्ट्रॉनिक, खाद्य, दवा और कपड़ा उत्पादों में तेजी से नए व्यापार में वृद्धि आई. बहुत ही उत्साहजनक आंकड़े हैं ये. सेल्स और प्रोडक्शन दोनों में इतनी जो मजबूती बनी हुई है, आपको लगता है कि हमारे जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं बाजार में, वो भी इन जो आंकड़े हैं उनका संज्ञान लेते हैं?
0: बिल्कुल लेना चाहिए. और देखिए, अगर 7% से अगर देखिए, एक एक और आर्गुमेंट है
1: जी.
0: जो, अगर 7% से अगर आपकी जीडीपी ग्रो करती है, आप ये मान के चलते हैं, और 4 या 4.5% इन्फ्लेशन करते हैं, तो आपके जो लिस्टेड कंपनीज हैं उनके तो 11.5% तो वैसे ही ग्रोथ नॉमिनल टर्म्स में आप देख रहे हैं.
1: जी
0: ये ग्रोथ आपको कहाँ पे, कौन सा दूसरा इन्वेस्टमेंट सोर्स आपको देगा? तो
1: जी
0: आपको कई बार ना ऐसे इस तरीके से थंब रूल्स, ऑल्दो दिस इज नॉट अ वेरी कल्चर्ड और वेरी इवॉल्व्ड आर्ग्यूमेंट, पर अगर आप थंब रूल से देखें, मतलब बैक ऑफ द एनवेलप करें, तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पे पोटेंशियल है. क्योंकि जो अगर सब आपके सबसे बेहतरीन जो कंपनीज हैं वो इकोनॉमी के उनकी वृद्धि दर के को मैच तो करेंगी.
1: जी
0: और अगर ऐसा होता है, टैक्स के बाद आपका जो रिटर्न आता है, इन्फ्लेशन के बाद जो रिटर्न आता है, वो तो नेट पॉजिटिव जा रहा है और वेरी हेल्दी पॉजिटिव आ रहा है.
1: इनफैक्ट जो आप बोल रहे हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक मजबूती दिखाई दे रही है धरातल पर, उसका एक और प्रमाण है वस्तु और सेवा कर जीएसटी संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष सितंबर माह में कुल 14.7% की वृद्धि दर्ज की गई और ये 2,03,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा. एकीकृत जीएसटी संग्रह 1,20,000 करोड़ रुपए से अधिक रहा. घरेलू गतिविधियों से प्राप्त सकल जीएसटी राजस्व में 10% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई और ये लगभग 1,38,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. वहीं आयात से प्राप्त संग्रह में लगभग 26% की वृद्धि दर्ज की गई और ये 65,525 करोड़ रुपए तक पहुंच गया. और आइए अब रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का. एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 225 3.3% के उछाल में रहा और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी में 2% की बढ़त दर्ज हुई. तो बहुत डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रही है वर्ल्ड मार्केट्स में. अगर हम ये जापान का जैसे देखें, दक्षिण कोरिया का देखें, तो आज परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है. तो कैसे आप इसको आंकते हैं?
0: देखिए, जापान के अपने चैलेंजेस हैं, वहां पे मुद्रास्फीति है, स्पेंडिंग को लेकर चिंताएं हैं. वहां पे साउथ कोरिया में एआई रिलेटेड, चिप रिलेटेड बूम हुआ है और वहां पे रनअवे ग्रोथ हुआ है. तो ये जो हालात हैं ये हमेशा रहते नहीं है. कई लोग मैं देखता हूँ सोशल मीडिया में कमेंट्री देखता हूँ, जैसे पता नहीं क्या हो गया है. तो ये मार्केट्स वन वे, एक ही लेन नहीं है
1: जी.
0: मार्केट्स गिरती भी हैं, तो पता नहीं ये
1: मार्केट स्पेसिफिक.
0: हाँ, अगर गिरेगी नहीं तो आपका एवरेज कॉस्ट कैसे बनेगा और फिर आप मुनाफा कैसे करेंगे? जितना महंगा आप खरीदेंगे आपको उतना ही आगे, अगर बहुत महंगे में खरीदते हैं आपको जो 3 साल में आप ब्रेक इवन करते हैं वो 4 साल में करेंगे. तो कई बार डाउनवर्ड मूवमेंट आपके हक में होता है. तो ये कुछ बातें हैं, ऑब्वियस बातें हैं, जो थोड़ा सा ऐसे मौकों में ख्याल रखना होता है.
2: And let's also take a look at the next story. India has cautioned against treating legitimate national measures to protect food security as the weaponization of food. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal made the distinction during a session of the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, United States. Goyal highlighted that the shared objective must be to ensure that food remains a source of security, stability and cooperation. Chief Economic Advisor V. Anant Nageshwaran today said that the government needs to encourage households to commit a larger share of their savings to long-term pension products, as pension and insurance assets remain a relatively small part of household savings. He made these remarks while speaking virtually at an event

सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल सिर्फ और सिर्फ 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। एक बार फिर से मैं रितिका आप सभी का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम है गीत मेरे मनमीत।

तो दोस्तों, गीत मेरे मनमीत में आज बस इतना ही अंजू आ चुकी है निशिगंधा लेकर स्टूडियो में। छोड़े जाती हूँ आप सभी को उन्हीं के साथ, और अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश विश्व के कई हिस्सों में व्याप्त युद्ध और संघर्ष के माहौल में

और अधिक प्रासंगिक हो गया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने देश में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों का वैश्विक समुदाय व्यापक रूप से सम्मान करता है। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में भी बदलाव किया है। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के कई सुधार शुरू किए हैं। परिचालन दक्षता और कामकाज सुगमता बढ़ाने के उपायों की जानकारी देते हुए नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि व्यापक बदलाव का उद्देश्य कामकाज डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उच्चतम सुरक्षा मानक के साथ उत्तरदायी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पीआईबी इम्फाल के अपर महानिदेशक डॉ एंगम पामे, दूरदर्शन केंद्र आइजोल के निदेशक समाचार नामपिबो मारिनमाई और केंद्रीय संचार ब्यूरो आइजोल के बहुकार्य कर्मचारी एच लियानवेला के दुखद निधन पर शोक व्यक्त किया है। श्री वैष्णव ने कल एक सोशल मीडिया पोस्ट में उनके शोक संतप्त परिवारों, मित्रों और सहकर्मियों के प्रति संवेदना व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अलशमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए एक विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य पदकों सहित 66 पदक लेकर 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

दोस्तों, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। समय हुआ है 12:11 और 16 सेकंड। मैं हूं अंजू आपके साथ और कार्यक्रम है निशिगंधा। स्वीकार कीजिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।

लाख खूबसूरत सही ये दुनिया, तो हम क्या करें? लाख खूबसूरत सही ये दुनिया, तो हम क्या करें? हमारी आंखों को तो बस तेरा दीदार ही पसंद है।

गए थे महफिल में पर होश गंवा बैठे, गए थे महफिल में पर होश गंवा बैठे, तुझसे क्या मिले, हम अपना हर कल ऐसे ही भुला बैठे।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

हम अपने उन सभी श्रोताओं का भी स्वागत करते हैं जिन्होंने अभी अभी ट्यून किया है आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। कार्यक्रम है निशिगंधा और मैं हूं आपकी दोस्त अंजू।

धड़कने बेकाबू होकर बस तुम्हारा ही नाम तो लेती है, धड़कने बेकाबू होकर बस तुम्हारा ही तो नाम लेती है। मेरी आंखें हर चेहरे में बस तुम्हें ही ढूंढती हैं। न मिलूं तुमसे तो ये दिल बहुत घबराता है, जानते हो कैसे? जैसे सूखी जमीन बूंद बूंद बरसात को तरसती है।

तुम्हें पता है, इस जमाने की कोई भी चीज मुझे सुकून नहीं दे सकती सिवाय तुम्हारे। तन्हाइयों के साए में जब भी दिल घबराता है, ये दिल धड़कना भूलकर बस तुम्हें ही पुकारता है।

दोस्तों, कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 1:10 पर फिर से आपसे मुलाकात होगी। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि महात्मा गांधी का शांति और अहिंसा का संदेश विश्व के कई हिस्सों में व्याप्त युद्ध और संघर्ष के माहौल में और अधिक प्रासंगिक हो गया है। गांधी जयंती की पूर्व संध्या पर अपने संदेश में राष्ट्रपति मुर्मू ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों का वैश्विक समुदाय व्यापक रूप से सम्मान करता है। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। यातायात पुलिस ने वाहन चालकों से धैर्य बनाए रखने, यातायात नियमों का पालन करने और मौके पर तैनात यातायात कर्मियों का सहयोग करने की अपील की है। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ अक्टूबर से दिसंबर 2026 के लिए निजी कॉरपोरेट क्षेत्र कैपेक्स निवेश आशय कैपेक्स 2026 पर भविष्योन्मुखी सर्वेक्षण कर रहा है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय ने कहा है कि यह सर्वेक्षण विशाल निजी कॉरपोरेट क्षेत्र की कंपनियों द्वारा नियोजित और क्रियान्वित पूंजी पर व्यय पर व्यापक और समयबद्ध जानकारी प्रदान करेगा। नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय हवाई अड्डों पर काम करने वाले लोगों के लिए विमानन सुरक्षा प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाने के कई सुधार शुरू किए हैं। परिचालन दक्षता और कामकाज सुगमता को बढ़ाने के उपायों की जानकारी देते हुए नागर विमानन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने कहा कि व्यापक बदलाव का उद्देश्य कामकाज डिजिटल बनाना, प्रक्रियाओं का सरलीकरण और उच्चतम सुरक्षा मानक के साथ उत्तरदायी व्यवस्था की ओर बढ़ना है। संयुक्त अरब अमीरात यूएई के अटॉर्नी जनरल हमद सैफ अल शमसी ने फ्लाई दुबई की उड़ान FZ-1073 से जुड़ी घटना की जांच के लिए विशेष टीम का गठन करने का निर्देश दिया है। इस घटना के कारण विमान को सऊदी अरब में आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी थी। फ्लाई दुबई की यह उड़ान दुबई से इसराइल के तेल अवीव जा रही थी। इसी दौरान सह पायलट ने विमान को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया और उसे रोकने की कोशिश कर रहे कैप्टन स्मिथ मछार पर चाकू से हमला किया। घायल कैप्टन स्मिथ मछार की हालत स्थिर है और वे तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। यह जानकारी संयुक्त अरब अमीरात यूएई में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि देश को कैप्टन स्मिथ मछार पर गर्व है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण गुरदासपुर, चंडीगढ़, मुजफ्फरनगर, उदयपुर और नालिया में वर्षा हो रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with principles of pro-people, proactive and good governance. The Prime Minister said the country is moving rapidly on the reform express and the institutions that conduct examination must also work on reforms that are the need of the country. Addressing the centenary celebrations of Union Public Service Commission UPSC at Bharat Mandapam in New Delhi yesterday, the Prime Minister stressed on the need to bring young people into public services who are drawn not to public office but to public service. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's food security measures and reaffirmed commitment to rules-based multilateral trading system. Participating in the opening day of the G20 Trade Ministers meeting in Milwaukee, Wisconsin, Mr. Goyal thanked the U.S. G20 presidency for placing food at the center of the discussions. He said, ensuring food security for all and creating greater opportunities for farmers are central to India's policy. He reiterated that food must never be used as an instrument of pressure against any country. Mr. Goyal pointed out that countries of the global south are among the most adversely impacted by the food, fuel and fertilizer crisis caused by global conflicts. The ministers reached consensus on the outcome document, G20 statement on the weaponization of food through coercive trade actions and expressed their intent to continue cooperation on the subject. Captain Smith Mutcher, who was injured in the Fly Dubai flight incident, is in stable condition and recovering well, said India's ambassador to the UAE, Dr. Deepak Mittal. Speaking exclusively to Prasad

दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समय हुआ है 1:11 और 8 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम गीत सुहाने का। मैं एक बार फिर से अंजू करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सुनेंगे इस घंटे बहुत ही मधुर गीत। एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार।

भूल जाएंगे हम इस जमाने के सारे सितम, भूल जाएंगे हम इस जमाने के सारे सितम, बस एक बार महफिल में तुम पुकारो तो सही।

ढल रही है ये रात तुम्हें याद करते करते, ढल रही है ये रात तुम्हें याद करते करते, और मेरा दिल अब भी तेरी यादों की महफिल में गिरफ्तार है।

रात से कहो रुक जाए आज जरा ठहर कर, रात से कहो रुक जाए जरा आज ठहर कर, गुजर ना जाए ये लम्हा यूं ही संवर कर। बड़ी मन्नत से मिली है ये घड़ी, बड़ी मन्नत से मिली है ये घड़ी, देख लेने दो तुम्हें जी भर के ऐ मेरे हमसफर।

न जाने क्यों एक डर सा लगा रहता है तुम्हारे दूर जाने का, न जाने क्यों एक डर सा रहता है तुम्हारे दूर जाने का। शायद अब इस दिल को आदत नहीं रही तुम्हारे बिना मुस्कुराए।

चलो कहीं दूर चलें हम इन घटाओं के साथ, चलो कहीं दूर चलें हम इन घटाओं के साथ, थाम कर उम्र भर के लिए एक दूजे का हाथ, जहां रास्ते में सिर्फ सुहानी सी धुंध हो और कभी खत्म ना हो हमारी ये गुफ्तगू की रात।

दोस्तों, अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। 2:10 पर फिर से आपसे मिलेंगे कार्यक्रम रात सुरमई लेकर। कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं, लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी होगी। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत की बढ़ती ऊर्जा आवश्यकताओं को देश में उपलब्ध ऊर्जा संसाधनों के अधिक विकास पर जोर देकर उपलब्धता, वहनीयता और संधारणीयता के माध्यम से पूरी की जानी चाहिए। श्री पुरी ने नई दिल्ली में केंद्रीय गोवर्धन योजना का शुभारंभ करते हुए ये बात कही। कनाडा के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री मनिंदर सिद्धू ने कहा कि कनाडा और भारत ने अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार लगभग 30 अरब डॉलर से बढ़ाकर 70 अरब डॉलर करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने कहा कि दोनों देश व्यापक व्यापार समझौते पर वार्ता आगे बढ़ा रहे हैं। श्री सिद्धू ने कहा कि वार्ता का 5वां दौर सोमवार को ओटावा में शुरू होगा, जिसमें दोनों पक्ष आगामी महीनों में वार्ता को अंतिम रूप दे सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने तेलंगाना के मेदचल मलका

राजगीर जिले के बचूपल्ली स्थित एक निर्माण स्थल पर उत्तर प्रदेश के 12 सदस्यों के एक परिवार को लगभग एक वर्ष तक बंधुआ मजदूर बनाकर रखे जाने की मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने तेलंगाना के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, मिर्चल मलकाजगिरी के जिला मजिस्ट्रेट और साइबराबाद के पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी कर इस मामले में 4 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में बचाए गए सभी बाढ़ पीड़ितों की स्थिति और उनके वर्तमान ठिकाने, उनकी तत्काल सुरक्षा, आश्रय, भोजन और चिकित्सा देखभाल के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा है कि इन संशोधनों का उद्देश्य पात्र संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी के बाद के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। सरकार ने 15 अक्टूबर से चीनी व्यापारियों के लिए भंडारण की अवधि को घटाकर 15 दिन कर दिया है। भंडारण की सीमा भी 1000 क्विंटल तय की गई है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने कहा कि त्योहारों के मौसम में जमाखोरी रोकने और उपभोक्ताओं को आसानी से चीनी की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने चीनी भंडारण के नियमों में बदलाव किया है। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप में भारत का अभियान 7 अक्टूबर को केपटाउन में ग्रुप ए में पिछले चैंपियन ऑस्ट्रेलिया के साथ मुकाबले से शुरू होगा। 10 अक्टूबर को भारत जोहान्सबर्ग के वंडर्स स्टेडियम में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेगा। शुरुआती दो मुकाबलों के बाद भारत 14 अक्टूबर को सेंचुरियन में अफगानिस्तान से खेलेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

समय हुआ है 2:11 और 2 सेकंड। ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। मैं अंजु एक बार फिर से करती हूँ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे बहुत ही मधुर गीत। पहला गीत मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिल्म प्रेम रोग से, जिसे गाया है सुरेश वाडकर के साथ। लता मंगेशकर ने और संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

सीने में जो धड़कता है अब वो मेरा दिल दिल नहीं तेरा साया है। तुम अपनी बेइंतहा मोहब्बत से उसे खुद में समा चुके हो।

दिल से जुदा नहीं कर सकते ये वादा है हमारा, दिल से जुदा नहीं कर सकते ये वादा है हमारा। तुम जहां भी जाओगे पाओगे वहां पर सिर्फ और सिर्फ अक्स हमारा।

मेरी आंखों में छिपे इंतजार को भी कभी पढ़कर तो देख, मेरी आंखों में छुपे इंतजार को भी कभी पढ़कर तो देख, ये आज भी सिर्फ तेरे नाम पर ही ठहरती हैं।

दोस्तों, ये कार्यक्रम का आखिरी गीत है। अभी होंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और अगला कार्यक्रम हमरा ही लेकर आएंगे अर्चित पांडे। मुझे अनुमति दीजिए, जल्द ही मिलूंगी किसी न किसी मोड़ पर। अपना और अपने अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराएं लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इस अवसर पर पूरे देश में और विदेशों में स्थित दूतावासों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित होगी। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मनाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में कांग्रेस केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान रिवॉच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से आवाज से लिपि तक पूर्वोत्तर भारत में भारतीय लिपि वर्तनी के विकास के माध्यम से मातृभाषाओं का पुनरुद्धार परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत के लिए इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने म्यूचुअल फंड, बीमा कंपनियों और पेंशन फंडों द्वारा बैंकिंग कंपनियों में प्रमुख हिस्सेदारी की अधिग्रहण अनुमोदन प्रक्रिया सरल बनाने के संशोधित निर्देश जारी किए हैं। आरबीआई ने कहा कि इन संशोधन

का उद्देश्य पात्र संस्थागत निवेशकों द्वारा प्रमुख हिस्सेदारी के बाद के अधिग्रहण के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। फ्लाई दुबई की उड़ान से जुड़ी घटना में घायल हुए कैप्टन स्मिथ मचार की हालत स्थिर है और वे स्वस्थ हो रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात में भारत के राजदूत डॉ दीपक मित्तल ने जानकारी दी। प्रसार भारती से विशेष बातचीत में राजदूत मित्तल ने बताया कि उन्होंने संयुक्त अरब अमीरात में कैप्टन मचार और उनके परिवार से मुलाकात की और पायलट मचार को अच्छी स्थिति में पाया। डॉ मित्तल ने कहा कि कैप्टन को अच्छी चिकित्सा मिल रही है और भारतीय दूतावास संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश में आज मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की है। विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वर्षा की संभावना जताई है। केरल, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में आज गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल के साथ। 3:11 हो चुके हैं और अब रोजाना की तरह समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है हमराही। और आज के इस प्रोग्राम में मैं हूं आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम एक बहुत ही प्यारे से गीत के साथ जिसके बोल हैं जीवन साथी साथ में रहना।

जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा, जीवन है तो कुछ ना कुछ तो चलता ही रहेगा। बेचैनियों में पड़कर इतना बेचैन ना होइए, खुशियों को दिल खोलकर दिल में ही संजोइए। 3:20 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। छोड़िए बेचैनियां सारी, अब जरा सुकून की तलाश में निकलिए। बहुत दौड़ लिए बेचैनियों के साथ, अब जरा आराम से ही चलिए। बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी जिंदगी सारी, बेकार की उलझनों में खत्म हो जाएगी ये जिंदगी सारी। मेरी इन बातों को थोड़ा दिमाग में रखिए। पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा, पहुंच ही जाएंगे जहां पहुंचना होगा। दौड़ भाग छोड़कर अब थोड़ा आराम से ही चलिए। 3:27 हो चुके हैं, आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही मेरे यानी अर्चित के साथ।

कैसे चुनें सही बीज, कैसे करें फसलों की उचित देखभाल, कीटनाशकों का कैसे करें संतुलित इस्तेमाल, कृषि से जुड़े हर पहलू पर लीजिए हमारे कृषि एक्सपर्ट से सलाह, वो भी लाइव। सुनिए प्रोग्राम हेलो फार्मर्स आकाशवाणी के FM गोल्ड पर हर सोमवार शाम 5:30 बजे। प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

तुझे देखा, तुझे चाहा, तुझे पूजा मैंने, बस इतनी खता है मेरी, और खता क्या।

सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। सुकून में रहते हैं वो लोग जिन्हें थोड़ी भूलने की आदत होती है। अक्सर बहुत परेशान करती हैं कुछ भी ना भूल पाने की ये आदतें। कुछ चीजें भूलकर दिलो दिमाग को थोड़ा खाली भी करना चाहिए। कुछ चीजें भूलकर दिलो दिमाग को थोड़ा खाली भी करना चाहिए। फुल हो जाए मेमोरी तो फोन भी ठीक से काम नहीं करते। 3:42 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही, मेरे यानी अर्चित के साथ।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिसके बोल थे, ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें। घर बाहर से सुंदर हो तो जरूरी नहीं अंदर से भी अच्छा हो। इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए, इंसान दिल से अच्छा होना चाहिए। सुंदरता का क्या है, सुंदरता तो मेकअप से भी आ जाती है। 3:48 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम हमराही।

मिजाज इंसान का बड़ा ही निराला है। कोई काम हो गया तो मैंने कर दिया, और जो नहीं हुआ तो भगवान की मर्जी पर डाला है।

3:58 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमराही। अब से कुछ ही देर बाद आप सुन सकेंगे हिंदी में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विनय सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को सिर्फ एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। इस अवसर पर पूरे देश में और विदेशों में स्थित दूतावासों में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा आयोजित होगी। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मनाएगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में केंद्र में सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजयघाट पर आयोजित कार्यक्रमों के मद्देनजर विशेष यातायात व्यवस्था लागू होगी। यह व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देशभर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को मजबूत करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। कौटिल्य इकोनॉमिक कॉन्क्लेव का 5वां संस्करण कल शनिवार से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें करीब 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान रिवॉच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से आवाज से लिपि तक पूर्वोत्तर भारत में भारतीय लिपि वर्तनी के विकास के माध्यम से मातृभाषाओं का पुनरुद्धार परियोजना कार्यक्रम की शुरुआत के लिए इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हरियाणा के पानीपत जिले में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वैध अनापत्ति प्रमाण पत्र के बिना बड़ी संख्या में ब्लीचिंग यूनिट संचालित होने संबंधी मीडिया रिपोर्ट पर स्वतः संज्ञान लिया है। खबर में बताया गया है कि इन इकाइयों में काम करने वाले श्रमिकों को जूते, दस्ताने या कोई अन्य सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए जा रहे। आयोग ने कहा कि श्रमिक इसके कारण खतरनाक रसायनों के सीधे संपर्क में आ रहे हैं। आयोग ने इस मामले में पानीपत के जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। निजी अमेरिकी एरोस्पेस निर्माता और अंतरिक्ष परिवहन सेवा कंपनी स्पेसएक्स ने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को कक्षा में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित करने के कुछ समय के बाद केप कैनरवेल स्पेस फोर्स स्टेशन के लैंडिंग जोन 40 में अपने फाल्कन 9 के प्रथम चरण के बूस्टर सफलतापूर्वक उतार लिए। इसके साथ ही नासा के क्रू 13 मिशन की शुरुआत हो गई है। बांग्लादेश में आगामी दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हिंदू समुदाय 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की तैयारी में जुटा है। बांग्लादेश सरकार ने इस वर्ष दुर्गा पूजा के लिए 5 दिन का अवकाश घोषित किया है। जापान एशियाई खेलों में कल भारत ने 2 रजत और 4 कांस्य पदक जीते। पदक तालिका में भारत 10 स्वर्ण, 23 रजत और 33 कांस्य सहित 66 पदकों के साथ 8वें स्थान पर है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने एशियाई खेल में शानदार प्रदर्शन करने वाले भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Tanvi Gupta. Prime Minister Narendra Modi has said 21st century India is moving forward with the principles of pro-people, proactive and good governance. He said the country is progressing rapidly on the reform express and institutions conducting examinations must also undertake reforms in line with the country's needs. Addressing the centenary celebrations of the Union Public Service Commission at Bharat Mandapam in New Delhi, the Prime Minister stressed the need to bring young people into public services who are driven not by public office but by public service. Union Commerce and Industry Minister Piyush Goyal has highlighted India's food security measures and reaffirmed its commitment to a rules-based multilateral trading system. Participating in the G20 trade ministers meeting in Milwaukee, Wisconsin, Mr. Goyal said ensuring food security for all and creating greater opportunities for farmers are central to India's policy. He said food must never be used as an instrument of pressure against any country. Mr. Goyal noted that countries of the global south are among those most adversely affected by food, fuel and fertilizer crisis arising from global conflicts. On the sidelines of the meeting, Mr. Goyal held separate meetings with his UK and Australian counterparts. He reviewed the implementation of the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement with UK Secretary of State Jonathan Reynolds. Mr. Goyal discussed expediting negotiations on the India-Australia Comprehensive Economic Cooperation Agreement with Australian Minister for Trade and Tourism Don Farrell. Captain Smith Mutcher, who was injured in the Fly Dubai flight incident, is in stable condition and recovering well. India's ambassador to the UAE, Dr. Deepak Mittal, said in an exclusive interview with Prasar Bharati that he met Captain Mutcher and his family in the UAE and found the pilot in good spirits. He said Captain Mutcher is receiving good medical care and the Indian embassy remains in continuous contact with the UAE authorities. Meanwhile, President Draupadi Murmu, Vice President C.P. Radhakrishnan and Prime Minister Narendra Modi have praised Captain Mutcher for his courage in preventing a major tragedy. The nation is paying homage to father of the nation, Mahatma Gandhi, on his 157th birth anniversary today. In her message on Gandhi Jayanti, President Draupadi Murmu said Mahatma Gandhi's message of peace and non-violence has become even more relevant amid wars and conflicts in several parts of the world. She paid tribute to Mahatma Gandhi and said his life and ideals are widely respected across the world. She expressed confidence that India is advancing towards the goal of Viksit Bharat by 2047. A survey Dharma Prarthana Sabha will be held at Mahatma Gandhi's Samadhi at Rajghat in New Delhi. Traffic police has issued a traffic advisory in view of Gandhi Jayanti at Rajghat and the 122nd birth anniversary of former Prime Minister Lal Bahadur Shastri at Vijayghat today. Special Gram Sabhas are being convened across the country today on Gandhi Jayanti to deliberate on governance reforms, strengthening panchayats and improving public services in rural areas. The Rural Development Ministry said the meetings will also mark the launch of the People's Plan Campaign 2026-27, Sabki Yojana Sabka Vikas. In Mizoram, three persons, including PIB Imphal Additional Director General Dr. Ingam Pame, DD News Aizawl Director Nampibo Marinmai, and CBC Aizawl MTS H. Lianvela were killed in a road accident near Shial Souk yesterday. The car in which they were travelling fell into a gorge. Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnav expressed condolences to their bereaved families. The Defence Ministry also mourned the death of Nampibo Marinmai, who had served as PRO Defence at DPR Headquarters and Director DD News Mizoram. At the Asian Games in Japan, India's medal tally has risen to 66, including 10 gold, 23 silver and 33 bronze medals. The men's hockey team defeated arch rivals Pakistan 4-3 in a thrilling semi-final to reach the final, while the cricket team beat Sri Lanka by 124 runs to book a place in the gold medal match. In wrestling, Nitish Swach won silver in the men's 97kg Greco-Roman category. He lost 0-4 to Japan's Yuri Nakazato in the final. And that is the end of this news bulletin.

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 4:11 हो चुके हैं और ये समय रहता है हमेशा की तरह आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है अरुणिमा। और एक बार फिर से मैं ही हूं आपके साथ आपका दोस्त अर्चित। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये प्रोग्राम किशोर कुमार जी की आवाज में एक बहुत ही बेहतरीन से गीत के साथ।

थोड़ी तहजीब से बात किया कीजिए हर किसी से, थोड़ी तहजीब से बात किया कीजिए हर किसी से, क्योंकि हर समय बदतमीजी आपकी परवरिश पर सवार उठाती है। 4:16 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

वादियां तो कल भी हसीन थी और आज भी हसीन ही हैं। वादियां तो कल भी हसीन थी और आज भी हसीन हैं। फर्क तो सब हमारी सोच का है। इसी बरसात में किसी को हर तरफ हरियाली ही हरियाली नजर आती है और किसी को हर तरफ सिर्फ कीचड़ ही कीचड़। 4:23 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल के साथ। सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा मेरे यानी अर्चित के साथ।

कुछ भौतिक सुख सुविधाओं के खातिर अब दिन रात बेचैन हुए हैं। कुछ भौतिक सुख सुविधाओं के खातिर अब दिन रात बेचैन हुए हैं। सुख चैन से रहेंगे घर में, इस चक्कर में अब और भी बेचैन हुए हैं। ख्वाहिशों का कोई अंत नहीं, काश

ये पहले पता चल जाता हमको हर ख्वाहिश के चक्कर में खुद से कितने दूर हुए हैं, आधी जिंदगी बीत गई फिर भी सुख चैन से महरूम रहे हैं। छोड़ दी जब रब पर सारी चिंता, तब जाकर कुछ सुकून में रहे हैं।

आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, आदतें भी जरा सोच समझ कर ही बनाइए, क्योंकि जिंदगी गुजर जाती है पर ये आदतें नहीं बदलती, और जब आदतें बदलती हैं तब फिर जिंदगी नहीं बचती। ये आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल है। 4:35 हो चुके हैं। कार्यक्रम अरुणिमा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जिसमें मैं हूं आज आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित। तो आइए इस प्रोग्राम में इसी तरह आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक और प्यारा सा गीत।

उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, ता उम्र भटकते रहे मंजिलों की तलाश में, मिली जब मंजिल तब पता चला असली सफर तो अब शुरू हुआ है, अभी तक तो सिर्फ भटक ही रहे थे। 4:46 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम अरुणिमा।

छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। छोटी छोटी खुशियों में ही खुश होना अब सीख लीजिए। किसी बड़ी खुशी का इंतजार अब ना कीजिए। कोई बड़ा गम नहीं है इसी बात की खुशी मनाइए। कोई बड़ा गम नहीं है इसी बात की खुशी मनाइए। गम है दुनिया में कितने हैं गमगीन यहाँ पर। गम है दुनिया में कितने हैं गमगीन यहाँ पर। विश्वास ना हो तो किसी से भी जाकर पूछ लीजिए। 4:53 हो चुके हैं। अभी तक आप सुन रहे थे कार्यक्रम अरुणिमा। लीजिए सुनिए इस प्रोग्राम का आखिरी गीत मेरे यानी अर्चित के साथ।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अलका सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश रिफॉर्म एक्सप्रेस पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और परीक्षा आयोजित करने वाली संस्थाओं को भी ऐसे सुधारों पर काम करना चाहिए जिनकी देश को जरूरत है। नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के शताब्दी समारोह में श्री मोदी ने कहा कि परीक्षा को केवल एक आयोजन नहीं माना जाना चाहिए क्योंकि यह युवाओं के भविष्य से जुड़ी है।
1: हमें प्रो पीपल प्रो एक्टिव गुड गवर्नेंस के पैरामीटर्स के आधार पर देश को वो प्रोफेशनल्स देने हैं जिनमें गरीब की तकलीफ समझने की संवेदना हो, जो युवा जोश के साथ खुद आगे बढ़कर काम करे, जो इनोवेटिव तरीके से कठिन समस्याओं का रास्ता निकाले, जो कानून का पालन कराए लेकिन ये भी परख सके कि उस कानून से लोगों का जीवन आसान हो रहा है या फिर वो रुकावट बन रहा है।
0: राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 157वीं जयंती पर आज पूरा देश उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देशभर में और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया जाएगा। देश आज पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती मना रहा है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद शास्त्री जी ने उत्तर प्रदेश और बाद में केंद्र सरकार में कई महत्वपूर्ण पद संभाले। दिल्ली यातायात पुलिस ने बताया है कि गांधी जयंती और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 122वीं जयंती के अवसर पर आज राजघाट और विजय घाट पर आयोजित कार्यक्रमों को देखते हुए विशेष यातायात व्यवस्था लागू रहेगी। ये व्यवस्था सुबह 5 बजे से 11 बजे तक प्रभावी रहेगी। गांधी जयंती के अवसर पर आज देश भर में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। इन सभाओं में ग्रामीण भारत में पंचायती राज को सुदृढ़ करने, सार्वजनिक सेवाओं में सुधार लाने और ग्रामीणों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे प्रशासनिक सुधारों पर चर्चा होगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने बताया कि इन विशेष ग्राम सभाओं के साथ ही जन योजना अभियान 2026-27 सबकी योजना सबका विकास की भी शुरुआत होगी। इस अभियान के अंतर्गत ग्राम पंचायतें वित्तीय वर्ष 2027-28 के लिए जन भागीदारी और तथ्यों के आधार पर अपनी विकास योजनाएं तैयार करेंगी। ये जन योजना अभियान वर्ष 2018 से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चलाया जा रहा है ताकि पंचायतें समावेशी और सहभागी विकास योजनाएं बना सकें। पांचवा कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन कल से नई दिल्ली में शुरू होने जा रहा है। इस बार सम्मेलन का मुख्य विषय बदलाव के दौर में लचीलापन रखा गया है। वित्त मंत्रालय के अनुसार इस सम्मेलन में 180 से अधिक नीति निर्माता, अर्थशास्त्री, शिक्षाविद, वित्तीय विशेषज्ञ और वैश्विक विचारक एक मंच पर जुटेंगे। इनमें लगभग 30 देशों के 80 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस सम्मेलन के दौरान कई मुख्य सत्र, समानांतर चर्चाएं और गोलमेज बैठकें होंगी। इन बैठकों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को आकर्षित करने और दीर्घकालिक निवेश के लिए घरेलू पूंजी जुटाने जैसे प्रमुख विषयों पर मुख्य चर्चा होगी। पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख सांस्कृतिक अनुसंधान संस्थान रीवॉच इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के सहयोग से आवाज से लिपि तक पूर्वोत्तर भारत में भारतीय लिपि वर्तनी के विकास के माध्यम से मातृभाषाओं का पुनरुद्धार परियोजना कार्यान्वयन की शुरुआत के लिए इस महीने 3 और 4 अक्टूबर को 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित करेगा। बांग्लादेश में आगामी दुर्गा पूजा उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हिंदू समुदाय 5 दिन तक चलने वाले इस उत्सव की तैयारियों में जुटा है। बांग्लादेश सरकार ने इस वर्ष

ये आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल है। 5:11 हो चुके हैं और अब समय है आपके पसंदीदा कार्यक्रम जिसका नाम है भोर सुहानी। और एक बार फिर से मैं हूं आपके साथ आपका ही दोस्त अर्चित।

कार्यक्रम भोर सुहानी में आप सभी का स्वागत है। जागना ही है हर दिन तो एक उम्मीद के साथ ही जागिए। जागना ही है हर दिन तो एक उम्मीद के साथ ही जागिए। निराशा के साथ जागे तो पूरा दिन निराश ही रह जाएंगे। उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, उम्मीद के साथ ही कीजिए हर काम को, कभी न कभी सफल जरूर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं भोर सुहानी के इस सफर को मेरे यानी अर्चित के साथ।

कोशिश करिए कि बिना बात के कोई आपसे नाराज ना हो, कोशिश यही करिए कि बिना बात के कोई आपसे नाराज ना हो, रिश्ते सभी से आपके हमेशा शानदार ही हों। हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, हो जाए कोई नाराज तो उसे जरूर मनाइए, पर कभी आप हो नाराज तो उसे भी इस बात का एहसास जरूर हो। 5:18 हो चुके हैं, सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी।

एक बहुत ही प्यारा सा गीत अभी अभी आपने सुना, जिसके सपने हमें रोज आते रहे। 5:24 हो चुके हैं, सपनों से जागने का समय अब हो चुका है, क्योंकि कुछ समय बाद सुबह होने लगेगी। रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, विश्वास अपने पैरों पर रखें। जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, जाना खुद ही पड़ेगा आपको चलकर, ये रास्ते आपको कहीं नहीं पहुंचाते। सुनते रहिए कार्यक्रम भोर सुहानी, मेरे यानी अर्चित के साथ।